आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

நேசமுடனே கருட வாகனமிதே.

0: सुन रहे हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इन दिनों लंदन में एक मिशन पर गए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के काउंसलर जोनाथन पावेल के साथ आमने सामने मुलाकात की। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में दी गई है। इस मुलाकात का मकसद था शागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर उठे मामले को आगे बढ़ा पाना। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके सख्त खिलाफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को लंदन के लिए मॉरिशस से रवाना हुए थे। उन्होंने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर के लिए एर्बन में निर्धारित है। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि होंगे। इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण हस्तियाँ भी मौजूद होंगी। मंत्री ज्योति जितन के अनुसार AFCRA का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजार के विकास में योगदान देना और महाद्वीप के वित्तीय संसाधनों को बेहतर तरीके से जुटाने में मदद करना है। आज का दिन उन्हें समर्पित है जो जीवन में हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उंगली पकड़कर हमें आगे चलना सिखाते हैं। कभी डांट फटकार कर तो कभी हंसी मजाक के साथ। शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है, सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का विश्वास जगाते हैं। आज का दिन उन्हीं सभी शिक्षकों को समर्पित है। सभी शिक्षकों को और खासकर छात्रों को आज की दिन की विशेष शुभकामनाएं। विदेशी खबरों में अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी मिलने के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से UK स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज की गई है जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की थी। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और वर्षा होती रहेगी, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर। दिन के दौरान धूप रहेगी, रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:47 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Your news on NBC Play and NBC.mu.

0: सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 5 अक्टूबर 2026 जी हाँ श्रोताओं, एक खूबसूरत सुबह, एक नया दिन और एक नई उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत है और आपके अपने कार्यक्रम सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम में। तो सोमवार की सुबह अक्सर हमें नए काम, नई जिम्मेदारियों और नए इरादों की याद दिलाती है, लेकिन आज की सुबह को सिर्फ नए हफ्ते की शुरुआत ना समझिए, इसे अपने लिए एक नई कहानी की पहली पंक्ति समझिए। तो जी बीत गया उसे मुस्कुरा कर जाने दीजिए और जो आने वाला है उसका खुशी से स्वागत कीजिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं जागृति के साथ।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: जागृति प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य मोहन आर्य श्रोतबंधु मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से आज इस जागृति प्रोग्राम में गुरु विरजानंद दंडी जी के निर्वाण दिवस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, आप सभी को पता होगा कि दिसंबर माह में 14 तारीख को गुरु विरजानंद सरस्वती जी दंडी जी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के एक सूत्रधार थे, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देव दयानंद सरस्वती के विद्यादाता थे एवं पथ प्रदर्शक तथा महान गुरु थे। गुरु विरजानंद दंडी जी का जीवन जब आप देखने के लिए चलेंगे तो दंडी जी के बचपन का नाम व्रजलाल था, उनके पूज्य पिताजी का नाम श्री नारायण दत्त एवं भारद्वाज गोत्र से वो आते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे गुरु विरजानंद दंडी, जो आगे चलकर के एक महान गुरु के नाम में विख्यात हुए। गुरु विरजानंद दंडी का जब आप जीवन देखोगे तो 5 वर्ष की आयु में ही चेचक नाम की बीमारी के कारण उनकी नेत्र की ज्योति चली गई, उनकी आंखों की ज्योति चली गई, परंतु विधाता की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बुद्धि विलक्षण स्मरण शक्ति के रूप में प्राप्त हुई। इतनी उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के पास में आंखें नहीं है लेकिन व्याकरण शास्त्र का ऐसा अद्भुत जाता है कि जिसकी तोड़ किसी के पास नहीं है। 8 वर्ष में यज्ञोपवीत धारण कर, यज्ञोपवीत संस्कार धारण कर, गायत्री की दीक्षा के बाद पिता से संस्कृत का ज्ञान अर्जन प्रारंभ किया। 12 वर्ष में माता पिता की मृत्यु के बाद सदा के लिए घर छोड़ दिए और घर छोड़ करके जब आप देखेंगे तो गुरु विरजानंद जी कई जगहों पर विद्या प्राप्ति के लिए गए, कई गुरुओं के पास में गए, कई व्याकरण के जाताओं के पास में गए। जब आप देखने के लिए चलेंगे लगभग 3 वर्षों तक ऋषिकेश में उन्होंने कई तपस्याएँ की, कई अध्ययन किया गंगा के किनारे। आगे देखेंगे हरिद्वार की ओर गए, कनखल की ओर पहुँचे, बनारस की ओर गए, कोलकाता की ओर गए और अनेकों संस्कृत के जाताओं से उन्होंने अध्ययन किया, अलवर, भरतपुर, साथ ही साथ मथुरा, अनेकों स्थानों पर पहुँचे। अंततः जब मथुरा जाने का निश्चय किया तो आप जब उनका जीवन पढ़ने के लिए जाओगे तो सेवक और बैलगाड़ी चालक को किराया भाड़ा देने तक के रुपए उनके पास में नहीं थे जब वो मथुरा के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन ईश्वर का विश्वास उस व्यक्ति के साथ था। बिलराम निवासी धनपति दिलसुख राय उस समय अंग्रेज सरकार की सहायता के कारण उनको राजा का सहयोग प्राप्त हुआ और उस बिलराम जो दिलसुख जी थे उनका सहयोग प्राप्त हुआ और उनका सहयोग प्राप्त करते हुए वो मथुरा की ओर पहुँचे। मथुरा में पूज्यपाद स्वामी जी का आगमन

1866 ईस्वी में हुआ और उस समय उन्होंने 22 वर्ष संस्कृत का पठन पाठन किया, संस्कृत को पढ़ा और पढ़ाया दंडी जी के गुरु भाई पंडित किशन सिद्ध चतुर्वेदी और शिवानंद मथुरा में ही रहते थे। यहाँ रहकर पढ़ाना प्रारंभ किया योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में। युग दृष्टा स्वामी विरजानंद ने आर्ष पठन पाठन, वैदिक साहित्य के संरक्षण व अध्ययन, पाखंड और कुरुतियों के निवारण तथा भारत देश के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के रक्षण का संकल्प अपनी पाठशाला के द्वारा प्रारंभ किया। देश में 1857 की जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वो ज्वाला जली थी, उसमें भी अपना सहयोग गुरु विरजानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों के माध्यम से प्रदान किया। बंधुओं, गुरु विरजानंद जी की इसी पाठशाला में हमारे जो महान गुरु और जिसे हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं, पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विद्या प्राप्ति के लिए आना हुआ। नवंबर 1860 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बुधवार के दिन पूज्यपाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी का गुरु विरजानंद दंडी की उस पाठशाला में आगमन हुआ और पढ़ने वाले तेजस्वी शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के परस्पर सम्मिलन से भारत में प्राचीन वैदिक संस्कृति के संरक्षण के क्रांतिकारी युग का सूत्रपात हुआ और गुरु विरजानंद के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से और उनके सहयोग से, उनकी तपस्या से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर हम लोगों तक उस ज्ञान को लेकर के पहुँचाया और पाखंड कृतियों का विनाश करते हुए पूरे देश वर्ष भर में और पूरे विश्व भर में एक सत्य की क्रांति को जगाने का कार्य किया। स्वामी विरजानंद दंडी एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्याकरण शास्त्र के सूक्ष्म दृष्टा और विद्या विलासी गुरु, राजाओं को नीति संस्कृति और राष्ट्र की शिक्षा देने वाले तथा भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाले राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त एक महान महात्मा थे। गुरु विरजानंद जी के इस निर्वाण दिवस पर हम जो उनकी इस महान गाथा को सुनने का कार्य कर रहे हैं, बंधुओं, उसी निर्वाण दिवस की मैं बात करूं, गुरु विरजानंद दंडी जी 14 सितंबर 1867 को मथुरा में उनका देहावसान हो गया। जब उनके देहावसान का समाचार सुनकर उनके जो प्रिय शिष्य हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ये बात पता लगी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही थी और वो बात आज तक भी हम लोग सुनते आते हैं। उन्होंने कहा था कि जी, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। समझिए, इस पंक्ति का एक छोटा सा सार है कि व्याकरण का एक सूर्य अस्त हो गया। आप यदि देखोगे तो व्याकरण का सूर्य अर्थात एक महान जाता, जिसे कहें अद्भुत संस्कृत का जाता, अद्भुत व्याकरण का जाता, उस दिन 14 सितंबर के दिन अस्त हुआ था। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वो वाक्य कहा था कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। यह तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अपने गुरु के प्रति सच्ची भावना थी, अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार अपना संपूर्ण जीवन संस्कृति के संरक्षण और विश्व के उत्थान में लगा दिया। भारत माता के यह महान प्रज्ञाचक्षु तेजस्वी सन्यासी संसार से जाते हुए एक दिव्य ज्योति दयानंद के रूप में दे गए। भारतीय इतिहास में विरजानंद दंडी का नाम सदा सूर्य की भांति प्रकाशित रहेगा। ऐसे महान गुरु को हमारा श्रद्धा के साथ सत सत नमन। गुरु विरजानंद सरस्वती का नाम हमेशा रहेगा क्योंकि उन्होंने एक महान शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमें प्रदान किए हैं, तो उनके ऋणों को हम कभी नहीं भूल सकते। और यदि मैं बात करूं कि भारत देश की या विश्व के पटल की, कि विश्व का भाग्य यदि खुला होगा, मैं कहूँ कि जिस दिन गुरु विरजानंद जी की कुटिया का द्वार स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए खुला था, मानो विश्व का भाग्य भी उसी दिन खुल गया था। बंधुओं, ये बात अपने मन में स्मरण रखने का प्रयास करना कि गुरु विरजानंद ने

0: आज़ादी का पौधा लगाया था, उन्होंने एक स्वतंत्रता का पौधा लगाया था, एक ज्ञान का पौधा लगाया था। गुरु विरजानंद ने एक ज्ञान का पौधा लगाया था। ऋषिवर देव दयानंद की कृपा से वो पल्लवित और लहराया। स्वामी श्रद्धानंद के उन मंत्रों को याद कर लो, दब गए जो रेत में उन पत्थरों को याद कर लो। आप गुरु विरजानंद को याद करने का प्रयास करना, जिन्होंने उस ज्ञान के दीपक को जलाया, जिन्होंने एक ज्ञान की ऐसी अपार ज्वाला जलाई जिसे हमने ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती में साक्षात देखने का प्रयास किया है। और बंधुओं, इस बात को भी समझना कि हमें जिस प्रकार गुरु विरजानंद जी स्वामी श्रद्धा स्वामी दयानंद जी को इतने अद्भुत गुरु मिले थे, ऐसे ही गुरु की हम लोग भी तलाश करें और स्वामी दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते हुए उस गुरु परंपरा को अपनाने का प्रयास करें और गुरु को दिए हुए वचन और गुरु के द्वारा पढ़े हुए ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें और उसे साक्षात करने का प्रयास करें। तो गुरु विरजानंद दंडी, जिसे हम सब लोग प्रज्ञा चक्षु के नाम से जानते हैं, उनके इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और गुरु विरजानंद जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए इस निर्वाण दिवस को उन्हें मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम शम।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

6:22 हुए हैं दोस्तों। सुबह का वक्त कुछ खास होता है, दिल भी जैसे थोड़ा हल्का होता है और यादें भी कुछ ज़्यादा करीब लगती है। और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, 6:30 भूलेगा नहीं, आप सुन पाएंगे समाचार। और याद रखे कि मोहब्बत हमेशा बड़े वादों का नाम नहीं, मोहब्बत तो उन छोटी छोटी परवाह का नाम है जहाँ कोई कहे अपना ख्याल रखना। तो चलिए आप भी अपना ख्याल रखिए और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 6 बजे हैं। सुबह 6:30 बजे के इस न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां पेश हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चाएं। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पावल के साथ आमने सामने की मुलाकात। अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी मॉरिशस की उसी की तैयारी में अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में निर्धारित। आज का दिन उन्हें समर्पित जो हमें जीवन पर चलने की राह दिखाते हैं। शिक्षक जो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। विदेश समाचारों में अमेरिका ने ब्रिटेन के आरएएफ फोर्ट एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए। एक नई धमकी के बाद ऐसा किया गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पावल के साथ शुक्रवार को आमने सामने मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में इस बात की जानकारी दी गई है। इस मुलाकात का उद्देश्य शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता के मामले को आगे बढ़ाना है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के सख्त के विरुद्ध हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अपने मिशन के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। कम्युनिके में इसकी पुष्टि की गई है। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री ज्योति जितन के अनुसार अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। उनको सुनते हैं।
1: क्रेडिट रेटिंग ली बिएन इम्पोर्टेंट पोर बान लंतरप्रीज एक बान पेई पास किल ये ना।
2: क्रेडिट रेटिंग कंपनियों और देश के लिए आवश्यक है क्योंकि इसका एक सीधा प्रभाव ऋण और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पर पड़ता है। एक बेहतर रेटिंग के माध्यम से हम ज्यादा निवेश आकर्षित कर पाएंगे और बेहतर शर्तों पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। अफ्रा बड़े रेटिंग एजेंसियों के साथ काम करेगा, जिनमें मूडीज, एसएमपी तथा हमें हमारे देशों के लिए खतरों के मूल्यांकन को मापने के लिए एक अफ्रीकी दृष्टिकोण प्राप्त होगा। अफ्रा के आधिकारिक लॉन्चिंग के लिए कई बड़ी हस्तियां मॉरिशस आ रही हैं, जिनमें बुरुंडी के प्रधानमंत्री जो अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता भी संभालते हैं, अफ्रीका यूनियन कमीशन के चेयरमैन, अफ्रीजिंक बैंक के प्रेसिडेंट तथा APRM के CEO भी शामिल हैं।
0: शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति है जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती है। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का विश्वास जगाते हैं। आज विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और इसी खुशी में आज सभी शिक्षक और सभी छात्र भी घर पर ही हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में किसी न किसी शिक्षक का योगदान ज़रूर होता है। कभी डांट कर, कभी समझा कर, कभी फटकार कर, कभी एक छोटे से प्रोत्साहन के शब्द से शिक्षक अपने छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। हमारी सहयोगी आशिता रघु ने इस पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने बात की सहलील तुपासी जो एक शिक्षक हैं और डॉक्टर वर्षा भागीरथी कालीचरण से। ये पेश हैं ये खास रिपोर्ट।
2: डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने क्या

उप कहा है। एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती दीवार की ईंट के पीछे छिप जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में छलकती है। इसलिए कहते हैं, ए मीडियोक्र टीचर टेल्स, अ गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अ सुपीरियर टीचर डेमोंस्ट्रेट्स, बट अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। एक बच्चे के हाथ में पहली पेंसिल रखने से लेकर उसे अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने तक एक शिक्षक का हाथ हमेशा रहता है। शिक्षक सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पन्ने नहीं पढ़ाता, वह बच्चों को जीवन पढ़ना सिखाता है।

0: गलती होने पर दोबारा कोशिश करना, असफलता के बाद उठ खड़े होना और अपने सपनों पर विश्वास करना, यही वे सबक हैं जो अक्सर किताबों से कहीं आगे होते हैं। लेकिन आज का समय शिक्षकों के लिए आसान नहीं है। बच्चों की दुनिया बदल रही है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने जानकारी को हमारी उंगलियों तक पहुंचा दिया है। ऐसे में शिक्षक की चुनौती से पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच फर्क समझाना भी है।
1: वर्तमान संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से भले ही शिक्षक की भूमिका धुंधली दिखाई देती है, किंतु उसके अस्तित्व की छाप हमेशा छात्र पर रहती है। शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाते सिखाते हैं, अपितु जीवन जीने की कला जैसे संस्कार बच्चों में डालते हैं।

0: बदलती सोच, बढ़ती अपेक्षाएं और बच्चों की भावनात्मक जरूरतें एक शिक्षक से आज पहले से कहीं अधिक धैर्य, समझ और संवेदनशीलता की मांग करती हैं। फिर भी हर सुबह शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, मुस्कुराता है और एक नई शुरुआत करता है। शायद इसीलिए कि वह जानता है कि उसके सामने बैठे हर बच्चे में एक संभावना छिपी है। हो सकता है कि आज वह बच्चा खुद पर विश्वास न करता हो, लेकिन शिक्षक का एक प्रोत्साहन, एक सही शब्द उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
1: इस आधुनिक युग में एक शिक्षक होना चुनौतीपूर्ण तो है ही, फिर भी छात्रों का सही मार्गदर्शन करते हुए शिक्षक आजीवन छात्र की सफलता की कामना करती है।
0: एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कोई पदक या सम्मान नहीं, बल्कि वर्षों बाद किसी विद्यार्थी का ये कहना है, सर, मैडम, आपकी कही एक बात आज भी मुझे याद है। यही शिक्षक की असली विरासत है। आज शिक्षक दिवस पर उन सभी शिक्षकों को हमारा नमन, जो सिर्फ भविष्य के पेशेवर नहीं बल्कि भविष्य के इंसान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन उसकी सीख आने वाली पूरी पीढ़ी को रोशन कर सकती है।

मंत्रिपरिषद ने खाद्य फसलों की खेती में कीटनाशकों के दुरुपयोग और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। इस समिति की अध्यक्षता कृषि उद्योग मंत्री करेंगे। समिति का काम आज से शुरू होगा। इसके तहत उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि मॉरिशस में कीटनाशकों के इस्तेमाल और कैंसर की भर्ती

0: की व्यापकता के बीच कोई संभावित संबंध है या नहीं, जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
1: मॉरिशस में खाद्य फसलों की खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने कृषि उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन पर ध्यान दिया है। समिति की जिम्मेदारी कीटनाशकों के गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों की जाँच करना है। खासतौर पर यह भी देखा जाएगा कि क्या कीटनाशकों के इस्तेमाल और मॉरिशस में कैंसर के मामलों के बीच कोई संभावित संबंध है। देश में फिलहाल 10,000 से अधिक किसान हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ किसान जैविक खाद्य और कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर कीटनाशकों का सीमित उपयोग किया जाता है। इस अंतर मंत्रालयी समिति की पहली बैठक आज सोमवार को होनी है। इसमें उपलब्ध आंकड़ों और वैज्ञानिक जानकारी की समीक्षा की जाएगी।
0: मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा कर रहा है। यह जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान बहुलन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रेटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। उनको सुनते हैं।
2: Nous, nos vocations à Maurice, c'est pas de lancer des satellites.
1: मॉरिशस में हमारा काम सैटेलाइट लॉन्च करना नहीं, बल्कि प्राप्त सैटेलाइट की जानकारियों का इस्तेमाल करना और विभिन्न मंत्रालयों व क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, जिससे वे इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हमारी रणनीति में क्षमताओं को मजबूत करना और जागरूकता बढ़ाना है। हम जनता और आर्थिक साझेदारों को सैटेलाइट से प्राप्त जानकारियों का प्रयोग करने के लिए सम्मिलित करना चाहते हैं।
0: इस रणनीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मॉरिशस के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के नए स्तंभ के रूप में विकसित करना है। मकसद सिर्फ शोध के लिए उपग्रह विकसित करना नहीं, बल्कि उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करना भी है, ताकि कृषि, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसी वास्तविक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। जरा जानकारी एक बार फिर से। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान बहुरन दे रहे हैं।
1: हम विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। इटली के स्पेस एजेंसी के साथ जल्द एक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। हम दुबई के स्पेस केंद्र के संपर्क में हैं। इसके साथ ही रोसकॉस्मोस ने हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई है। इन सभी से स्पष्ट होता है कि मॉरिशस सैटेलाइट के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। स्पेस ड्रिवन ठेकेदारी को भी एक आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित करना चाहती है और इसके माध्यम से हम रेवेन्यू उत्पन्न कर पाएंगे। कई सेक्टरों में स्टार्टअप्स हैं और अब तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई स्टार्टअप नहीं मिला है, क्योंकि हम विशेष कर सैटेलाइट जानकारियों से संबंधित गतिविधियां शुरू करेंगे। यह संभव है कि छोटे स्टार्टअप्स विकसित करके कंपनियां बना पाएंगे।
0: विदेशी खबरों में, अमेरिका ने ब्रिटेन के रफ फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी मिलने के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों ने से यूके स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज की गई है, जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की थी। जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घिर रहेंगे और बारिश होती रहेगी, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लाटू पर। दिन के दौरान धूप होगी, रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर आज सुबह के लिए दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:47 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:08 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। पावे रोड रिविया जोहपा में 23 साल के 23 इयर्स ओल्डर के श्री हेमराज हरीश फुलचंद जो कुश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके पिता संजय फुलचंद के मकान पावे रोड रिविया जोहपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोगुड लैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। गुटपालमा काथोबोन में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मोहिनी जालिम जो आवताओ के नाम से, जिनका पैदाशी नाम आवताओ था और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे उनके मकान गुटपालमा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैतु काथोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। बुलांजे रोड पिजन लेन मोंटाई ब्लांश में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यामती सुगंध पैदाशी नाम बुद्धराम और जो विद्यामती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। कल मंगलवार को सुबह 10 बजे उनके मकान बुलांजे रोड पिजन लेन मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। स्वराज रोड पिछे राफ्रे में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमती रामधनी पैदाशी नाम ईसा की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान स्वराज रोड पिछिगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। पिछिपाके मोंटाई ब्लांश में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती यानुबाई रत्नी पैदाशी नाम रामा और जो विजयन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके पति धनराज रत्नी के मकान पिछिपा के मोंटाई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM। महात्मा गांधी रोड पे चिराफे में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री कविराज भोला जो नाना लाभ्रेत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी बेटी विमला भोला के मकान महात्मा गांधी रोड पिछिगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पिछिगाफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। सलाबी लेन फिनिक्स में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी होमिया पैदाशी नाम कुशल और जो लक्ष्मी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके रिश्तेदार दिशांत उमिया के मकान सलाबी लेन फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टू डे 1:30 PM। रॉय रोड बुसोंश में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री हरे कृष्णा रत्नन जो किसना के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके मकान राय रोड बुसोंश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई सैंपियर बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM।

M. Solferino number 3, va qua me. Solferino number 3, va qua me. Va si sal che ti 9 years old che stri setian in deep chan, stri setian in deep chan, jo mazo dalon, che nam si ziada jane jate te unki mriti ho gai her, thi subha 10 baje unki bete. किशन दीपचंद के मकान सुल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेगिनो नंबर 5 की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 एएम कावलेसोर रोड दे फ्रेया में कावलेसोर रोड दे फ्रेया में 67 साल के 67 इयर्स ओल्ड के श्री नीलाधर मंगल श्री नीलाधर मंगल जो हरिदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है और थी सुबह 9 बजे उनके मकान कावलेसोर रोड दे फ्रेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 9 एएम अलीमोंग पोस्ट फ्लैक में अलीमोंग पोस्ट फ्लैक में 57 साल के 57 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सविता झड़ी जो पिक पिक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी सुबह 9 बजे उनकी माँ महिनी जहरी के मकान अलीमोंग पोस्ट फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 9 एएम नंबर 3 अलीगढ़ मेबर्ग में नंबर 3 अलीगढ़ निमेबर्ग में 68 साल की 68 इयर्स ओल्ड की श्रीमती गुमती देवनारायण पैदाशी नाम हामफुल और जो मैडम हामफुल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी सुबह 11 बजे उनके मकान थ्वाजियम अलीगढ़ मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बोलिन मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 एएम राडोद पेचित रिविया में क्षमा करें एवेन्यू स्यूकूफ कैथोबोन में 63 साल की 63 इयर्स ओल्ड के श्री संदेश कुमार सिलोचन जो चिबाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी सुबह 10 बजे लाशा पेलाउदों दे मुहारा रोड पे चित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 एएम सावान रोड नोवेल फ्रांस में 64 साल की 64 इयर्स ओल्ड की श्रीमती शर्मा कुमारी रामकरण पैदाशी नाम उदीन और जो शर्मा के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति विनोद रामकरण के मकान सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माखीशानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 एएम शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस। स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए नेशंस लीग के लीग ए ग्रुप टू में फिर से जर्मनी फंस गया। हार तो नहीं हुई पर चार मैचों में एक हार के साथ दो ड्रॉ, आगे चल के भारी पड़ सकते हैं यर्गन क्लॉप की टीम पर। नए बॉस के लिए खट्टी मीठी शुरुआत, ग्रीस 0 जर्मनी 0। फ्लोरियन वर्ट्ज़ टीम का कप्तान था। इस ग्रुप में ग्रीस की एक भी हार नहीं हुई है, दो जीते हैं, दो ड्रॉ, टोटल आठ अंक 8 पॉइंट्स नेदरलैंड के पास भी हैं। कल नेदरलैंड्स की जीत हुई सर्बिया के खिलाफ 2-1 के स्कोर पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने विनिंग गोल स्कोर किया। पहला गोल क्रूप मेनेज का रहा। अपनी राष्ट्रीय टीम नेदरलैंड्स के साथ कप्तान वर्जिल वैन डाइक का ये 100वां मैच था सेंचुरी इंटरनेशनल अपीयरेंसेस।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना फिर से पोर्टुगल की जीत, पोर्टुगल 2-1। फर्स्ट हाफ में योआओ कांसेलो का गोल इक्वलाइज किया आईएए ने, फिर सेकंड हाफ में गोंजालो रामोस ने पोर्टुगल को जीत दिलाई। इस मैच में नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग आलोन को चोट लगी है, सेकंड

अगले प्रीमियर लीग मैच में वो खेलेगा, मतलब लिवरपूल के खिलाफ वो खेल पाएगा या नहीं अभी तक पता नहीं। पोर्टुगल अपने ग्रुप में 6 अंक से आगे है, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क जिसने कल वेल्स को 1-0 से हराया। मतलब पोर्टुगल और डेनमार्क के बीच पहले दूसरे स्थान के बीच 6 अंकों का फासला, बचे हैं 2 मैच, पोर्टुगल 6 अंक आगे, क्वालिफिकेशन पक्का। लीग बी ग्रुप 3 में कोसोवो 1, ऑस्ट्रिया 1, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1, इसराइल 1। लीग डी ग्रुप 1 में माल्टा 1, अंडोरा 0। लीग डी ग्रुप 2 में अजरबैजान 1, लिथुआनिया 0। आज के मैच लीग ए ग्रुप 1 में फ्रांस वर्सेस बेल्जियम, इटली वर्सेस टर्की। बाकी फिक्सचर्स, नॉर्दर्न आयरलैंड जॉर्जिया, यूक्रेन का मुकाबला हंगेरी से होगा, बोस्निया वर्सेस पोलैंड, रोमेनिया स्वीडन, साइप्रस लातविया, मोंटेनेग्रो खेलेगा आर्मेनिया के खिलाफ। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कहने के लिए फ्रेंडली मैच था, पर अर्जेंटीना ने बेरहमी से बुर्किना फासो को पछाड़ा 7-0 के भारी स्कोर पर। लुतारो मार्टिनेज, क्रिस्टियानी, पाज, अल्वारेस, सिमियोनी, मास्तांतियोने के साथ अमाजालो का 1 ऑन गोल। यूएसए की जीत 3-0 से मेक्सिको पर, कोमोरो 0 सेनेगल 1, इजिप्ट 0 दक्षिण अफ्रीका 1, मोरक्को 1 माली 1, किर्गिस्तान 3 लेबानन 1। आज के फ्रेंडली मैचों में रुवांडा केन्या, लिश्टेनशाइन वर्सेस जिब्राल्टर, युगांडा का मुकाबला कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से और मॉरिशस वर्सेस श्रीलंका। 7 बजे को 2 में ये मैच खेला जाएगा। पहले मैच में आपको याद होगा क्लब एम की आसान जीत हुई थी 3-0 से। प्रीमियर लीग की वापसी होगी इसी शनिवार को, सैटरडे मैच अर्ली किक ऑफ है आर्सेनल और लीड्स यूनाइटेड के बीच, फिर एस्टन विला ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी बोर्नमुथ, इपस्विच टाउन फुलहम, सन्डरलैंड ब्राइटन। लेट मैच 8:30 मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर। फिर संडे फिक्स्चर्स, क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, हल सिटी एवर्टन और लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी, ये 7:30। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग में बहरेन ग्रैंड प्री में मैक्स वेरस्टैपेन की जीत, रेड बुल टीम के साथ इस साल ये उसकी पहली जीत है। चैंपियनशिप में किमी राइकोनेन अब रसल से 84 रन आगे है, बचे हैं 7 या 8 रेसेस। टेनिस, चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचा नोवाक जोकोविच, क्वार्टर फाइनल में जोको ने वर्ल्ड नंबर 2 वेरेव को हराया 4-6, 6-4, 6-4 से। सेमीफाइनल में उसका सामना है डैनियल मेडवेदेव से। चाइना ओपन में ही वर्ल्ड नंबर 2 अरीना साबालेंका की हार हुई, 34th ranked निकोला बातुंकोवा ने साबालेंका को एलिमिनेट किया, टॉप सीड रिबाकीना भी आउट हो गई। जापान ओपन में कार्लोस अल्काराज सेमीफाइनल में है, सेमीफाइनल में उसका सामना अपने हमवतन स्पेन के योम मुनार से है। बॉक्सिंग, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में लगने वाले एलीट अफ्रीकन चैंपियनशिप में मॉरिशस के 6 मुक्केबाज भाग लेंगे। बैडमिंटन, अंडर 19 अफ्रीकन चैंपियनशिप से हमारे प्रतिनिधि 5 मेडल वापस ला रहे हैं जीतकर, इस स्वर्ण 1 स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल एल्जा और क्याहा हाउ होंग की जोड़ी रंगलाई वुमेन्स डबल्स में अफ्रीकी चैंपियन बनी। सिंगल्स में जोनाथन निंग विंग लिथ और ज्ञानेश चेंग्या ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। बॉयज डबल में प्रणव बोगिरोची और ज्ञानेश चेंग्या ब्रॉन्ज मेडल ला पाए और टीम मिक्स टूर्नामेंट में भी मॉरिशस के नाम ब्रॉन्ज मेडल। क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल लेवल पर रोशनवा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है, कल गुडलैंड्स की बेलमो एफसी ने वेल लायंस को 1-0 से हराया। स्पोर्ट्स की दुनिया से इतना ही, चलते चलते आज टीचर्स डे है, हैप्पी टीचर्स डे उन सभी अध्यापकों को, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर्स को जो शुरू से हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स की दुनिया में लाते हैं, उसे परिचित कराते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, तब जाकर चैंपियन बनते हैं। तो उन सभी एजुकेटर्स को सलाम नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 7:05 हुए हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ, आज सोमवार 5 अक्टूबर 2026। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो सभी टीचर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी टीचर्स डे टू यू। और दोस्तों, सुबह का वक्त कुछ खास होता है, दिल भी जैसे थोड़ा हल्का होता है और यादें भी कुछ ज़्यादा करीब लगती है। जी हाँ, और आज सोमवार का दिन है। सोमवार का नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि फिर से वही भाग दौड़ शुरू, लेकिन दोस्तों दिन तो वही होता है, फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का होता है। जहां अगर हम सुबह उठकर ये सोचें कि आज फिर बहुत काम है, तो दिन भारी लगेगा। अगर हम ये सोचें आज मेरे पास एक और मौका है कुछ अच्छा करने का, तो वही दिन खूबसूरत बन सकता है। इसलिए आज शिकायत से नहीं, शुक्रिया से दिन शुरू कीजिए। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान शायद किसी और के दिन को भी रोशन कर दे। चलिए, सबसे पहले हम सुनेंगे चिंतन डॉक्टर शांति मोहबीर जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसे सहना आता है उसको कहना भी आता है। किसी की सहनशीलता को असमर्थता समझने की भूल मत कीजिए।

7:16 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह का नज़राना प्रोग्राम। और हम अक्सर कहते हैं जब काम ख़त्म होगा तब खुश होंगे, जब सब ठीक होगा तब खुश होंगे, लेकिन आज आपको खुश होना पड़ेगा क्योंकि ये जो ज़िंदगी है आपकी है और ज़िंदगी हमें हर दिन छोटी छोटी खुशियां देती है, इसी में आप खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, सुबह की ठंडी हवा, अपनों की आवाज़, पसंद आपके पसंदीदा गीत, एक गर्म चाय और कुछ पल अपने लिए, ये सब भी तो ज़िंदगी के तोहफे हैं। खुशी हमेशा किसी बड़ी वजह का इंतज़ार नहीं करती हैं दोस्तों, कभी कभी हमें बस रुक कर महसूस करना होता है कि जो हमारे पास है वो भी बहुत कीमती है। तो आज खुशी को कल पर मत छोड़िए, आज ही खुश रहने की एक वजह ढूंढिए। मुकेश साहब की आवाज़ में चलिए हैप्पी मूड के साथ आगे बढ़ते हैं।

7:26 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। चलिए अब आपको सुनाते हैं रेडियो सुर्खियाँ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। भूलिएगा नहीं, 8 बजे भोजपुरी समाचार और समाचारों के बाद सुबह का नजराना प्रोग्राम हम जारी रखेंगे और जिसके दौरान आप सुन पाएंगे आपकी राशि और हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ। 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद नीतुषा प्रस्तुत करेगी आज की चर्चा कार्यक्रम। 10 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद रोशनी द्वारा मानस मंथन कार्यक्रम। 11 बजे संक्षिप्त समाचार और सायदा सुबाई प्रस्तुत करेगी उर्दू प्रोग्राम शाम में फरोजन। जी हाँ, 12 बजे भूलेगा नहीं मिसेस दरमिया की प्रस्तुति में स्वर तरंग मराठी प्रोग्राम और 1 बजे से दोपहर के 1 बजे आरसी के साथ तमिल प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। रंगारंग प्रोग्राम 1:45 रत्ना प्रस्तुत करेगी 2 बजे तक और 2 से 2:30 बजे चाइनीज़ प्रोग्राम डाविद के साथ और आपकी पसंद प्रोग्राम 2:30 से 4 बजे तक आप सुनेंगे आपका मनपसंद प्रोग्राम गीतों का कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में। और 4 बजे, जी हाँ 4 बजे आप सुनेंगे क्षितिज कार्यक्रम और 4:15 जी हाँ वंदना प्रस्तुत करेगी तेलुगु प्रोग्राम। 5:30 बच्चों का कार्यक्रम आप सुनेंगे और 6 बजे आप सुनेंगे समाचारों के बाद जिन द्वारा चाइनीज़ प्रोग्राम तमिल प्रोग्राम रात के 7 बजे से 7:30 पुवाना के साथ आप सुनेंगे और वर्षा प्रस्तुत करेगी स्वराला वेदिका 7:30 बजे मराठी प्रोग्राम नितिन बापू प्रस्तुत करेगा रात के 7:50 पर जी हाँ रजनीगंधा। और 8:40 पर प्रभु भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम जी हाँ और 8:40 पर महफिल शब प्रोग्राम और उर्दू प्रोग्राम के बाद भोजपुरी तड़का 9 से 11 बजे तक आप सुन पाएंगे प्रताप द्वारा और रात के 11 बजे से 12 बजे तक का नीलमणि प्रस्तुत करेगी सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप एंजॉय कर पाएंगे। हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

0: ये क्या?
1: गुम?
2: हम
3: KHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

7:42 हुए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारी प्यारी, वैसे ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए नमस्कार आपको। आप हैं मोडाल बेयर के रहने वाली अनीता जी, जी हाँ आप हमें सुन रहे हैं। और साथ में है यहाँ पर सूरज सजादा जी, और आपके मैसेज के लिए विद्या जी बहुत धन्यवाद, आप रहती हैं यूनियन पार्क। और साथ में है हमारी प्यारी माला सुमारू जी, धन्यवाद आपको। जी हाँ चलिए आज टीचर्स डे है और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तैयार हो जाइए। एक छोटे से गांव में एक लड़का पढ़ता था। पढ़ाई में वो बहुत कमज़ोर था और अक्सर अपनी पुस्तक बंद करके चुपचाप बैठता रहता था। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे पास बुलाया और प्यार से पूछा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? लड़के ने कहा, मुझे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे ये जो पढ़ाई है ना मुझसे नहीं होती। और शायद मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। शिक्षक मुस्कुराया और बोले, तुम्हें अभी अपनी ताकत का पता नहीं है, बस खुद पर विश्वास रखो और कोशिश करते रहो। उस दिन के बाद शिक्षक ने उस लड़के को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे लड़का पढ़ाई में अच्छा होने लगा। कई साल बीत गए, एक दिन वही लड़का एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने पुराने शिक्षक से मिलने आया। उसने शिक्षक के पैर छुए और आंखों में आंसू लेकर कहा, गुरुजी आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके विश्वास की वजह से। शिक्षक ने बस इतना कहा, मैंने तो केवल तुम्हें तुम्हारी रोशनी दिखाई थी। दोस्तों इसे कहते हैं शिक्षक वही होता है जो हमारी कमियों से पहले हमारी जो संभावनाएं हैं देखता है। और आज उन सभी गुरुओं को दिल से नमन जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाया है।

0: अलिफ से बोलो क्या होता है?
1: उल्लू।

0: बोलो बात से क्या होता है?
1: बंदर
2: बहादुर
0: बनने के

0: माँ से बोलो क्या होता है।
1: मुर्गा
2: मजदूर

जी हाँ प्यारे दोस्तों, 7:53 हुए है। दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से पहचाने जाते हैं। कोई इंसान दूर होकर भी दिल के बहुत पास हो सकता है और कभी कभी कोई पास होकर भी दिल से दूर। कहते हैं ना, मोहब्बत का असली रंग तब दिखता है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और हर रिश्ते में हर बात अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। कभी समझना पड़ता है, कभी माफ़ करना पड़ता है और कभी चुप रहकर भी सामने वाले की बात महसूस करनी पड़ती है। आज अपने किसी खास इंसान को याद कीजिए और दिल से कहिए, तुम मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हो, अगर माफ़ करना है तो दिल से माफ़ कीजिए। यहाँ पर हम सुनेंगे सुबीर सेन साहब की आवाज़, आस का पंछी फिल्म से लिया गया। और यहाँ पर हमें सुन रही है प्यारी सी लक्ष्मी जी, जो हमें सुन रही है फ्रॉम बॉम्बू, धन्यवाद आपको। शीला जी हैं जो रहती हैं गौन रिविया, और साथ में शिवरानी जी हैं जो रहती हैं गौबा। आप सभी को हम दिल से धन्यवाद आपको कहते हैं।

दिल मेरा एक आँस का पंछी। चलिए ये खूबसूरत गीत सुनिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और भूलिएगा नहीं 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी समाचार और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा, और

मीठी छुरी से। अपन घड़ी मिला ल फजर के 8 बजल बा। सबके के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। मॉरिशस में पानी के लेके स्थिति जस्टी चिंता के जनक हो गल बाटे। जल संसार

नारी संचालन के लेके काल ऊर्जा आरि सार्वजनिक सेवा मंत्री पत्रिका सेवादन की अध्यक्षता में एगो आपात स्थिति के बैठक लगावल जाए। देश के जलाशय में पानी के स्तर कमती होत बाटे। महोबाकवा में खाली 36.6% पानी बचल बाटे। जे कोनो सुधार नहीं आल त साल के अंत लेक दिसंबर महीना लेक पानी के स्तर 20% से कमती हो जाए। एकर चलत कई गो

0: देखो, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शगुस मामला पर चर्चा करल गल। प्रधानमंत्री बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पॉवेल संगे भेंट करलन। प्रधानमंत्री दफ्तर बगल से एगो कम्युनिके जारी करल गल जुन में ई जानकारी देवल गल। ई मुलाकात के उद्देश्य शगुस द्वीप समूह पर मॉरिशस के संप्रभुता के मामला के आगे बढ़ाए के है। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ई फैसला के सख्त खिलाफ हवन। प्रधानमंत्री 26 सितंबर के अपन ई मिशन खातिर लंदन गैलन। प्रधानमंत्री बोलन कि ऊ देश के प्राथमिकता के पूरा करे खातिर प्रतिबद्ध हवन। आज विश्व शिक्षक दिवस मनावल जात बाटे। जुन गुरु बाटे ऊ खाली एगो शब्द नहीं है, बखेर जीवन के दिशा देवे होला ऊ शक्ति है जे ज्ञान के रोशनी से अज्ञान के अंधकार के दूर करेलन। एगो शिक्षक किताब के ज्ञान दे के संगे संगे हमनी के जीवन जिए के तरीका सिखावेलन, सही गलत के बीच फर्क समझावेलन, मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ाए के हौसला देवेलन, आरी हमनी के सपना के उड़ान दे के विश्वास देवेलन। हर सफल जना के कहानी में कोनो न कोनो शिक्षक के योगदान जरूर बाटे। आज ई खास दिन पर ही सब गुरुजी बहन जी सब अध्यापक लोग के याद करल जात बाटे। विदेश के खबर में अमेरिका ब्रिटेन के राफ फोर्ट एयरबेस से अपन सब बॉम्बर्स वापस बुला दिले बाटे। एयरबेस के निशाना बनाए के ईरानी साजिश के बीच एगो नावा धमकी मिलल बाटे, जेकर बाद अमेरिका ई बड़ा कदम उठैलक। ये सब बम्ब के अब उनकर होम बेस में तैनात करल गल है। गायल कुछ दिन से यूके स्थित एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज करल गल है, जब से एगो गुट ई पर हमला बोले के कोशिश कर ले रहल। तय रहल संक्षिप्त समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया, नमस्ते।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: शोक समाचार सुना जा। ट्रॉजियम मिल अलीगढ़ मेबर्ग में 68 बरिस के 68 के श्रीमती गोमती देवनारायण, श्रीमती गोमती देवनारायण जे मैडम हार्मफुल नाम से जसी डाल जाथलन गुजर गल हवन। माती दिन के 11 बजे उनकर घरे ट्रॉजियम अलीगढ़ मेबर्ग से उठा के कार्यक्रम खातिर तोम्बुलेन मेबर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टू डेट 11 AM बुलांजे रोड पिजन लेन मोंटाइन ब्लांश में 78 बरिस के 78 के श्रीमती विद्यामती सुगन, श्रीमती विद्यामती सुगन पैदाशी नाम बिद्राम आज विद्यामती नाम से जस्सी जानल जातलन गुजर गल हवन। माती काल फजर के 10 बजे उनकर घरे बुलांजे रोड पिजन लेन मोंटाइन ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर मोंटाइन ब्लांश के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM पावे रोड रिविया जुहापा में 23 बरिस के 23 के श्री हेमराज हरेश फुलचंद, श्री हेमराज हरेश फुलचंद जे कुछ नाम से जसी जानल जाथरन गुजर कल हवन। माती दिन के 2 बजे उनकर पिता संजय फुलचंद के घरे पावे रोड रिविया जुहापा से उठा के किरा करम खातिर बैल मोगुड लैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन 2 PM गुटपाल मा 4 बोन में 71 बरिस के 71 अंके श्रीमती मोहिनी जालिम, श्रीमती मोहिनी जालिम पैदाशी नाम आवता आज सबित नाम से जसी जानल जातलन गुजर गल हवन। माटी 1 बज के आधा परी उनकर घरे गुटपाल मा 4 बोन से उठा के किरा करम खातिर बेतो 4 बोन के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन 1:30 PM स्वराज रोड पिछे गाफरे में 82 बरिस के 82 अंके श्रीमती सुमती रामधनी, श्रीमती सुमती रामधनी पैदाशी नाम ईसर गुजर गल हवन। माटी 2 बजे उनकर घरे स्वराज रोड पिछे गाफरे से उठा के किरा करम खातिर मोमास काल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन 2 PM पिछी पाके मोताए ब्लॉश में 67 बरिस के 67 अंके श्रीमती यनुबाई रत्नी, श्रीमती रनुबाई रत्नी जे रामा नाम से जस्सी जानल जातलन, रामा पैदाशी नाम है आरी जे विजय नाम से जस्सी जानल जातलन गुजर कल हवन। माटी दिन के 11 बज के आधा पर उनकर पति धनराज रत्नी के घरे पिछिपा के मोताए ब्लांश से उठा के किरा करम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन 1:30 PM महात्मा गांधी रोड पिछ

0: काफ़े में 66 पर इसके श्वसन सीजों के श्री कविराज भोला, श्री कविराज भोला जे नानाला भृत नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरकल हवन माती 3 बजे उनकर बेटी विमला भोला के घरे महात्मा गांधी रोड पे चिराफे से उठा के केरा करम खातिर मोमा स्काल पे चिराफे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन आर फ्री पी एम सलाबी लेन फिनिक्स में 85 बरिस के काथोवन सैकों के श्री लक्ष्मी हमिया, श्री लक्ष्मी होमिया पैराशी नाम कुशल आर जे लक्ष्मी नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरगल हवन माटी 1 बज के आधा परी उनकर पोता दिशांत होमेर के घरे सलाबी लेन फिनिक्स से उठा के केरा करम खातिर आले भैयाओं के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 1:30 PM रोड बुसोंश में 68 वर्ष के स्वसंत्री कौन के श्री हरिकृष्णा रत्नन, श्री हरिकृष्णा रत्नन जे किसना नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरगल हवन माटी 3 बजे उनकर घरे रोड बुसोंश से उठा के केरा करम खातिर मोताय सैंपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 3 PM सोल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा में 89 बरिस के काथोवनवों के श्री सत्यानंद जीपचंद, श्री सत्यानंद दीपचंद जे माजो दालो नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरकल हवन माटी 10 बजे उनकर बेटा किशन दीपचंद के घरे सोल्फेगितो नंबर 3 वाकवा से उठा के केरा करम खातिर बालों सोल्फेगिनो नंबर 5 के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 10 AM कावलेसौ रोड दो फ्रेय में 67 बरिस के सुसंसैतों के श्री नीलाधर मंगल, श्री नीलाधर मंगल जे हरिदेव नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरगल हवन माटी 9 बजे उनकर घरे कावलेसौ रोड दो फ्रेय से उठा के किरा करम खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 9 AM आलिमोंग पुस्तफ्लाक में 57 बरिस के सेकंड सेतों के श्रीमती सविता जहरी, श्रीमती सविता जहरी जे पिक पिक नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरगल हवन उनकर माटी आज 9 बजे उनकर माँ माहिनी जहरी के घरे आलिमा पुस्तफ्लाक से उठा के किरा करम खातिर लावोंचा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 9 AM एवेन्यू सियाकूफ 4 बोन में 63 बरिस के स्वसंतों के श्री संदेश कुमार सिलोचन, श्री संदेश कुमार सिलोचन जे चिबाई नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजरगल हवन माती भजर के 10 बजे आशा बेला दौन दो मोरा रॉयल रोड पीछे त्रिविया से उठा के किरा करम खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टूडे 10 AM शोक में डूबली सब परिवार संगे हमने की सहानुभूति है
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी। अरे लो ना, कंबल से भी कोई जिद है।
1: और तुम?
0: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
1: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
0: कल तक कोई नहीं था लेकिन अब है, कोई शक?

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सुबह के 8:20 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी का स्वागत है। और नया सप्ताह, नई उम्मीदें, नए सपने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के नए मौके। और हर सप्ताह अपने साथ कुछ नए अनुभव लेकर आता है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इस सप्ताह आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं काम, परिवार, प्रेम और धन के मामले में। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: आपकी राशि रेडियो मोशन, रेडियो मोशन। एरीज, मेष

0: राशि।
1: इस सप्ताह आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। काम में आपका उत्साह बना रहेगा और किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
0: टॉरस वृषभ राशि।
1: वृषभ राशि ये सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। आर्थिक मामले में सोच समझ कर फैसला करें। घर में खुशी का माहौल रहेगा। अपनों के साथ बिताया समय आपको सुकून देगा। लकी नंबर है 6, लकी कलर है सफेद रंग।
0: जेमिनी मिथुन राशि।
1: मिथुन राशि वालों को आपकी सोच और बात करने का तरीका इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी सेहत और आराम का भी ध्यान रखें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
0: कैंसर कर्क राशि।
1: कर्क राशि इस सप्ताह आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। किसी अपने से दिल की बात करने से मन हल्का होगा। परिवार में प्यार और सहयोग मिलेगा। पुरानी चिंता को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
0: लेव सिंह राशि।
1: आपका आत्मविश्वास इस सप्ताह बढ़ेगा। काम के क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। बस अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा रंग।
0: वर्गो कन्या राशि।
1: कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत और योजना बनाकर चलने का है। अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। प्रेम में गलतफहमी हो तो बात करके दूर करें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
0: लिब्रा तुला राशि।
1: तुला राशि इस सप्ताह रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। किसी अपने से अच्छी खबर मिल सकती है। काम में नए अवसर सामने आ सकते हैं। अपने फैसलों पर भरोसा रखें और दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित ना हो। लकी नंबर है 7, लकी कलर है गुलाबी रंग।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: वृश्चिक राशि आपके लिए ये सप्ताह कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। पुरानी परेशानी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। काम में धैर्य रखें। प्रेम और परिवार के मामले में अपने शब्दों का ध्यान रखें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है गहरा लाल रंग। जी हाँ, क्षमा कीजिए।
0: सजिटेरियस धनु राशि।
1: धनु राशि सप्ताह आपके अंदर नई ऊर्जा रहेगी। किसी नए काम की योजना बन सकती है। आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेगा। प्रेम संबंधों में एक खूबसूरत पल आ सकता है। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: मकर राशि ये सप्ताह जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से सब संभाल लेंगे। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताना आपके मन को सुकून देगा। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: कुंभ राशि आपके लिए नए विचार और नए अवसर लेकर आ रहा है ये सप्ताह। और किसी पुराने दोस्त या अपने व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। काम में बदलाव

0: की सोच है। जी हाँ, काम में बदलाव की सोच सकते हैं। दिल की बात कहने का अच्छा समय है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। लकी नंबर है 4। लकी कलर है आसमानी रंग।
1: Pisces, मीन राशि।
0: और मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनाओं और रिश्तों के लिए खास रहेगा। किसी अपने की तरफ से खुशी मिल सकती है। आपकी रचनात्मक सोच बढ़ेगी। बीते हुए समय की चिंता ना करें। आने वाले कल पर भरोसा रखें। लकी नंबर है 7। लकी कलर है हल्का पीला रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मोशन। रेडियो मोशन पर
0: तो दोस्तों ये था आप सभी का इस सप्ताह का राशिफल। किसी के लिए नए अवसर, किसी के लिए प्रेम की मिठास, किसी के लिए मेहनत का फल और किसी के लिए एक नई शुरुआत के संकेत। तो चलिए आप सबको शुभ सोमवार। खूबसूरत गीतों का सिलसिला हम जारी रखते हैं।

जी हाँ दोस्तों, हार के बाद, जी हाँ, ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया, लेकिन याद रखिए, एक मुश्किल दिन पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करता। इसीलिए अगर कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आज फिर से कोशिश कीजिए।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। हर बरिस अक्टूबर के पहला सोमवार पहला लेंदी के अंतर्राष्ट्रीय घर दिवस मनावल जाला। और घर खाली एगो सामाजिक जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये सब कोई के एगो जन्मसिद्ध अधिकार है। हर एगो देश, हर एगो समाज, हर एगो इलाका में अलग अलग घर, बस्ती और शहर बसावल गल बा। और ई में से कितने के वर्ल्ड हेरिटेज के उपाधि भी देवल गल बा, जैसे कि मेसोपोटामिया शहर जो उनकी छठी शताब्दी BC के है, मायन सिविलाइजेशन के गपन साइट जो 1500 BC के है, भारत के जयपुर शहर, अहमदाबाद के जोन ऐतिहासिक शहर बा, जांजिबा के स्टोन टाउन, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चीन, इटली वगैरह वगैरह, ये सब देश में कितने शहर के विश्व विरासत सूची में शामिल करा गल बा। हर एगो समय, हर एगो सभ्यता, संस्कृति और धर्म के शहर या बस्ती और घर अलग रहल। और मॉरिशस में जोन एगो मिला जुला आबादी होला देश रहल, जहाँ यूरोप के अलावा हिंद महासागर के चारों ओर के अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोग आके हियाँ बसलन जा, हियाँ अनेक सभ्यता के झलक नजर आवेला। शुरू शुरू में जब इ देश के बसावल गल, समय के साथ मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के साथ परिस्थिति बदल गल, लेकिन उस सब यादगार और पुराना घर के निशानी आज भी हमनी के धरोहर बन गल बा। जब पूर्वज लोग के बात चलेला तो उ सबसे आगे लपाई के घर, गोबर से लिपल दीवार और गोनी के खिड़की और दरवाज़ा याद आवेला। आज हमने आलिशान से आलिशान घर बनावत है जा, लेकिन हमनी के पूर्वज लोग के गुजारा एक ही कमरा में होल बा। जब ढाका में गैलन जा रहे तो एक ही कमरा में पूरा परिवार रही, लड़का लोग और माँ बाप सब कोई कौ भी लापाई के, फिर तोल के, फिर पत्थर के बनावल गल। और कौ के बाद गांव बसल और हुआ भी लापाई के घर ही बनल। और जैसे जैसे आर्थिक स्थिति अच्छा होल, वैसे वैसे घर के सूरत भी बदले लगल। आगे घर के कैसे लिपे के, कैसे साफ करे के, बाहर से अब त कैसे घर में हेले के, कब घर बहारे के, कौन सी घर में करे के, कौन सी घर के बहरा करे के, जैसे नोक नहीं काटा, सांझ के 6 बजे के बाद घर नहीं बहार, 6 बजे से आगे चिराग बार, ये सब हमने परंपरा धरोहर के रूप में याद करी ला जा। और खाली यही नहीं, शहर में जो कॉलोनियल घर बा, बौदो लकड़ी चुल और तुल के, चाइना टाउन के चाइनीज स्टाइल के आर्किटेक्चर होला इमारत, अरेबियन स्टाइल के इमारत और बाद में बनल लोंगचुल के घर, ये सब धरोहर के इन्वेंट्री में गिनाला। और आज एकर मूल्य इतना हो गल बा कि टूरिस्ट लोग खाली हमने के देश के सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के खातिर नहीं, बल्कि हमने के जो सांस्कृतिक धरोहर बा ओके भी देखे आवेलन जा। तो आप सब कोई के वर्ल्ड हैबिटेट डे, अंतर्राष्ट्रीय घर दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

हाथ बजकर 55 मिनट दोस्तों, देखते ही देखते हमारी खूबसूरत सुबह अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। आज हमने बात की मोहब्बत, खुशी की, हौसले की और ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने की। तो चलिए, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नए नजराने के साथ। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन।

0: 9 बजे है, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति चिंताजनक जताई जा रही है। जल संचालन को लेकर कल ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन की अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। महोवाकवा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक यानी दिसंबर तक पानी का स्तर 20% की रेखा

से कम हो जाएगा। इसके चलते कई सख्त कदम निर्धारित हैं और समिति में बदलाव लाने की जिम्मेदारी डाली जा रही है जो कल लगने वाली है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पावल के साथ आमने सामने मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में इस बात की जानकारी दी गई है। इस मुलाकात का उद्देश्य

प्रभुता के मामले को आगे बढ़ाना है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अपने इस मिशन के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का दिन उन सभी को समर्पित जो हमें जीवन की राह दिखाते हैं। शिक्षक सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली वह शक्ति हैं जो ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधकार दूर करती हैं। एक शिक्षक किताबों का ज्ञान देने के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, सही और गलत के बीच फर्क समझाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और हमारे सपनों को उड़ान देने का विश्वास भी हम में जगाते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में किसी न किसी शिक्षक का योगदान ज़रूर होता है। डांट कर, फटकार कर, कभी समझा कर, कभी एक छोटे से प्रोत्साहन के शब्द से शिक्षक अपने छात्रों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। आज का दिन उन सभी को सभी शिक्षकों को समर्पित है और आज के दिन विशेष रूप से उन्हें नमन किया जा रहा है। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेज़बानी करने जा रहा है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री ज्योति जितन के अनुसार अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह लानी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। ये जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर टीसान बहरन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रैटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। इस रणनीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मॉरिशस के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के एक नए स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशी समाचारों में अमेरिका ने ब्रिटेन के रफ फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला लिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी के बाद ऐसा किया गया। इन बॉम्बर्स को अब उनके ही होम बेस में तैनात किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों ने यूके स्थित इस एयरबेस के इर्द गिर्द सुरक्षा तेज कर दी गई, जिसके जब से एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की थी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: बातें तो चला हमनी संगे जुड़ल हवा। ये जो एक घंटा के कार्यक्रम है आज बहुत ही खास है। हमनी भोजपुरी में बतियाए ला जा, हिंदी हमनी के भाषा, हमनी के भोजपुरी, हमनी के धरोहर हमनी ई में बतियाए ला जा और एकर बोल बाल एकर प्रचार प्रसार हमनी करते रही ला जा गीत संगीत भाषा के माध्यम से। आज तनी यही पर हमनी बतियाब जा दू गो खास विशेष मेहमान हवन जा हमनी संगे भारत से आयल हवन। आप हवा श्री रूपेश कुमार गुप्ता जी और श्री अपूर्व नारायण तिवारी जी और आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, प्रणाम नमस्ते। तो जितना जना हमने के अभी सुनत हुवन देखत हुवन सकेला तू जनबे करबा कि सितंबर 28 से 25 अक्टूबर 2026 लेक मॉरिशस के सभी जो 9 जिले हन जोन बाटे हौजा परी पारंपरिक जोन चौपाई बैठके और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजित कर जा बाटे। ये समय है माँ अपनी धरती माँ अपनी मातृभाषा और उनका ऋण चुकाए के। जी हाँ, ये सब जो बैठक बाटे जोन कार्यक्रम लगावल जात बाटे वर्ल्ड भोजपुरी ऑर्गेनाइजेशन माने कि WBO भारत और बनारस वर्ल्ड भोजपुरी एसोसिएशन मॉरिशस द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो फिरों से आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो सबसे पहले हम रूपेश जी आपसे मुलाकात कराएंगे और रूबरू करेंगे। आप मॉरिशस आए हुए हैं, आपको मॉरिशस कैसा लगा सबसे पहले?
1: मैंने जबरदस्त कह सकते हैं कि उतरने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से बाहर गया हूँ।
0: कहते हैं मॉरिशस
1: एक रूम से निकल करके लगा कि दूसरे रूम में आ गया हूँ,
0: इसलिए तो मॉरिशस को छोटा भारत कहा जाता है। तो ये आपकी पहली बार आए हैं मॉरिशस?
1: मैं फर्स्ट टाइम मॉरिशस।
0: अच्छा जी जी जी,
1: लेकिन लगता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम आया हूँ
0: जी। तो आप हमें बताएं कि अपने बारे में और अपनी जीवन यात्रा के बारे में कृपया बताएं।
1: एक्चुअली मतलब बड़ा डिफरेंट बेस रहा, एक प्रीमियम फैमिली में जन्म होने के बावजूद भी जब होश संभाला कॉलेज लाइफ, जैसे भागलपुर बिहार का एक शहर है वहाँ से हमारी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह हुई, मैं अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ में वहाँ पला बड़ा, उनके संस्कार उनकी संस्कृति मिली। लेकिन नाम के साथ में एक चीज़ भविष्य में जो कहा जाता है एक आर्थिक संकट
0: जी,
1: उसने एक नए रूपेश कुमार गुप्ता को जन्म दिया। पहले मैं सोचा करता था कि इतने बड़े फैमिली में होने के बावजूद भी एक औसत सा छात्र होता चला गया, लगा कि जीवन में कुछ कर नहीं पाऊँगा, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए उससे जीवन चल जाएगा। इसी क्रम में मैं कैलकटा लगभग आज से 30 साल पहले शिफ्ट हुआ भागलपुर से कैलकटा, और वहाँ पर मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में समय बिताया। और बिताने के बाद एक चीज़ समझ में आई जो एक ड्रास्टिक चेंजेस मेरे लाइफ में आया और आज आपके बीच बैठा हूँ। ये विश्वास से बाहर है कि एक औसत सा इंसान सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज किया और वो एक सेकंड बेस में चला गया। मैं आज लिब्रम ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरपर्सन हूँ, मेरे को एक लैंग्वेज, आज जैसे हम लोग भोजपुरी में बात करने आ रहे हैं तो एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं NLP
0: जी। NLP क्या है वैसे? आप जैसे कहते हैं NLP एवं लाइफ कोच हैं और लिब्रम जो ग्रुप ऑफ कंपनीज उनके संस्थापक एवं जो आप चेयरमैन हैं, तो NLP के बारे में बताएं और आप इसमें कैसे माने कि जुड़े?
1: सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि NLP एक ऐसा सब्जेक्ट, इसको समझ सकते हैं कि यूजर मैनुअल
0: जी।
1: जैसे एक मशीन आप खरीदती हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है और उस यूजर मैनुअल को आप यूज करके उसको ऑपरेट करती हैं, उसको प्रोग्राम्ड करती हैं और उसके बाद वो चलता है। लेकिन इन सारी मशीनों को बनाने वाला भी एक मशीन है, वो है हमारा ब्रेन
0: जी।
1: और इसको ऑपरेट करने का कोई यूजर मैनुअल किसी को दिया नहीं गया, तो उसका ही एक यूजर मैनुअल है कि कैसे आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करेंगे और कैसे इसको ऑपरेट करेंगे
0: जी।
1: आज जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुआ बहुत सारे लोगों के बीच में जब गया तो वहाँ पर जाकर कर देखा कि उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है सोच का। और वहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग चेंज हुई और एक NLP की यात्रा भी स्टार्ट हुई, और NLP ने मुझे एक ऐसी दुनिया में लाके खड़ा किया जहाँ एक औसत छात्र सोचता नहीं है।
0: ये जो जिस रास्ते से आप जिस जर्नी के बारे में आप कह रहे हैं वो आसान तो था नहीं?
1: बहुत बहुत बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ में मैंने जितने कार्य किए उस कार्य में अगर देखा जाए तो अगर फिल्म बन सकती है
0: जी।
1: मैंने जब पहली कंपनी डाली, मेरी डॉटर का न्यूज मिलता है मुझे कि उसे ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। अब दो, एक तरफ कंपनी, एक तरफ डॉटर। आप उसके बाद मैंने, लेकिन ये कारवा बढ़ता ही गया, फिर सेकंड कंपनी खुली, थर्ड कंपनी खुली, लेकिन कंपनियों के साथ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कम हुआ, लेकिन एक रेजिस्टेंस पावर बढ़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरी विज़न है कि NLP को पूरे विश्व में फैलाया जाए, क्योंकि इसी ने मुझे इस चीज़ के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने का। एक्चुअली तकलीफ से बड़ी बात नहीं है, तकलीफ एक ऐसी चीज़ है उसको सहने की शक्ति आपका रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है।
0: तो यहाँ पर आप मस्तिष्क की बात करें, माइंड की बात करें, दिमाग की बात करें, तो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि दिल और दिमाग
1: जी,
0: कभी कभी दिल का सुनना चाहिए, लेकिन अगर दिमाग को आप अगर नजरअंदाज कर जाएंगे तो कदम दगमगा सकते हैं।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: ऐसे में आप एक लाइफ कोच है, तो कैसे इसमें जो संतुलन है, बैलेंस मेंटेन करें?
1: देखिए, एक्चुअली क्या है, जब आप किसी लैंग्वेज के बारे में जान जाते हैं तो उससे कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ये सोच करके रात को सोते हैं कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना है, लेकिन देखा जाता है कि फिर वो नहीं उठे, गिल्ट में होते हैं, उनको लगता है कि मैं लेथर्जिक हूँ, मैं प्रोकास्टिनेशन आ रहा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग है जो हमारे अपब्रिंगिंग से लेके हमारे इन्वायरमेंट से लेकर के चीज़ें होती हैं
0: जी।
1: तो जब आप इसके लैंग्वेज को समझने लगते हैं तो आपका संतुलन बैठने लगता है, क्योंकि NLP का मतलब ये कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी, NLP का मतलब एक बैलेंस है किसी भी चीज़ में। ये लाइफ बैलेंस का नाम है। आपके जीवन की कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे हम कहते हैं जब हम लोग जन्म लेते हैं तो 6 प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं हमारे, उसमें लव एंड कनेक्शंस हैं, नीड ऑफ सर्टेनिटी है, नीड ऑफ वैराइटीज़ है, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, इनकी सिक्वेंसिंग अलग होती है। आपके लाइफ में उसकी सिक्वेंसिंग अलग होगी, मेरे लाइफ में सिक्वेंसिंग अलग होगी। मेरे लाइफ में अगर लव एंड कनेक्शन हाई है तो मैं हमेशा अटेंटिव पीपल होंगे। आप देखेंगे आपके बीच में जो भी लोग हैं जिनकी ये चीज़ें नंबर वन पर होंगी, वो पीपल क्या करेंगे, वो हमेशा अपना अटेंशन चाहेंगे। अगर आपने उनको अटेंशन नहीं दिया तो उन्हें तकलीफ होगी। जिनकी लेवल नीड ऑफ सिग्निफिकेंस आई है, आप देखिए आज के समय में सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया में क्या है, अगर 49 लाइक मिला है तो खुद से 50 लाइक मार के
0: जी,
1: 50 लाइक मार करके और आप अपने आप को सेटिस्फाइड करती हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस आई है। अब इसमें क्या है कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता
0: जी।
1: है अगर सिग्निफिकेंस आई है और मैं नेगेटिव पीपल हूँ तो मैं पिस्तौल उठाऊंगा और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, और अगर मेरी सिग्निफिकेंस मैं पॉजिटिव वे में सोच रहा हूँ तो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, एक अच्छा पॉलिटिशियन इसके वे में जाने की कोशिश करूँगा। तो ये गलत चीज़ नहीं है, सिग्निफिकेंस हम किधर लेके जा रहे हैं अपने आप को। आज का यंगस्टर क्या है, जेनजी, ये पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। जेनजी का सबसे बड़ा पावर होता है एनर्जी। हम लोग अपनी जिंदगी में, सभी लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी, एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है, हम जो प्यार है वो भी एनर्जी है, गुस्सा है वो भी एनर्जी है। और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि कुछ भी नया नहीं देगा, वो देगा जो हम दे रहे हैं उसी को रिटर्न बैक करेगा। अगर हमारे अंदर एंगर है, गुस्सा है, तो हम फिर आस्ते आस्ते गुस्सेल होते जाएंगे,
0: यानी कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन।
1: यस यस यस,
0: क्या बात है, ये तो साइकोलॉजी की बात चल पड़ी है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप, आपकी जो पुस्तक है 10 Times माइंड मास्टरी, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए ये एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब अपने ब्रेन के बारे में नहीं जान पाते हैं तो होता है क्या कि हमारी पोटेंशलिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी जो होती है, अगर हम इसके मैनुअल को ठीक से समझें तो हम 10x ग्रो कर सकते हैं। हम रिलेशनशिप में बैलेंस बैठा सकते हैं, हम अपने लव एंड कनेक्शन में बैलेंस बैठा सकते हैं, यानी कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक बैलेंस बैठा सकते हैं
0: जी।
1: तो ये बुक्स टोटल इसी के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा वास्ट है, ये कुछ मिनट और कुछ सेकंड में पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने बुक्स निकाला कि आप उस बुक्स को पढ़ें, आपकी लाइफ में जरूर काम करेगा।
0: तो चलिए, जितने भी अभी बात कर रहे थे

0: अबाउट जेंजी, जेंजी के बारे में आज क्या ही बात करें, ये जो जनरेशन है बाप रे बापा, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, जेंजी के पास एक स्पेशल चीज है जो अदर्स के पास मिसिंग है
0: जी,
1: वो बोलते हैं एनर्जी, हाई एनर्जी है उनके पास। अब एक चीज देखिए, नदी की धारा है
0: जी,
1: आप उसको बाएं भी मोड़ सकते हैं दाएं भी मोड़ सकते हैं, तो उनके पावर को आप गलत रास्ते में भी जा सकता है और अच्छे रास्ते में। तो उनके पास जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो है एनर्जी
0: जी,
1: अगर उसको एक अच्छे कार की तरफ लेके जाएंगे वो तो भी रिजल्ट मिलेगा, बुरे की तरफ जाएंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा
0: जी,
1: लेकिन एनर्जी की जो संभावना उनके पास है अदर्स के पास नहीं है। तो मैं जेंजी से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर एक एक साधारण इंसान रुपेश कुमार गुप्ता सफल हो सकता है तो आप तो 100% सफल हो सकते हैं।
0: क्या बात है, तो चलिए जितने भी जेंजी अभी आपको सुन रहे होंगे जो संदेश है उन तक पहुंच गया होगा, बस इस पर अमल करना अभी बाकी है और अपनी सोच को बदलनी चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं भोजपुरी भाषा के बारे में, तो आप हमें बताएं वर्ल्ड भोजपुरी हेरिटेज जो फेस्टिवल है इसका आपके नजरिया क्या है आपका?
1: देखिए एक्चुअली ऐसा है, भोजपुरी मेरी नानी दादी की कहानी है, भोजपुरी हमारी माँ का लोरी है
0: जी।
1: तो माँ से दूर कैसे रह सकते हैं हम? माँ शायद एक ऐसा शब्द है विश्व में जिससे दूर रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा, और भोजपुरी हमारी माँ है, तो इसको जन जन तक पहुंचाना। हमारे बीच अपूर्व नारायण तिवारी जी हैं, मैंने भोजपुरी के अच्छे जानकार व्यक्ति है, मैं आगे कुछ साल पहले तक भोजपुरी नहीं जानता था
0: जी,
1: लेकिन अब रवा लोग के आशीर्वाद से हम भी भोजपुरी बोले लगा लगे
0: थोड़ा थोड़ा करके ये बात बोला तो हम जानी ला जा जो डॉक्टर हुशिला देवी रिसोल हवन उप प्रेसिडेंट हवन बनारस वर्ल्ड भोजपुरी एसोसिएशन मॉरिशस और भोजपुरी के प्रचार प्रसार और बोलबाला खातिर ढेर काम करत हवन है जब परी भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन उस सब बातें तो उनका काम के बारे में उनका संगे तू काम करत हो संगे संगे कोलाबोरेशन में हवा जा उनका काम के बारे में कैसे कैसे चलता?
1: देखा हौसला देवी रिशोल के हम लगभग 15 साल से जाने थे
0: जी,
1: उनका अगर सही मायने में कहल जाओ तो भारत और मॉरिशस के बीच में एक ब्रिज के काम वो कर लिया। आज के समय में दीदी जब भी जाए ले भारत कम से कम सैकड़ों प्रोग्राम होला भोजपुरी के
0: जी,
1: और यही बहाना लोग के एक बात आर मन में आवेला कि हाँ भोजपुरी के आर बढ़ावल जरूरत है
0: जी,
1: और यही सब चीज़ के खातिर वर्ल्ड भोजपुरी हेरिटेज जो प्रोग्राम भइल है, मतलब आज के समय में ना सिर्फ मॉरिशस वर्ल्ड के सब जगह जरूरत है, क्योंकि भोजपुरी बोले वाला लोग पूरा विश्व में बा, पूरे विश्व में बा, कोई ऐसा जगह ना देख ले जहाँ पर भोजपुरी बोले वाला लोग ना है। तो एक बढ़ावल बहुत जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट देवल जरूरी है, कहा कि जे चीज़ के इम्पोर्टेंट देवल वही चीज़ के भेज पाई
0: जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकन, हमने के जितना सुने होला हवन जा आप लोगन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने भोजपुरी भाषा के बारे में बतियात है जा अभी जैसे थोड़ा बोली कि सितंबर 28 से 25 अक्टूबर लेक जो हर जिला में चौपाय हो बैठका हो और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कर जा बाटे, और आज खाली अपूर्व जी माने कि रूपेश जी नहीं हवन बल्कि श्रीमान अपूर्व नारायण तिवारी जी हवन इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड भोजपुरी ऑर्गेनाइजेशन भारत से, और उनका सब बनारसी बाबू से जाने लन। तो अभी हमने के जन भोजपुरी हमने बचाए ला जाते न सुन किरियोली सब हमने मिला जुला के हमने बचाए ला जा, और भारत के जो भोजपुरी अभी सुनत हुआ जा पर समझत हुआ जा ये नहीं है कि ये जो भाषा हाउ जो भारत से आल बाटे हमने नहीं समझा था ऐसा जो हम बोला था हमने के मेहमान समझा था जो आप लोग बोला था वह हमनू समझा था ऐसा, तो ये जो भाषा है कितना सुंदर बातें कितना जोली बातें। तो चलो हमने के दूसरे मेहमान से हमने बैठाए ला जा अपूर्व नारायण तिवारी जी बनारसी बाबू जी प्रणाम,
2: प्रणाम
0: कैसे हवा
2: निमन
0: वानी तो चलो निमन वानी अच्छा अपन वानी में तनिसुर अपन परिचय बताओ।
2: हम अपूर्व नारायण तिवारी बनारसी बाबू विश्व भोजपुरी संघ वर्ल्ड भोजपुरी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी बानी, विश्व भोजपुरी सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक बानी, उत्तर प्रदेश भोजपुरी संघ का संस्थापक महासचिव बानी, द भोजपुरी टाइम्स समाचार पत्र का प्रधान संपादक बानी, विद्युत व्यापार चक्र समाचार पत्र बा ओकर भी प्रधान

0: संपादक बानी, अगर दो दर्जन संस्थावन से पदाधिकारियन के रूप में जुड़ल बानी
1: जी।
0: मूलतः हमार व्यवसाय हम इंजीनियर हैं और उत्तर प्रदेश में जब बिजली आई 1928 में तो हमार फर्म जो 1930 का स्थापित सबसे पुरान फर्म में बिजली प्रतिष्ठान में गिनती होला भारत इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी कंपनी जे 1930 में स्थापित भइल रहे और पूर्वांचल में आधा पूर्वांचल के बिजली सप्लाई ओ जमाना में कैले रहे जब बर्तानिया हुकूमत मॉरिशसों में रहे और भारतों में रहे
1: जी।
0: तो काम तो हम लोगों का विद्युत का रहे लेकिन चूँकि मातृभाषा हो जैसे आप लोग भोजपुरी कहल जाला हम लोग बनारस कहीं जैसे काशी कहल जाला वाराणसी कहल जाला जी हम लोग काशी का कहल जाला।
1: अच्छा
0: कहीं से काशी का जो हो काशी सबसे पुरान शहर बा जब तार का आज का नहीं हजारन हजार साल पहले का वेद से भी पुरान बा वैदिक शहर बाई तो वेद से संस्कृत आई संस्कृत के सबसे पुरान भाषा मानल जाला कि वेद से संस्कृत आई। हम यही मॉरिशस में 2014 में एगो शोधपत्र दिले रहनी काशी और भोजपुरी के जननी काशी और भोजपुरी के जननी तो लोग पूछना कैसे तो शोधपत्र में दी आई कि सबसे पुरान भाषा और देश जो हो ये नगर जो हो काशी हो जो अपने आप में एक देश रहे वो जमाना में उसका परदी रहे 1500 मील
1: जी।
0: 1500 मील मतलब तकरीबन 2500 वर्ग किलोमीटर
1: जी।
0: तो 2500 वर्ग किलोमीटर का मतलब रहे कलकत्ता से लेके राजस्थान तक जो हो काशी राज रहे वो जमाना में जो राजा का भाषा हो पौनी प्रजा का भाषा वही भाषा जो हो सब जगह रहे। कालांतर में कहा भइल कि काशी पे लगातार आक्रमण हो चल गई कहे थे सनातनी धर्म सभ्यता का सबसे मूल जगह रहे तो जब भाषा का आक्रमण लोगों का भी जे राजा आई अपन भाषा थूपर चल गई
1: जी।
0: ओकरे बाद खंड खंड विखंड अपन साम्राज्य होवे लगल तो भाषा का बोली अलग अलग बनल जैसे ब्रज भाषा बन गई लौदी बन गई गोंडई बन गई चंपारणी बन गई भाषा सब मूल काशी का रहे आपन आपन इलाकाइयों के लोग नाम देहल चल गई ना डिंगल दे देना पिंगल दे देना तो ए तरीके से उनमें ऊ हो चल गई मतलब विघटन हो चल गई
1: जी जी।
0: बिहार में कहा भइल कि जो आरा हो ओकरे आसपास का क्षेत्र जो हो वो दुर्गम क्षेत्र रहे।
1: अच्छा
0: ओके वो जमाना में अरण्य प्रदेश कहल जात रहे तो दुर्गम क्षेत्र रहे से वहाँ पे आक्रमणकारी नहीं पहुँचना तो भाका अपन मूल स्वरूप में थोड़ा सुरक्षित रहे। और बनारस जैसे शहर में कहा भइल कि राज्य में जे जे आइल अपन भाषा थोपत चल गई तो यहाँ कुल भाषा का खिचड़ी हो चल गई
1: जी।
0: और वहाँ भाषा का मूल रूप रहे तो एम में कालांतर में लोगन में ये हो गई कि भाई बहु काशी का ही घटना बा जाज अब्राहम ग्रियनसन भाषाविद कहल जाला वो भाषा के पूरा मतलब जो लिख के कौन भाषा कहाँ और पूरा ओकर इतिहास लिख ले हुआ तो चुनार किला रहे का बनारस से जो मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर बा वहाँ महाराजा बनारस का फौज रहत रहे
1: जी।
0: तो वहाँ पे भाषाविद जब गई ना तो लोग से पूछना तू लोग कौन भाषा बोलत हुआ तो लोग ना ही मालूम हजूर।
1: अच्छा
0: ना ही मालूम हजूर तो तू लोग रहे वाला कहाँ का हुआ अब यहीं पे चूक हो गई वो लोग जो हुआ इ ना ही कहना महाराजा बनारस का सिपाही यहीं वो लोग कहें हम लोग रहे वाला जो हो भोजपुर कहीं तो लिख देना कि जे आदमी यहाँ पे रह तू चूंकि भोजपुर जिले के रहे वाला हुआ तो ये भाषा जो भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तो ये नाम जाज अब्राहम ग्रियनसन का दिया जो महज 200 साल की पुरान घटना नहीं हो ऐसे पहले ये भाषा के काशिका कहल जात रहे प्राकृत भाषा कहल जात रहे। और आपके बता दें हम लोगों का आदि संत कवि रहना कबीरदास
1: जी।
0: कबीरदास कहले हुआ भाका हमार पूर्वी भाका हमार पूर्वी लखे सके ना कोय भाका हमार ओही बूझे जे धूर पूरब को होए ये भाषा के पूर्वी भाषा कहल जात रहे पूर्विया भाषा कहल जात रहे ये पूर्विया भाषा एक्चुअल असली भाषा रहे। अब चूंकि बर्तानिया हुकूमत यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे तो अपन अपन नाम दे दे ले
1: जी
0: तो नाम देवे से भाई।
1: अरे वाह क्या बात है। तो हमने के बतावा अपूर्व जी जो लोक भाषा बाटे मातृभाषा बाटे और हमने के गिरमिटिया कहे कि हमने के जो पूर्वज भारत से आ रहा जो लोग के गिरमिटिया बोला जाला था जो गिरमिटिया भाषा भोजपुरी के इतिहास के बारे में तनी सुन विस्तार से बतावा।
0: भोजपुरी का इतिहास तो आपके अभी एक सार संक्षेप में बतैनी कि अभी आज का जो इतिहास कार हुआ वो लोग कहे ना कि 8वीं सदी से आई 9वीं सदी से आई
1: जी
0: लेकिन सच ये हो कि भोजपुरी का इतिहास 10,000 साल पुरान हो कहीं से भोजपुरी का इतिहास काशी से शुरू होला
1: जी।
0: जो काशी का काशी का भाषा बा वही भोजपुरी हो भोजपुरी कोई अलग नहीं बा
1: जी।
0: खाली हो कि इलाका इलाका में

0: बोली और बानी का अंतर हो गई बा। तो बोली बानी का अंतर होवे से ओके अलग अलग लोग नाम दे देना
1: जी।
0: भोजपुरी का बल्लिका मल्लिका वज्जिका अंगिका ये तमाम एकर जो हो प्रकार बा। हम ज़्यादा उनमें विस्तार में न जा। भोजपुरी का जो मूल एकर मतलब होगी कब से ही आयल, तो ये आयल जो हो काशी से। जब काशी में आदि योगी के रूप में भगवान शिव वही ना, आदि योगी के रूप में भगवान शिव वही ना, सबसे पहले सात ऋषियन के उपदेश देना, सप्त ऋषि जेके कहल जाला। उपदेश कौन भाषा में देना, संस्कृत तो रोबे ना ही करल। अवैदिक देवता शिव, अवैदिक नगरी काशी, यही देखिए रहस्य समझिए आप। तो अवैदिक नगरी काशी, अवैदिक देवता शिव, और शिव जो भाषा में देना, शिव के कण से निकलल काशिका, काशिका में देना उपदेश, और वही सात ऋषि सात गो महाद्वीप में जाके ओके जो हो विस्तार कहना वैदिक धर्म के, जिसके हम लोग सनातनी धर्म कहल जाना।
1: जी, जी।
0: और आपके एक चीज और भी जोड़ दें, कहें से पितर पक्ष में हम आपके आए नहीं पितरन के देश से मॉरिशस में, जो गिरमिटिया कहल जाला एग्रीमेंट पे लोग गईना, शर्तबंद प्रथा जो हिंदी में कहल जाला, वही का अभ्रंश होवत गिरमिटिया भाई।
1: जी।
0: तो यहाँ पे जब वो सात ऋषि आई ना, तो ओम में एक ऋषि आई ला ना अफ्रीका में, और वो बेस बनाई ले ला ना मॉरिशस के।
1: अच्छा।
0: जिनके नाम पे का नाम मॉरिशस पड़ल, बहुत लोगन के ही हो कि डच या प्रिंस नसाऊ के नाम पे का नाम मॉरिशस पड़ल, मिरिच यहाँ पे बहुत होला तो मिरिच के अभ्रंश हो के मॉरिशस पड़ल, कुछ लोग कहेला मारिच राक्षस रहे रावण का मामा ओकरे नाम पे पड़ल। लेकिन असली इतिहास ये हो कि मारिच ऋषि रहना, वो सप्त ऋषियन में रहना, वो मारिच ऋषि यहाँ पे आके सनातन धर्म का प्रचार कई ना, ओकरे नाम पे एक नाम मॉरिशस पड़ल। ये रहस्य बहुत कम लोगों के मालूम बा। हम 2014 में भी बात बतैनी, 2009 में भी बतैनी, 16 में भी बतैनी, आज 26 में फिर बतावत हैं कि आप लोग हकीकत समझी कि आप लोग ये महान ऋषि परंपरा कहें। वो तो कालांतर में निर्जन हो गई, बंजर हो गई, तो यहाँ पे कोई रहे वाला ना ही रहे। तो दोबारा में अरब देश जब अल तो 1500वीं सदी में वो खोजल, फिर डच अल, फिर फ्रेंच अल, फिर अंग्रेज अल, फिर आप लोग 68 में आजाद हो गई। तो पुरान इतिहास तो कोई लिखे वाला रहल ना, कोई बताए वाला रहल ना, अंतर ही हो गई।
1: तो आज ढेर चीज हमने सीखा था जा, और वो अपन संस्कृति अपन भाषा भोजपुरी भाषा के बारे में हमने जाना था जा, अपन देश के बारे में हमने जाना था जा। तो अपूर्व जी हमने के बतावा आप कई हला मॉरिशस आयल हो, भोजपुरी जो संस्कृति बा ओकर वैश्विक जन प्रचार प्रसार करे खातिर, अब हला जो आयल हुआ ओकर परियोजन के बारे में तनि सुन बतावा।
0: हम लोग 4-5 बार आ चुकल नहीं, और जब भी आए नहीं भोजपुरी भाषा सनातनी धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार बदे ही आए नहीं, और 14वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन 2009 में मॉरिशस में भइल रहे
1: जी।
0: वो समय कोलिशन गवर्नमेंट भी रहे, तो हम लोग दोनों सरकार से पक्ष विपक्ष हम लोगन का सब हम लोगन के साथे रहे, और सब लोगन के साथ में रह के तो हम लोगन के जो ही भाषा के बदे आवत हैं लगातार, चूँकि 20 साल का देखत नहीं भाषा संस्कृति के यहाँ क्षरण होत बा। जो हम लोगन के तकलीफ होत बा कि भाषा 70% आबादी आप लोगन का भोजपुरियन का रहे, आज आबादी आपका तो हो लेकिन भाषा आप लोगों का युवा पीढ़ी में नहीं बचत बा। युवा पीढ़ी में फ्रेंच बोलल जात बा, अंग्रेजी बोलल जात बा, क्रियोली बोलल जात बा, हिंदी बोलल जात बा, लेकिन भोजपुरी वो लोगों का रुझान कम बा। तो ये चूँकि पुरखन का भाषा बा, ये आपका धरोहर भाषा बा, ये आदि भाषा बा, तो जैन जी के ये का नाम बा कि भाई आपन जो पुरखन का थाती हो, जो धरोहर भाषा हो के संजोई, उनमें बोली बतियाई, उनमें बोले बतियाए में तनिको गुरेज न करी। हम लोग देखें इंजीनियर हो के अंग्रेजी भाषा में कुल पढ़ाई भइल बा, लेकिन सब कुछ छोड़ के भोजपुरी अभियान में जुड़ल नहीं, काहे बदे। ये हम लोगों का ही पुरखन का भाषा बा, ये अतीत का भाषा बा, और एक संजोए में जब इतिहास आप अपन बचाई, अपन संस्कृति बचाई, अपन धर्म बचाई
1: जी।
0: तो यात्रा का मेन प्रयोजन ही बा भोजपुरी भाषा सनातनी संस्कृति बचाओ, जन जागरण यात्रा। यहाँ के 9 जिला हो, 9 जिला का 120 गांव, 15 गो शहर, सगरों हम लोग घूम, कई जगह घूम भी चुकल नहीं, वहाँ गांव में जाते हैं, छोट छोट बाहर में चौपाल करत हैं, अंदर में बैठका करत हैं, जो पहले होत रहे।
1: तो जो प्रतिक्रिया बा, जो नौजवान
0: बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया बा, जब लोग मिलत हुआ वहाँ पे गांव का पुरान लोग तो नाचत गाचत झूमत, जो अपन परंपरा बा मॉरिशस वो मतलब गमत फैलावत हुआ। गमत शब्द देखिए अपन भारत में भूल गई बा, लेकिन यहाँ पे गमत शब्द आजो काम मौजूद बा, बहुत अच्छा लगेला। तो वो लोग तो जब वो लोग नाचत गावत, तो जो बजाए वाला जितना हुआ सब युवा पीढ़ी है, तो हमें क्रियोली भी रहना, क्रिश्चियन भाई भी रहना, अपन भोजपुरिया भी लोग रहना, तो सब लोग वहाँ पे। तो लोगों ने जब निहोरा कहनी कहीं भाई एक संभाल, एक खाली गाना गीत गवाइए अपन भोजपुरी नहीं।

0: भोजपुरी ऐसे बहुत ऊंचा चीज बा। भोजपुरी अपन धर्म कर्म संस्कार का भाषा बा, ई पसीना का भाषा बा, ई खून पसीना का भाषा बा। आज पूरे मॉरिशस में जो आप लोग 100 साल 150 साल 200 साल पुरान इमारत देखते हैं, इमारत केकरे खून पे बनल बा, गिरमिटिया खून पे बनल बा, बनाए वाला के आपको पुरखा लोग हुआ। तो थाती के समझी एक संजुई
1: जी,
0: हम लोग जो जो इमारत देखते नहीं जाके ओके मतलब हम लोग की भाई कैसे वो जमाना में ज्वालामुखी पहाड़ रहे, पहाड़ के तोड़ तोड़ के कैसे ओके करके कितना खून बहल हुई और तब जाके ही बनल बा। आज लोग एक बात और सार संक्षेप में कहब कि लोग कहे ना कि 36 गो लोग सबसे पहले यहाँ पे मॉरिशस में 1834 में अटलस जहाज से आई ना, ये तथ्य तो आप लोगों के मालूम बा और आप लोग जानी ना, लेकिन आप लोगों के ये तथ्य ना ही मालूम बा। वहाँ तो चल लेना 250-300 लोग, बाकी लोग मर गई ना रास्ते ही में, उनके बारे में कोई नहीं बतावेला। आपके यहाँ मॉरिशस में 5 लाख लोग अना, ये तो सब लोग बतावेला कि 5 लाख 5.5 लाख लोग गिरमिटिया काल में जो हो अना, लेकिन ये कोई नहीं बतावेला कि 5-7 लाख लोग रास्ते ही में बीमारी से मर गई ना।
1: अच्छा,
0: ये इतना गंभीर बात बा, इतना दयनीय दुखद बात बा कि आप लोग उनके जाने के जाने आपका पुरखा रहना, आप कब कैसे कैसे करके लोग आके आज मतलब आप लोग मजूर से हजूर बने का जीवन दगाता हो मॉरिशस, और अकाली मॉरिशस से ना जितना गिरमिटिया देश हुआ, फिजी हो, गुआना हो, सुरीनाम हो, जहाँ भी देखी सब मजूर बन के आई लेना, आज सब जगह हजूर बन के शासन करत हुआ। तो ये मजूर से हजूर बने का जीवन गाथा का पर्याय हो गिरमिटिया संस्कृति। 8 साल में आप लोगों का 200 साल पूरा हो जाए 1934 में, तो आप लोगों के वो समय अपन ओके इतिहास के संस्कृति के भाषा के संजोए की हुई बचाए के हुई
1: जी।
0: ये हम लोगों के बारे देखी एक बहुत गौरव का बात बा कि 2 गो यूनेस्को द्वारा धरोहर जो भोजपुरी चीज के दियाइल बा, और दोनों का दोनों मॉरिशस में बा, एक अप्रवासी घाट और दूसर गीत गवाई
1: जी।
0: बहुत बड़ बात बात एक बदे हम मॉरिशस के लोगों के बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, लेकिन अपन भाषा के अपन धरोहर चीज के संभाली और पितर पक्ष में आए का हम लोगों का मुख्य प्रयोजन है ई बा कि पितरन के देश से आए नहीं कि भाई पितरन के रूप में हम लोगों के मान के कम से कम अपन आदि भाषा के अपन पुरखन के भाषा के अपन धरोहर भाषा के आप लोग संजोई थोड़ा एक आत्मसात करें।
1: ये सच्चे बात बोले हवा। अब ये रूपेश जी हमने के बताओ जो फिल्म बाती भोजपुरी जो ओकर भविष्य थोड़ा कैसे लो कहता।
2: देखिए ऐसा है कि भोजपुरी भाषा जो है मतलब मेरा एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है कि बिहार यूपी में जो भोजपुरी फिल्म को लेकर के बहुत सारी बातें उड़ जाती है कि भोजपुरी अश्लील हो रहा है या फिर भोजपुरी डिफरेंट लेवल पर जा रहा है
1: जी।
2: मेरे अकॉर्डिंगली वो भोजपुरी फिल्म है ही नहीं, क्योंकि जैसे हम साउथ की फिल्म को डब करके हिंदी में देखते हैं
1: जी,
2: मुझे लगता है कि किसी अदर कैरेक्टर अदर रीजन के लोगों का वो एक भोजपुरी भाषा में डब करके बना दिया गया है। हमारा गांव कभी भी ऐसा नहीं है, हमारी माँ बहने कभी भी ऐसा नहीं है कि बेल बॉटम पहन करके वहाँ पर खेत में डांस कर रही हैं। गंगा किनारे मोरा गांव विदेशिया से लेकर कर कर कर के नदिया का पार, आज भी कहीं अगर गाना बजता है तो बरबस आपका पैर वहाँ रुक जाएगा। और मेरा एक ट्रिब्यूट है, मैंने एक वचन दिया है दीदी को कि एक फिल्म मॉरिशस की जर्नी पर बनाई जाए जिसका नाम गिरमिटिया, जिसमें अपूर्व जी ने बहुत मदद करने की बात कही है, उनके पास अच्छा नॉलेज है इस सेक्टर के बारे में, और शायद ये होना चाहिए ताकि लोग समझें ये कैसा चीज़ है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि अगले कुछ सालों में ये जीवंत हो, इसकी शूटिंग इंडिया के साथ मॉरिशस में भी हो।
1: क्या बात,
2: ठीक है
1: जी,
2: और इसके सारे सूत्रधार आप लोग होंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी बाबू जी, हमने के बताओ आपके जो शोध पत्र बाती महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में सन 2014 जैसे बोलत रहल छपल रहल काशी हो भोजपुरी के जननी, एकर बारे में तनी सुन बताओ, और तोहर कई और पुस्तक जो बातें ओकर लोकार्पण सब होल बातें एकर बारे में बताओ।
0: ये तो आप लोगों के महात्मा गांधी संस्थान के आर्चीव से मिल जाए काशी हो भोजपुरी के जननी। काशी में जो हम लोग रहत रहनी या रहत हैं, काशी में हम लोग उनका 200-300 साल का पुरानी इतिहास बा, समृद्ध इतिहास बा। तो हम बनारसियन का जो हम लोग काशी के एक चीज़ और काशीवासी तो वहीं हम लोग उनके बनारस नाम रखाई लय बरतानिया हुकुम ने, तो हम लोग उनके बनारसी भी कहल जाला
1: जी।
0: तो बहुत से लोग भ्रमित न हुए कि काशी बनारस वाराणसी अलग अलग हो, इस समय नाम होकर वाराणसी हो गई, लेकिन तीनों शहर एक के बा, पहले काशी रहे बाद में बनारस भइल, इस समय वाराणसी भइल। तो हम बनारसियन का या काशीवासियन का एक चीज़ हम लोग अड़बंगी

0: स्वभाव का हो। जैसे शिव भगवान अड़भंगी हुआ वैसे काशीवासी अड़भंगी हुआ।
1: जी
0: काशीवासियन के कहल जाला कि लोग जियते जी रुद्र हुआ, साक्षात मतलब शिव भगवान का अंश, कहीं ऐसा भगवान शिव आशीष देले रहना।
1: जी
0: तो अड़भंगी स्वभाव के नाते हम लोग अपने इतिहास संस्कृति के प्रति कोई बोलेला कहेला तो हम लोग देला, नहीं तो हम लोग अपने ही स्वभाव में मस्त मौला रही ना। तो बहुत दिनन से हम लोग देखत रहनी बरसन से कि लोग इतिहास अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपन देत रहना, और उनमें बहुत इतिहास का मतलब गलत विरूपण हुए से गलत चीज सामने जात रहे, चाहे भाषाविद हुए चाहे इतिहासकार हुए चाहे प्रोफेसर हुए और चाहे शोधकर्ता हुए, उनके जो मिले वही सामग्री के वो लोग रिपीट कर दें तन्नी मन्नी हेर फेर के साथ। तब मन में आए कि भाई एक सामने आवे के चाहिए। अब हम लोगन का कहा हो कि हम लोग अपने के काशी का कहल जाला, तो एक काशी का रहे वाला ही तो भाषा काशी का। लेकिन चक्कर ये हो गए कि भारत जब आजाद भइल तो भारत को भी दो नाम पड़ल, भारत डेट इज कॉल्ड एज इंडिया, भारत ओकर बाहर में नाम हो इंडिया दोनों नाम आप संविधान के अनुसार। वही तरीके से हम लोग काशी वाला भी फैसला कहने कि भाई काशी का तो हमारा ही हो, लेकिन अब सब जगह भी भोजपुरी है भोजपुरी कहल जात बा, तो काशी का डेट इज कॉल्ड एज भोजपुरी। जब ये माइंड फ्रेम में ये मानसिकता में आई नहीं तब भाई ये लोगन के एकर सही तथ्य बतावे के चाहिए, तब ये पे जो कलम चलल। और जब कलम चलल तो कलयुग चलत बा, कलयुग से पहले द्वापर युग रहे, द्वापर युग से पहले त्रेता युग रहे, त्रेता युग से पहले सतयुग रहे। तो सतयुग तक जो हो हम लोगों का भाषा का जो हो नींव बा, बहुत बड़ा बात बा कि आज संस्कृत के कहल जाला जगतार का सबसे पुरान भाषा, लेकिन जगतार का सबसे पुरान भाषा संस्कृत नहीं हो काशी का। अब आपके एक और उदाहरण दे दें तमिल, जो तमिल लोग अपन भाषा के बदे बहुत ज्यादा जुझारू हुआ और भाषा के बदे लड़ाई लड़के तमिलनाडु के गठन भइल, द्रविड़ संस्कृति का गठन भइल, द्रविड़ पार्टी का गठन भइल, वो तमिल के मूल में काशी का बैठल बा। ये बात बहुत कम लोगों के मालूम बा, ये आज आपके तथ्य बतावत हैं मॉरिशस वासियन के भी कि आप लोग भी तथ्य के जानी। वहाँ का दक्षिण भारत का सर्व प्रधान और सर्व प्रमुख ऋषि एक के हुआ, उनके कहल जाला महर्षि अगस्त ऋषि, और महर्षि अगस्त ऋषि रहना के महर्षि अगस्त ऋषि काशीवासी रहना, वो बनारसी रहना, काशी में जन्म जन्म ले ले रहना
1: जी।
0: और काशी में जन्म लेवत उनके भगवान शिव के आज्ञा से वो दक्षिण भारत गई ना, और जब दक्षिण भारत गई ना तो उसमें विंध्य पहाड़ बहुत ऊंचा होते रहे, हिमालय से भी ऊंचा रहे हिंद विंध्य पहाड़ झुकल, और झुकल तो आज तक झुकले बा। आज भी आप देखा वो इतिहास तो ज्योग्राफी भी यही कहेला, मतलब बात उनमें ना ही कहते कि कथानक के अनुसार ज्योग्राफी भी कहला कब्बो बहुत ऊंचा रहे बाद में वो नीचा हो गई। ओकरे बाद जब गई ना तो विंध्याचल पार करते ही समुद्र रहे, समुद्र का पानी पी ल, आपके वेद में भी लिखा लो समुद्र का पानी पिए थे जो जगह खाली भइल दक्षिण भारत का निर्माण भइल। और दक्षिण भारत जब गई ना तो दक्षिण भारत में चूंकि संस्कृति दूसर रहे, वहाँ पे लोग जो आई ना ओके रक्ष संस्कृति कहीं या असुर संस्कृति कहीं, तो वो जो भाषा बनी ल वो भाषा रहे तमिल। तमिल का प्रणेता मानल जाला, सृजन का हार मानल जाला अगस्त मुनि के, और अगस्त मुनि का माई भाषा का रहे काशी का।
1: काशी का
0: देखिए कितना बड़ा रहस्य बतावत है, और ए लिए तमिल भाषा में बहुत सा शब्द हिंदी का एक भी शब्द न मिली, संस्कृत का शब्द न मिली, लेकिन भोजपुरी का तमाम शब्द उडल ले हूँ।
1: मैंने कि भारत में जहाँ जहाँ जगह कोनो क्षेत्र में जाए बा जब भोजपुरी बा भाषा बा वो जुड़ल बाटी।
0: देखी ना हम आपके जो बात बतावत है वो बात समझ लेते हैं, बात मतलब विषयांतर हो जाए। वो जैसे हम आपके दो तीन नमूना देते हैं, हम लोग कंगी करल जाला तो के कंगी कहल जाला
1: जी।
0: तमिलनाडु में हम अभी गई नहीं एक महीना का यात्रा रहे, तो वहाँ पे कन्याकुमारी में नहात नहात समुद्र में जो कंगी हरा गई, तो हरा गई तो मार्केट में अब वो गई नहीं तो कंगी बोलत नहीं कोई कंगी नहीं बुझत बा, काम बोलत नहीं काम कोई नहीं समझत बा। तो ओकरे बाद उनके इशारा से बतैनी कि ऐसे सिर पे फेरे वाला, तो वो कहना चीपा चीपा चीपा, हम कहें यहाँ चीपा दो।
1: अच्छा।
0: ये चीपा हम लोग उनका भोजपुरी भाषा बा, ये हम लोग उनके यहाँ बोलल जात रहे, हम लोग कंगी हिंदी शब्द जो अपना लेनी। तो चीपा जो हो भोजपुरी अगस्त मुनि का दिन बा। बस में चढ़ब तो बस वाला कही आवो आवो आवो आवो भोजपुरी शब्द बा, अगस्त मुनि का दिन बा। जब ड्राइवर के चले के हुई तो कही चलो चलो चलो भोजपुरी शब्द बा, हिंदी नहीं बा। तो ये आपके नमूना देते हैं, तो भोजपुरी का जड़ इतना हो कि तमाम भाषा में फैलल बा
1: जी।
0: अब चूंकि लोग शोध ना ही कही ना ओके अपने अपने अनुसार कही ना, तो उनमें मामला ही हो गई
1: जी जी। ये तो सच्ची बात बोला, हम नहीं बात कर रहे थे जैसे कि मॉरिशस एक

0: गिर मिथ्या देश है। तो मॉरिशस के अलावा हमने सकब से बोले फिजी बाटे, गियाना बाटे, ट्रिनिडाड, सुरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, रेनियन, जमाइका, श्रीलंका, केन्या, युगांडा बाटे, मलेशिया, ग्रेनाडा आदि के बारे में तनि सुन बतावा। आज ये सब जो देश बाटे वो आजाद वो सब होगा वाला, तो उन लोग के जो कितना परिवर्तन और कितना विकास होगा
1: इन सब देशन का। जैसे अब वेस्ट इंडीज से शुरुआत करी, जमैका हो, त्रिनिडाड टोबैगो हो, तमाम मतलब जो वहाँ का देश बा, वो देशन का स्थिति यो गई बा कि गईना लोग सबसे पहले तो जो आपका गिरमिटिया प्रथा रहे, ये दास प्रथा जो रहे, बधुआ प्रथा रहे, ओका परिवर्तित रूप रहे। दास प्रथा खत्म भइल 1833 में, ओका परिवर्तित रूप आइल गिरमिटिया प्रथा के रूप में, और प्रयोग के रूप में पहला अपना औपनिवेशिक कॉलोनी के रूप में मॉरिशस में भइल। मॉरिशस में जब ही सफल भइल तो ओकरे बाद ही अन्य अपन कॉलोनी में ओके ले गई ना, तो वही के तहत फिजी में, गुआना में, त्रिनिडाड टोबैगो में, तमाम मतलब अपन देशन में ई और फ्रेंच सरकार दोनों ले गई। तो वेस्ट इंडीज में तो जब गई ना, तो वेस्ट इंडीज का आज हम लोग कैलिप्सो संगीत कहल जाला, बहुत पॉपुलर बा वहाँ पे, भोजपुरिया। खाली अंतर का भाई कि वो अब संगीत तक रह गई बा, उनमें वहाँ का मिक्स भाषा हो गई, जहाँ क्रियोली हो गई, जैसे हम लोग फ्रेंच भोजपुरी कहल जाला, वो आपन भाषा अब भोजपुरी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीन चार पीढ़ी तक तो चलल, ओकरे बाद वहाँ का नेटिव भाषा ओपे हावी हो चल गई। तो आज भोजपुरी वेस्ट इंडीज में तो खाली ओकरे रूप में मौजूद बा, का कहल जाला, गीत संगीत के रूप में। लेकिन सरनाम में सुरीनाम जेके कहल जाला, सुरीनाम से लेके हॉलैंड तक ओके सरनामी हिंदी कहल जाला भोजपुरी के, हो भोजपुरी ओकर नाम हो सरनामी हिंदी। वहाँ भोजपुरी बहुत सुंदर रूप से पुष्पित तो पल्लवित होत बा, भोजपुरी का पूरा काम चलेला, भोजपुरी में बोले न, बतियावे न, और बहुत सुंदर रूप से। यही हाल फिजी का बा, फिजी का आपका मॉरिशस से दूना एकर क्षेत्रफल भी बा, आबादी भी बा, वहाँ बहुतायत में लोग फिजी हिंदी ओके कहल जाला, हो भोजपुरी बहुत प्रेम से बोले न। गई ना आपके काफ़ी बात 1878 के आसपास, लेकिन ओ लोगन का भोजपुरी आज भी जो हो अपने मूल स्वरूप में जिंदा बा, और ओके जिलैले हुआ। और यही हाल अन्य जगह का बा, जैसे हम लोग अब बताई ना कि जब हम लोग आई ना तो एयरपोर्ट पे चढ़ते ही हिंदी छोड़ दे ना, अंग्रेजी छोड़ दे ना, भोजपुरी बोली ना। कभी दुबई रूट से आई ना, कभी जद्दा, अभी आपकी बात जद्दा रूट से आई नहीं, तो जब एयरपोर्ट पे जाई ना वहाँ भी भोजपुरी बोली ना, और ताज्जुब हो कि भोजपुरी कोई ना कोई समझे वाला मिल जाला। तो भोजपुरी का पकड़ देखी आप, और बहुत हेल्प भी मिल जाला उसे।
0: चला हमी के जो कार्यक्रम बातें अभी समय बहुत ही कम बात है, ढेर चीज बोलेंगे, पर जैसे आगे हम तुम्हारे से पूछते आप भोजपुरी के वैश्विक भविष्य कैसे देखेला, और मॉरिशस में और कौन चीज चाहेला करे के जब हमी के ई जो भाषा भोजपुरी और उकर बढ़ावा मिले।
1: भोजपुरी का वैश्विक भविष्य तो बहुत ही सुनहला बा, बहुत ही सुंदर बा। आज हम लोगों का आबादी 25 करोड़ हो गई बा, जिनमें से 22-23 करोड़ लोग भारत में हुआ, 2 करोड़ के ऊपर लोग जो हुआ 3 करोड़ के आसपास विश्व में हुआ, बहुत बड़ा आबादी। और हिंदी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा कोई भाषा अगर वैश्विक रूप से फैलल बा तो वो भोजपुरी
0: जी।
1: और आपन बलबूते पे, आपन बलबूते पे आप लोगों के एक बात और बता दें कि अमेरिका में सेना मतलब आर्मी में भर्ती होए वाला 14 भाषाओं में एक भाषा भोजपुरी हो, ये बात बहुत कम लोगों के मालूम हो। वहाँ पे करीब 30 लाख के लगभग जो भोजपुरी भाषी रहत हूँ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 15 से 20 लाख आपन लोगों का आबादी बा, जो आपन पूरा भोजपुरिया संस्कृति से दिवाली हो, छठ पूजा हो, होली हो, उत्तर त्यौहार विधि विधान से और बड़े उम्मे बनावे ना। तो भोजपुरी का वैश्विक भविष्य बहुत बढ़िया, कैसे पे काम भी काफ़ी होत बा। और रहल बात मॉरिशस का, मॉरिशस में प्रयास का जरूरत बा, मॉरिशस में नयका पीढ़ी जब तक सामने न आई, पुरान पीढ़ी अपन कान्हे पे कब तक बोझा उठाई, कब तक वो अपन ओके सजाई संवारी। मॉरिशस में आज भोजपुरी का जो स्वरूप देखते हैं, भोजपुरी बोलल तो बहुत ज्यादा खाली गीत गवाई में, नयका पीढ़ी में गीत गवाई में तमाम तरह का लिरिक्स बा, तमाम तरह का चीज बा। ओकरे अलावा आम एक दूसर से अगर बतियावत हुआ तो दूसर भाषा में बतियावत हुआ, भोजपुरी नहीं बतियावे ना, घर में भी नहीं बतियावे ना। तो एमे जब तक उन लोगों के अंदर से ये चीज ना हो कि हमें भाषा के थोड़ा अपनावे के बा, तब तक भोजपुरी आगे कैसे रही, वो खाली गीत गवाई तक रह जाए। ये गीत गवाई का भी कल्ले एक जगह गई नहीं, गीत गवाई बहुत बढ़िया भोजपुरी लोग गात रहने, पता चल के भोजपुरी को उनके कुछ नहीं आवेला लिरिक्स देख के, ये कड़वा सच बा कि आज अपन भारत में भी भोजपुरी जो अंग्रेजी पे ओकर जो ओकर डायलॉग डिलीवरी होला और लोग सुना देवे ना, गा देवे ना, लेकिन उनके अपन भोजपुरी का ना लिपि मालूम बा ना भोजपुरी का।

0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले रुपेश जी, आप जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे?
1: मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ में बैलेंस बनाना सीखिए। ये लाइफ ऐसा है कि किसी भी चीज़ का जो एडिक्शन होता है, आप अपने ब्रेन को ऐसा तैयार कीजिए कि जब आपको लगे कि वो कोई कार्य आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ सुना होगा आपने, फोकस, कि मेरा फोकस नहीं बनता है। ये मेरी नज़र से ऐसी बीमारी बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि अगर फोकस नहीं बनता तो घंटों लोग बैठ करके सोशल मीडिया नहीं चलाते। आप क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, और ये जो इंटरेस्ट पनपता है वो अगर किसी भी काम को आप रिपीटेडली करते हैं और कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं तो आपका बिकम हैबिट हो जाता है। तो चाहे अच्छा हो या बुरा, हैबिट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों मेहमान के। आप अवश्य रुपेश कुमार गुप्ता जी, NLP एवं लाइफ कोच, संस्थापक एवं चेयरमैन लिव रूम ग्रुप ऑफ कंपनीज, और हमनी के बनारसी बाबूजी श्री अपूर्व नारायण तिवारी जी, इंटरनेशनल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड भोजपुरी ऑर्गेनाइजेशन भारत से, और हमनी के मेहमान जो हबी नई दिखा थवन नई लौकत हवन पर हुआजी हवन श्रीमती डॉक्टर हुशीला देवी रिसोल जी, प्रेसिडेंट बनारस वर्ल्ड भोजपुरी एसोसिएशन मॉरिशस, आप तीनों के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गीत संगीत अपन भाषा के, अपन भोजपुरी भाषा के, अपन बोलबाला के हमने करब जा, उकर प्रचार प्रसार करब जा। तो हमने के सुनते रहिए, देखते रहिए, सबको एक प्रणाम, नमस्ते, नमस्ते।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के लंदन मिशन के तहत मुख्य रूप से शागस मामले पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने बरतानी राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जोनाथन पॉवल के साथ आमने सामने मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा जारी कम्युनिके में इस बात की जानकारी दी गई है। इस मुलाकात का उद्देश्य शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता के मामले को आगे बढ़ाना है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अपने इस मिशन के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि वे देश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति ज्यादा चिंताजनक हो गई है। जल संचालन को लेकर कल ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पथकासिया वादन की अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। महोवाकवा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक पानी का स्तर 20% की सीमा से कम हो जाएगा। इसके चलते कई सख्त कदम निर्धारित हैं। समिति में बदलाव लाने की जिम्मेदारी के बारे में कल लगने वाली समिति में इन जिम्मेदारियों के लिए फैसले लिए जाएंगे। मॉरिशस अफ्रीकी वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का शुभारंभ 7 अक्टूबर को एबेन में किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें अफ्रीका के विभिन्न देशों से आए लगभग 160

प्रतिनिधि होंगे। मंत्री ज्योति रतन के अनुसार अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का उद्देश्य अफ्रीकी पूंजी बाजारों के विकास में योगदान देना है। विदेश समाचारों में अमेरिका ने ब्रिटेन के राफेल फोर्ड एयरबेस से अपने सारे बॉम्बर्स वापस बुला दिए हैं। एयरबेस को निशाना बनाने की कथित ईरानी साजिश के बीच एक नई और अज्ञात धमकी के बाद ऐसा किया गया।

0: एक गुट ने इस पर हमला बोलने की नाकाम कोशिश की। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue Kobijo Motidame, Residence Home, Avenue Kobijo Motidame, Chanvi Salki, 96 years old, ke Janab Rampat Abdul Sata, Janab Rampat Abdul Sata, intakal kar gaye hain unka janaza, aaj din ke 11 baje, unke bete Swalei Rampat ke makan, home, रेजिडेंस होम एवेन्यू को बिजो मोचिदा से उठाकर दफनाने के लिए मेजिन कॉन्डोमास्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओ, 10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। तो चलिए, आपके लाए है भक्ति धारा कार्यक्रम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं श्रोताओ। हमारा सफ़र जो है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक रहने वाला है। तो चलिए, हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में, और साथ ही साथ सोमवार का दिन है आज, और आज का दिन जो है आपके लाए है मानस मंथन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर वीनु अरुण जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। तो चलिए श्रोताओ, ज़्यादा देर न करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गणेश वंदना आपके लिए। कहते हैं, भक्ति वह दीपक है जो बाहर की दुनिया नहीं सबसे पहले हमारे भीतर का अंधकार दूर करता है। तो आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनु अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनु अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड का दोहा 264 अर्थात 264 मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग आपको याद होगा, धनुष टूट गया है और सीता जी को वरमाल पहनानी है श्री राम जी के गले में, लेकिन सीता जी बहुत संकोच कर रही हैं। इतने सारे लोगों के बीच उन्हें वह जयमाल श्री राम जी के गले में डालनी है, ये सब सोच करके उनके मन में थोड़ा लज्जा का भाव आ रहा है। मर्यादा उनका स्वभाव है, इसलिए बहुत ही मर्यादित आचरण कर रही हैं सीता जी। तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरि सहि सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जय माला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। अब सीता जी ने जयमाल पहना दी है और जब उन्होंने ऐसा किया तो आकाश से देवता लोग अपना आनंद अभिव्यक्त करने के लिए पुष्पों की बरसात श्री सीताराम जी के ऊपर करने लगे। सबको इस घड़ी की प्रतीक्षा थी, कब सीता जी और राम जी का विवाह हो, और आज वह सुंदर समय आ गया है और इसीलिए देवता तक अपना हर्ष फूल बरसा करके प्रकट कर रहे हैं। और राजा लोगों की क्या हालत हुई, देवता लोग तो आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राजा मन में ये आशा लेकर के आए थे कि वे ही सीता जी से विवाह करेंगे। ऐसे राजाओं की क्या स्थिति हुई, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सकुचे, वे संकुचित हो गए, यानी वे लज्जित हो गए कि आए थे मन में इतनी प्रबल अभिलाषा लेकर के, और इस बात पर पूरा विश्वास भी था कि हम ही धनुष तोड़ेंगे और हमसे ही सीता जी का विवाह होगा। अब इतने लोगों के बीच में हमारा अपमान हो गया है, और यहाँ ही अपमान नहीं हुआ, जब हम लौट करके अपने नगर को जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम श्री राम के सामने पराजित हो गए, हम धनुष नहीं उठा पाए, और अयोध्या के एक राजकुमार ने जो अभी बालवय का है, जो अभी किशोरावस्था का है, उसने धनुष उठा लिया, उसने सीता जी से विवाह कर लिया। ये सारी बातें सोच करके जितने राजा हैं वे सकुचा रहे हैं, संकोच में हैं, लज्जित हो रहे हैं। और कैसे लज्जित हो रहे हैं, तो तुलसीदास जी तो इतने सुंदर उदाहरण देते हैं, इतने सारे सुंदर रूपक उपमा उत्प्रेक्षा, तो यहाँ कह रहे हैं, जनु बिलो की रवि कुमुद गन, जैसे सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ जाता है। आइए इस बात को समझें, सूर्य प्रातःकाल उदित होता है। सूर्य की विशेषता क्या है कि सूर्य कभी नगाड़ा नहीं बजाता, सूर्य अपने आने का कहीं भी शोर नहीं करता है, किसी को नहीं बताता है कि मैं आ रहा हूं। उसका आना स्वयं सबके मन में सूर्य देव

की उपस्थिति को दर्ज करा देता है। उनका आगमन पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को सचेत कर देता है। इसीलिए हमारे धर्म में, वेदों में सूर्य को इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा माना गया है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निर्जीव, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड बिना सूर्य के कभी चल ही नहीं सकता। तो जैसे सूर्य जब उदित होता है तो उसके प्रकाश से अपने आप चारों ओर आलोक फैल जाता है, सब लोगों के अंदर मानो ऊर्जा चेतना का आगमन हो जाता है। उसी प्रकार राम जी सूर्य की तरह हैं, जिनकी उपस्थिति ऐसी है कि उन्हें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूँ। उनके आते ही उनका प्रताप, उनका प्रभाव इतना बड़ा है कि सब लोग उन्हें देख करके संकुचित हो रहे हैं। कैसे? जैसे सूर्य को देख के कुमुदों का समूह, कुमुद एक फूल का नाम है, सफ़ेद रंग का फूल होता है, जो सुबह संकुचित हो जाता है, मुरझा जाता है, और रात में जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे वो फूल खिलता है। बिल्कुल कमल के फूल का उल्टा है कुमुद का फूल। तो जैसे सूर्य के उदय होने पर कुमुद के फूल अपने आप मुरझा जाते हैं, वैसे ही श्री राम रूपी सूर्य को देख करके ये राजा जितने हैं वे कुमुदों, कुमुद के फूलों के समान हैं, और वे संकुचित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि राम जी के समक्ष जितने भी राजा आए थे मानो उनकी सारी की सारी शोभा ही फीकी पड़ गई है। वे बिल्कुल मुरझा गए हैं। उनके चेहरे पर जो एक शोभा थी, जो एक आप बोल सकते हैं तेज था, वो सब फीका पड़ गया है। कहाँ श्री राम और कहाँ ये राजा। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय जय जय कही दे ही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। नगर में बाजे क्यों बजने लगे? क्योंकि जितने भी मिथिला निवासी लोग थे, जितने भी जनकपुर के लोग थे, उनके मन में यही अभिलाषा थी कि सीता जी का विवाह राम जी से ही हो। आज उनकी अभिलाषा पूरी हो रही है, इसलिए वे नगरों में अपने हर्ष को प्रकट करने के लिए, अपने उत्साह को और अपने आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए बाजे बजा रहे हैं। और आकाश में बाजे इसलिए बज रहे हैं कि सभी देवता प्रसन्न हैं। सभी देवता यही चाहते थे कि विष्णु और लक्ष्मी जी का पुनर्मिलन हो जाए। और लक्ष्मी जी अर्थात सीता जी और राम जी तो हैं ही विष्णु, इसलिए वे सब परम प्रसन्न हो रहे हैं। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। तो दुष्ट लोग क्यों उदास हो गए? क्योंकि उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। सज्जन लोग क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि सज्जन लोग हमेशा सकारात्मक बातें सोचते हैं और वे हमेशा दूसरों का कल्याण चाहते हैं। इसलिए श्री सीताराम जी के विवाह से वे सब अत्यंत हर्षित होते हैं। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जय करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं वे परम मुदित हो रहे हैं और प्रमुदित होकर के सब सीताराम जी की जय जयकार कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके मंगल भविष्य के लिए हृदय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। नाचहीं गावहीं विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्रभेद दुनि करहीं, बंदी बिरुदावली उच्च रहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती और गाती हैं। देवताओं की स्त्रियां भी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि वे सब चाहती थीं कि सीता जी जो इतनी देर से मन में यही सोच रही हैं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है, उनके जीवन का निश्चय क्या होने वाला है, उनका संगी कौन बनने वाला है, आज वो सारा जो सोच था, वो सारी जो चिंता थी वो मिट रही है। इसलिए देवताओं की स्त्रियां अपने
मन की प्रसन्नता को

प्रकट करने के लिए नाच रही हैं, गा रही हैं। नृत्य और गीत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम जब प्रसन्न होते हैं तो गाते हैं, नाचते हैं। हमें परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी है, अपनी भक्ति प्रकट करनी है, तो भी हम गाते हैं और कभी कभी उमंग में भर करके नृत्य भी करने लगते हैं। इसलिए देवताओं की स्त्रियां भी बहुत प्रसन्न हैं और अपनी प्रसन्नता वो नाच और गा करके अभिव्यक्त कर रही हैं। और क्या कर रही हैं? बार बार कुसुमांजलि छूटी, उनके हाथों से पुष्पों की अंजलियां बार बार छूट रही हैं, यानी वो जान रही हैं कि उन्होंने पुष्पों की वर्षा कर दी है, फिर भी मन नहीं मान रहा है और बार बार वे पुष्पांजलि वहाँ से ऊपर से ही आकाश से ही फूलों की बरसात कर रही हैं। जहाँ तहाँ विप्रभेद धुनि कर रही, बंदी बिरदावली उच्च रही, जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेदों का पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और भाट लोग बिरदावली बखान रहे हैं, यानी दोनों पक्षों के वंश का गान कर रहे हैं कि इन जो दो वंशों का मिलन हो रहा है, एक ओर रघुकुल और एक ओर राजा जनक के कुल, दोनों का मिलन आज हो रहा है और दोनों परिवार, दोनों कुल कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ। ऐसे श्रेष्ठ दो परिवारों का, दो कुलों का, दो वंशों का आज मिलन हो रहा है और उनकी कीर्ति का बखान जितने भाट लोग हैं, बंदी लोग हैं, वो कर रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरुदावली गाते हैं, उनका काम ही यही होता है कि गीत के माध्यम से जिस वंश का कार्यक्रम चल रहा है उसका यशोगान करें। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसी भंज उचापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। तीनों लोकों में यश फैल गया, तीनों लोकों में देखते देखते ये बात फैल गई कि सीता राम जी का विवाह हो गया है। और करही आरती पुर नर नारी, नगर के नर और नारी आरती कर रहे हैं। देहि निछावरी बित्त बिसारी, और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं, यानी जितना उनका सामर्थ्य है, जितनी उनकी बिसात है, यानी जितना उनके पास है उससे भी अधिक वो न्योछावर कर रहे हैं। न्योछावर करना यानी दान करना। तो जो कुछ उनके पास है वो राम और सीता जी को बार करके उनके ऊपर से ऐसे करके घुमा करके उसे लोगों को बांट रहे हैं। ये मन की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है जो भारतीय परंपरा में बहुत ही प्रचलित है। सोहति सीय राम कै जोरी, छबि सिंगार मनहु एक ठोरी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री सीता और राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है माने सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। कौन है सुंदरता? सीता जी सुंदरता की सीमा है। कैसी हो सकती है सुंदरता, इसे जानना हो तो कोई सीता जी को देख ले। और राम जी मानो श्रृंगार रस हैं, और श्रृंगार रस और सुंदरता दोनों का मिलन होने जा रहा है, तो लग रहा है कि श्रृंगार और सुंदरता एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। सखी कहीं प्रभुपद गहु सीता, कर अति न चरण परस अति भीता। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। यहाँ तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहने जा रहे हैं जिसे अगले दोहे में हम देखेंगे। यहाँ केवल संकेत कर रहे हैं क्या कि अब सीता जी ने जयमाल पहना दी, अब उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। इतनी चारों ओर लोग बैठे हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, माँ की सखियां हैं, सहेलियां हैं, इतने बड़े बड़े राजा हैं, सबके सामने सीता जी को राम जी के गले में जयमाल पहनानी है, बड़े संकोच के साथ पहना दी। जय जयकार हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, देवता लोग, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, और ऐसे में सीता जी को अपने तन की

खुद बुद्धि ही नहीं है, ना तन की ना मन की, तो उनको ये याद ही नहीं रहा कि उन्हें श्री राम जी के चरणों का स्पर्श करना है। अब सखियां देख रही हैं कि सीता जी तो बिल्कुल चित्रवत खड़ी हैं, ना हिल रही हैं ना डुल रही हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उन्हें सखियां बता रही हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या करना है, अब राम जी के चरणों का स्पर्श करो। लेकिन सीता जी भयभीत हो रही हैं और चरण नहीं छू रही हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भयभीत क्यों हो रही हैं, इसमें भय करने की कौन सी बात है? जिससे वो चाहती थी उनसे उनका विवाह हो रहा है, उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, तो इसमें भयभीत होने की क्या बात है? अब इस दोहे में तुलसीदास जी बताने जा रहे हैं क्यों सीता जी संकोच कर रही हैं, क्यों भयभीत हो रही हैं। आइए हम समझें। गौतम ति अगति सुरति करी, नहीं पर सति पग पानी, मन बिहसे रघुबंस मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। सीता जी क्यों भयभीत हो रही थी? तो तुलसीदास जी बता रहे हैं वो मन ही मन कुछ सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? उनको तुरंत याद आ गया कि अरे राम जी ने अहल्या जी ने राम जी के चरण छुए थे। आपको कथा मालूम है कि जब विश्वामित्र जी राम जी के साथ ताड़का सुबाहु के वध के बाद उन्हें ले करके जनकपुरी आ रहे थे, तो रास्ते में गौतम ऋषि अहल्या जी का आश्रम था, गुरु उन्हें ले गए और उन्हें देख करके माता अहल्या ने उनके चरण छुए थे, क्योंकि वो पत्थर की बनी थी। राम जी ने उन्हें जब चरणों से स्पर्श किया तो वे स्त्री बन गईं, और फिर अहल्या जी ने उनके चरणों का स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वो सारी घटना सीता जी के मन में मानो चलचित्र की तरह चलने लगी। उनको वो सारी घटना याद आ गई तो वो डर गई। सीता जी सोचने लगती हैं कि कहीं मेरी भी वही गति ना हो जो अहल्या जी की हुई। गौतम ति अगति सुरति करी, नहीं परस गति पग पानी, मन बिहसे रघुबंस मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। आइए इसे समझें। सीता जी को अपने दोनों हाथों से श्री राम के चरणों का स्पर्श करना है, लेकिन उनके मन में एक संकोच हो रहा है, और संकोच ये है कि जब श्री राम ने अहल्या जी का स्पर्श किया अपने चरणों से, तो अहल्या जो पाषाण की थी, पत्थर की थी, वे स्त्री बन गईं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने हाथों से जब श्री राम के चरणों का स्पर्श करूं तो मेरे ये हाथ भी कहीं दो स्त्रियां ना बन जाएं। और इसी संकोच के कारण वे श्री राम का चरण स्पर्श करने में सकुचा रही हैं। लेकिन उनकी स्थिति को श्री राम जी भली प्रकार समझ रहे हैं, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि झटपट वे चरणों का स्पर्श कर लेती, लेकिन वे खड़ी हैं, झुकी हैं, लेकिन हाथ उनके श्री राम के चरणों तक जा नहीं रहे हैं। और श्री राम जी से तो किसी के मन की बात छुपी रह ही नहीं सकती, और वो भी भला सीता जी के मन की बात राम जी ना जाने, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए उनकी स्थिति को समझ करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। इस दोहे की सुंदरता यह है कि इसमें बहुत सारे भाव तुलसीदास जी ने एक साथ डाल दिए हैं। एक तो श्री राम की प्रभुता का वो हमें स्मरण करा रहे हैं कि श्री राम में इतनी शक्ति है
कि यदि वे किसी का स्पर्श अपने चरणों से भी कर दें

तो वह वस्तु रूपांतरित हो सकती है। ये श्री राम की विभुता है, उनकी प्रभुता है। दूसरी बात कि ये जो समाचार है ये सीता जी तक भी पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि उस समय भी छोटी छोटी भी बातें बड़ी जल्दी चारों ओर फैल जाती थी। तो सीता जी ये जान चुकी हैं कि गौतम ऋषि अहल्या का उद्धार किस प्रकार श्री राम ने किया था। और तीसरी बात कि सीता जी के मन की लज्जा और उनके संकोच को, उनके प्रेम को बहुत ही मार्मिक, बहुत ही आलंकारिक और बहुत ही काव्यात्मक दृष्टि से तुलसीदास जी ने इस दोहे में प्रस्तुत किया है। और आज इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए एक भजन सुने और उसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।

चलिए श्रोताओ, 10:40 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सोमवार का दिन है आज, तो चलिए आज का दिन समर्पित है भगवान शिव जी को। और आपको पता है कि शिव जी जो है सत्य है, सत्य में ही शिव जी है। तो कुछ भक्ति गान जो है दिन के 11 बजे तक आपकी सेवा में।

श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हम शिव जी की जय जयकार कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। जिस मन में शिव का स्मरण है, वहाँ भय से अधिक विश्वास और अशांति से अधिक शांति होती है। और भोलेनाथ का यही संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना है। हमें अहंकार छोड़ना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। शिव के मस्तक का चंद्रमा शीतलता का, गंगा पवित्रता का और त्रिशूल शक्ति व संतुलन का प्रतीक माना जाता है।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि महादेव का जीवन हमें त्याग, धैर्य और करुणा का संदेश देता है। वे बताते हैं कि परिस्थितियों की कैसी भी हो, अपने भीतर का संतुलन हमें बनाए रखना है, यही सच्ची शक्ति है। और कहते हैं ना, शिव के चरणों में सच्चे मन से किया गया समर्पण मन को हल्का कर देता है। जब विश्वास मजबूत हो तो जीवन की राह में आने वाली मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। तो आइए कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। वैसे आप लोगों का साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे और समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। तो हमारी ओर से आप सभी को शुभ दिन।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मंत्रिपरिषद ने खाद्य फसलों की खेती में कीटनाशकों के दुरुपयोग और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों की जांच के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित करने को मंजूरी दी है। इस समिति की अध्यक्षता कृषि उद्योग मंत्री करेंगे। समिति का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि मॉरिशस में कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर की बढ़ती व्यापकता के बीच कोई संभावित संबंध है या नहीं। मॉरिशस इस साल के अंत तक अपना दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च करने का इरादा रखता है। ये जानकारी मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंतरिम निदेशक प्रोफेसर तिसान बहुरन ने दी। वे सोमवार को मॉरिशस स्पेस स्ट्रेटेजी 2036 के अनावरण के मौके पर बोल रहे थे। इस रणनीति का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मॉरिशस के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास के एक नए स्तंभ के रूप में विकसित करना है। मकसद सिर्फ शोध के लिए उपग्रह विकसित करना नहीं बल्कि सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करना भी है। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। कल संचालन को लेकर ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा मंत्री पथिकासिया वादन की अध्यक्षता में एक आपात समिति लगाई जाएगी। देश के जलाशयों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है। मगोवाक्वा में मात्र 36.6% पानी है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो साल के अंत तक पानी का स्तर 20% की रेखा से कम हो जाएगा। इसके चलते कई सख्त कदम निर्धारित हैं जिनकी जिम्मेदारी कल लगने वाली समिति की होगी। विदेश में बरमूडा से बोस्टन जा रहे एक मेडिकल विमान शनिवार को समंदर में गिरा। इसमें 6 यात्री सवार थे जिनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। कल यूएस कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया कि उसकी टीम बचाव कार्रवाई रोक रही है। अभी तक इस दुर्घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये

तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार। रारोज शुमेला फोश पुस्तुफलाक में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमती देवी सुनाराम जो अनीता कुचुया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान रारोज

0: कर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 10 जूलियस बुशरा स्ट्रीट बैटरी कासेमे। नंबर 10 जूलियस बुशरा स्ट्रीट बैटरी कासेमे 59 साल की 59 years old की श्रीमती संगीता देवी नागादू। श्रीमती संगीता देवी नागादू जो ज्योति के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके मकान नंबर 10 जूलियस बुशरा स्ट्रीट पत्रिका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले दिपहत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। पृथ्वीराज गुडलैंड्स में 75 साल की 75 years old की श्रीमती कोमावदी रंगन। श्रीमती कोमावदी रंगन पैदाशी नाम पालानी और जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 2:30 बजे उनके मकान पृथ्वीराज गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। पंडित किस्तो स्ट्रीट पिचिबेलिया में 97 साल के 97 years old की श्रीमती बदमुंती निकित सिंह। श्रीमती बदमुंती निकित सिंह पैदाशी नाम भलक सिंह और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे प्रीतम सिंह निकित सिंह के मकान पंडित किस्तो स्ट्रीट पिचिबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रहम दिल में हो तो इंसान इंसान बन जाता है, रहम दिल में हो तो इंसान इंसान बन जाता है। किसी के दर्द का मरहम ईमान बन जाता है, किसी के दर्द का मरहम ईमान बन जाता है। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैरवाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में हर पीर की तरह आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम। ताक़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हां, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक

जो लोग काफिर हैं अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि कयामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है।

0: और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है, और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है।
1: Yeah.

ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं कुछ तो उन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं उनकी वजह से गमनाक न होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए।

बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद दूर ले जाती हैं। लोगों से कहती हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो इससे बचना, और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है।

ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या रूगर्दानी कर लेना, और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकदमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, ये इसे जानते हैं, फिर उसके बाद इससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते हैं।

बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फरमाबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं और मुशायख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं।

और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफारा होगा, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं।

और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं।

और ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है, तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक मिल्लत के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा।

0: और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना और उनसे मोहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका ना दें। अब अगर ये न माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बास गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या ये जमाने जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं? और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक वो अजीम कलाम है जो दिलों को सुकून

ज़िंदगी को रास्ता और इंसान को अपने रब की रहमत से आशना करता है। कुरान करीम की हर आयत हमारे लिए हिदायत भी है, रहमत भी और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका भी। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: सामीन, अब आप समात फरमाएंगे हर पीर की तरह मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात व सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रोज़ बगदाद मुअल्ला के जय्यद आलिम हज़रत सैयदना अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर उनको गले लगा लिया, पेशानी चूमकर बड़ी ताज़ीम के साथ अपने पास बिठाया। हाज़रीन ने अर्ज़ किया, या सैयदी, आप और अहले बगदाद आज तक इन्हें दीवाना कहते रहे हैं, मगर आज इनकी इस कदर ताज़ीम क्यों? जवाब इरशाद फरमाया, मैंने यूं ऐसा ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रात मैंने ख्वाब में ये ईमान अफरोज़ मंज़र देखा कि हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इनको अपने सीने से लगा लिया और पेशानी को बोसा देकर अपने पहलू में बिठा लिया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली पर इस कदर शफ़क़त की वजह? अल्लाह पाक के प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की ख़बर देते हुए इरशाद फरमाया कि ये हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है। कौन सी आयत है? सूरह तौबा 11वां सिपारा आयत नंबर 128। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुम अलैकुम बिल्मुमिनीन रऊफुर रहीम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। नियत कर लीजिए हर नमाज के बाद ये आयत करीमा पढ़ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकतें पाएंगे। हज़रत सैयदना उबैद बिन अबू जाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत करते हैं कि लोगों को पता चला कि सहाबी नबी हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इराक़ के शहर मदाइन की एक मस्जिद में हैं, तो वो उनके पास हाज़िर होने लगे, यहाँ तक कि 1000 के लगभग लोग वहाँ जमा हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर फरमाया, सब लोग बैठ जाएँ। जब लोग बैठ गए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह यूसुफ़ की तिलावत शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से निकलने लगे, यहाँ तक कि 100 के करीब अफराद बाकी रह गए। आपने जलाल में आकर फरमाया, तुमने मन घड़त और फजूल बातें सुनना चाहीं, लेकिन मैंने तुम्हें अल्लाह पाक का कलाम सुनाया तो उठकर चले गए। ए आशिकाने रसूल, तिलावत कुरान करना और सुनना यकीनन बड़े सवाब का काम है, मगर अफसोस अब इससे लोगों में काफ़ी दूरी पाई जा रही है। कोई कारी साहब तिलावत करें तो सुनने को जी नहीं करता। सहाबा किराम अली मुरीदवान के शौक़ तिलावत के बारे में इहयाउल उलूम पहली जिल्द सफ़ा नंबर 845 पर मरवी है, यानी बयान किया गया है कि सहाबा किराम अली मुरीदवान जब इकट्ठे होते तो किसी एक से कहते कि कुरान करीम की कोई सूरत सुनाओ। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो शख्स कुरान पाक की कोई आयत सुनता है क़्यामत के दिन वो उसके लिए नूर होगी। सुबहान अल्लाह। देखा आपने कुरान करीम की तिलावत सुनने का कितना अजीम शान अजर है, और तिलावत करने वाला जो इसका सबब है वो भी अजर व सवाब में इसका शरीक है, बशर्त ये कि रियाकारी और बनावट की नीयत ना हो। दिल लगे या ना लगे, इबादत व तिलावत जारी रखना चाहिए, इंशाल्लाह कभी ना कभी दिल लग ही जाएगा। हज़रत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, दिल ना लगने के बावजूद मैंने 20 साल कुरान पाक से तिलावत करने की मुशक्क़त उठाई और फिर 20 साल इसकी हलावत यानी लज्जत पाई। हर रोज़ मैं कुरान पढ़ूँ, काश खुदाया

अल्लाह तिलावत में मेरे दिल को लगा दे। ज़बान पर जब खैर ही खैर जारी होगा, ज़िक्र व दुरूद का विर्द होगा, फजूल बातों की आदत ना होगी, तो झूठ गीबत चोली व ऐब जोई वगैरह गुनाहों से भी जान छूटी रहेगी और यूँ इंशाअल्लाह जन्नत में जाने के असबाब हो जाएंगे। चुनाचे सैयदुना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, हज़रत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम की खिदमत बाबरकत में लोगों ने अर्ज़ किया, कोई ऐसा अमल बताइए जिससे जन्नत मिले। आप अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, कभी बोलो मत। उन्होंने अर्ज़ किया, ये तो नहीं हो सकता। फरमाया, अच्छी बात के सिवा ज़बान से कुछ मत निकालो। अक्सर मेरे होठों पे रहे ज़िक्र मदीना, अल्लाह ज़बां का हो आता कुफ्ल मदीना। ए जन्नत के तलबगारो, इस वाक़े से मालूम हुआ कि ज़बान को काबू में रखना और गैर ज़रूरी बातों से बचना भी जन्नत में ले जाने वाला काम है। ज़बान और दीगर अज़ाए बदन को गुनाहों से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले आमाल बजा लाने का जज्बा पाने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रज बस जाइए, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। आखिरत की भलाइयाँ शौक पाने का बढ़ाने के लिए आइए आपको एक मदनी बहार सुनाता हूँ, आपकी गोश गुजार करता हूँ। चुनाचे बहुत पहले की बात है कि सिंध की एक खातून ऐसे दफ्तर में काम करती थी, सामू गैमू पिपो ओ कपाब आजूसा मजा आओ को उफियाली दिली थी। ए जन्नत के तलबगार, इस वाक़े से मालूम हुआ कि ज़बान को काबू में रखना और गैर ज़रूरी बातों से बचना भी जन्नत में ले जाने वाले काम हैं। जिसकी ज़बान कैंची की तरह हर बात को काटती चली जाती हो, वो दूसरे की बात अच्छी तरह समझने से महरूम रहेगा, बल्कि बातूनी शख्स के लिए ये भी ख़तरा रहता है कि बक बक करते हुए ज़बान से माज़ल्ला कुफ्रिया कलमात भी निकल जाएं। हज़रत इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इहयाउल उलूम में लिखते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया, खामोश रहने वाले शख्स में दो खूबियाँ जमा हो जाती हैं, उसका दीन सलामत रहता है, दूसरे की बात अच्छी तरह समझ लेता है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक की अता से लोगों को देखकर पहचान लेते थे कि ये जन्नती है या जहन्नमी, बल्कि आने वाले की पहले से ख़बर हो जाती थी कि वो जन्नती है दोज़खी। चुनाचे अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, जो शख्स सबसे पहले इस दरवाज़े से दाखिल होगा वो जन्नती है। इतने में हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़े से दाखिल हुए। लोगों ने इनको मुबारकबाद देते हुए पूछा कि आखिर किस अमल के सबब आपको ये सआदत मिली। फरमाया, मेरा अमल तो बहुत थोड़ा है और जिसकी मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता हूँ वो मेरे सीने की सलामती और बे मकसद यानी फजूल बातों को छोड़ना है। इस हदीस पाक के अल्फाज सलामतुस सदरी यानी सीने की सलामती से मुराद दिल का लगवियात यानी फजूलियात बुग्ज़ व हसद वगैरह अमराज बातिनिया यानी गुनाहों की छुपी हुई बीमारियों से पाक होना और दिल में ईमान का मजबूत होना। रफ्तार का गुफ्तार का किरदार का दे दे हर उजू का दे मुझको खुदा कुफ्ल मदीना। सुबहानअल्लाह, सहाबी नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला के मुकद्दर की क्या बात है कि इन्हें ज़बान नबी से जन्नती होने की बिशारत मिली। बेशक आप रदी अल्लाह तआला अन्हो जन्नती हैं और सिर्फ आप ही नहीं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। फैज़ान नमाज पेज 329 से लेकर 330 पर है कि अल्लाह पाक पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यस्तवी मिनकुम मन अन्फक मिन क़ब्लिल फतह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजात أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير। ترجمہ قرآن کا ذوال عرفان, تم میں فتحہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں, وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں

बड़े हैं और इन सब से अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज़ का वादा फरमा लिया है और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। मुफसिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, इन सहाबाए किराम अली मुरिदवान के दर्जे अगरचे मुख्तलिफ हैं मगर इन सब का जन्नती होना बिल्कुल यकीनी है क्योंकि रब वादा फरमा चुका है। तमाम सहाबा आदिल व मुत्तकी हैं क्योंकि रब करीम ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। जन्नत का वादा फासिक यानी गुनाहगार से नहीं होता। नूरुल इरफान आयत मस्कूरा के तहत हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती और सहाबियात की निस्बत से हमारे लिए वाजिबुल ताज़ीम है और किसी भी सहाबी की गुस्ताखी हराम और गुमराही है। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती और सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, है उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन व हुसैन भी जन्नती जन्नती जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फजूल बातें अगरचे गुनाह नहीं तहम इनमें कोई भलाई भी नहीं। सुभान अल्लाह, अभी आपने एक रिवायत सुनी जिसमें सहाबी नबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला को ज़बान रिसालत से दुनिया ही में जन्नत की बिशारत इनायत हो गई। आप रदी अल्लाह तआला में एक खूबी ये भी थी कि कभी फजूल बातों में नहीं पड़ते थे। जिस काम से वास्ता ना होता उसके बारे में पूछते तक नहीं थे। लेकिन अफसोस, हमारा जिन मामला से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं होता फिर भी इनमें मुदाखिलत इंटरफेयर करते हैं और इनके मुतालिक बिला ज़रूरत सवाल करते रहते हैं। महज लज्जत के लिए ज़्यादा खाने पीने की कुरान और हदीस में मुज़म्मत आई। पेट जब ज़्यादा भर जाता है तो मस्ती भी ज़्यादा सूझती है और ज़बान भी कैची की तरह चलने लगती है, और जब भूख लगी होती है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है, ज़्यादा बोलने को जी नहीं चाहता। चुनाचे हज़रत शेख अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, हमारे असलाफ यानी गुज़रे हुए बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजमाइन सख्त भूख बर्दाश्त करते और पेट ना भरा करते ताकि उनकी खामोशी ज़्यादा हो और फजूल गोई कम हो, जैसा कि बाअमल उलमाए दीन की आदत मुबारक थी। क्योंकि जिनका पेट खूब भरा हुआ होता है उसका बेफ़ायदा बोलना भी बढ़ जाता है। हज़रत सैयदुना मोहम्मद राहिबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, पेट में फजूल खाना भरने वाली की ज़बान से बातें भी फजूल निकलेंगी। तेज़ो तलवार तीरो तलवार से सिर्फ जिस्म घायल यानी ज़ख्मी होता है मगर ज़बान की वजह से दिल घायल हो जाता है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान को तीर मारना उसको ज़बान से बुरा भला कहने से कम है क्योंकि ज़बान के निशाने कभी ख़ता नहीं होते। जो शख्स अपनी ज़बान को कैदी बनाने में कामयाब हो गया वो यकीनन बेशुमार फितनों से महफूज हो गया। चुनाचे सहाबी रसूल हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कसम उस ज़ात पाक की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे ज़बान से ज़्यादा कैद में रखना ज़रूरी हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम खूब खूब नेक आमाल ज़्यादा करें, अपने आप को नेकियों में मसरूफ़ रखें। जैसे ज़िक्र व दुरूद है, तस्बीहात है, तिलावत कलाम पाक है जिससे हमने सुना कि इनकी बरकत से गुनाहों से इंसान बचा रहता है, गुनाह नहीं करता और फजूल बातों में नहीं लगता। हमने ये भी सुना कि जो फजूल बातों से बचता है उसके लिए बड़ी बड़ी बशारतें हैं, बहुत नोवेल हैं उसके लिए, अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ हैं। जैसा कि हमने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना कि अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बिशारत अता फरमाई, तो पूछा गया कि कौन से ऐसे आमाल हैं, तो आपने उनमें

0: से ये भी इरशाद फरमाया कि मैं फजूल बातों से बचता हूँ। तो काश हम भी फजूल बातों से बच जाएं। जिक्र और दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। तिलावत कलाम पाक करते रहें। जिस तरह हमने ये भी सुना कि तिलावत कलाम पाक करते हैं तो दिल नहीं लगता, सुनते हैं तो सुनने का माज़ल्ला दिल नहीं चाहता, आदत बनाएं, सुनते रहें, पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आदत बन जाएगी तो इसमें मज़ा भी आने लगेगा। और सहाबा इकराम अली मुरिदवान के बारे में हमने सुना कि जब जमा होते तो फरमाते एक दूसरे से किसी से कि भाई कुरान की आयत सुनाओ, कुरान की सूरत सुनाओ। काश हम भी कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएं, जिक्र वस्कार करने वाले बन जाएं। इंशाल्लाह इसकी बरकत से, नेक आमाल की बरकत से फजूल बातों से, फजूल गोइयों से, बुरी बातों से बचने में कामयाब हो जाएंगे। हमने ये भी सुना है कि जो फजूल बातें ज़्यादा करता है तो फिर उसके मुँह से कुफ्र भी निकल जाता है, लोगों की दिलाज़ारियाँ भी हो जाती हैं। हमने ये भी सुना कि जो तीर का निशान वो होता है निशाना, वो चुक सकता है यानी मिस हो सकता है, ज़बान का निशाना मिस नहीं हो सकता। और जो ज़बान से जो चोट लगती है, जो घायल होता है आदमी, ओ तो वो तीर का जो घायल होना है वो उससे कई ज़्यादा है। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों से, इन बातों पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मोहतरम सामईन, इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि हमारे दिलों में रहम, शफ़क़त, मोहब्बत, दरगुज़र और मखलूक़ खुदा की खैर ख्वाही भी पैदा करता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराबाए रहमत थे। अल्लाह ताला ने आपके बारे में इरशाद फरमाया तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।

आइए रहम की अहमियत के हवाले से बात करते हैं। रहम सिर्फ किसी पर तर्स खाने का नाम नहीं, रहम ये है कि हम किसी की तकलीफ़ को महसूस करें, किसी रोते हुए को तसल्ली दें, किसी परेशान हाल की मदद करें, किसी की गलती को माफ़ करें और जहां मुमकिन हो किसी के लिए आसानियां पैदा करें। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। बहवाला सही बुखारी व मुस्लिम शरीफ। मौज़े सामीन, सोचिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए तो हमें भी उसकी मखलूक के लिए अपने दिल में रहम पैदा करना चाहिए। रहम अपने बच्चों के लिए भी हो, वालदैन के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए भी, यहाँ तक के इस्लाम जानवरों के साथ भी रहम और हुस्न सुलूक की तालीमात देता है।

मोहतरम सामीन, कभी कभी हमारी एक नर्म बात, एक मुस्कुराहट, एक मुआफ़ी और एक छोटी सी मदद किसी इंसान के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाती है। ऐसा दिल मांगिए जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, ऐसी ज़ुबान मांगिए जो किसी ज़ख्मी दिल पर मरहम रखे, ऐसे हाथ मांगिए जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उठें, और ऐसी ज़िंदगी मांगिए जिससे अल्लाह की मखलूक को राहत पहुँचे। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय पहुंचे बपू ना पूना बे।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 calories. This is Radio Marches.
1: दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। आइए एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चलिए। ये विज्ञप्ति है वाकवा के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर ऑगस रोड एवेन्यू ल्यूसियन दे शाजाल रू दे नाशों यूनियंस और कुछ इलाके फ्लोरियाल रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 5 अक्टूबर को दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आगे का कार्यक्रम जारी रखते हैं। चाइनीज कैंटोनीज भाषा में प्रस्तुतिकरण है डेविड की।
0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: 亲爱的听众朋友您好，我是张大卫，希望今天的节目能让您放松一下，希望音乐可以陪着你走过以下的30分钟的美好时刻。

人生种种经历，无论逆顺，皆是成长之养分，值得细细回味。

音律之妙不在于技巧繁复，而在于能触动人心，令听者同感深受。

句简单的关心，有时候就足以温暖人心。别忘了，你也是别人生命里重要的存在。

घड़ी मिला लीजिए, समय ठीक 2:30 बज रहे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, तहे दिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, पहुँची हूँ आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक हम रहेंगे आप ही के पसंदीदा गीतों को चलाने के लिए। तो जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं, बस आशा करते हैं कि आप भी दिल से साथ निभाएंगे। 4028085 पर अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, 4028085 पर। और अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 5251705। जी हाँ, इसी के साथ चलिए प्रथानुसार हम तो शुरुआत करते हैं 90s के एक हसीन गाने के साथ, और कुमार शानू साहब के साथ कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज़। फिल्म है संजय से लिया हुआ ये गाना।

मौसम की क्या बात करें, मौसम भी कुछ ऐसे ही परिवर्तित हो रहा है। कभी गर्मी, कभी इतनी सर्दी, और कई भाई एक दो दिन से कुछ ठंड ज्यादा ही है। और ऐसे में आपकी पसंद कार्यक्रम का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो चलिए, ऐसे लाजवाब गीतों के साथ ये कार्यक्रम हम सजा रहे हैं। फिलहाल कुछ नए कुछ पुराने गीतों के साथ आपका साथ हम दे रहे हैं, और यहाँ पर विश्वानी दुमन हमेशा की तरह वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं। उनकी प्यारी बहनें इंदिरा और शारदा, सखियाँ हैं नीला और प्रतिभा, साथ है शोभा और गीता गजाधर। फिल्म जालिम का ये गाना उन्होंने मांगा है। हाय जालिम, क्या गाना है! विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति, साथ दिया है सुरेश वाडकर ने। चलिए इस गाने को सुनते हैं। बिल्कुल, जिंदगी का ये जो सफर है ना, 4 दिन का है। 2 दिन तो दिन और रात में निकल जाते हैं, कुछ दिन निकल जाते हैं खाने पीने में, 1 दिन रह जाता है उसमें भी हम झगड़ा करते रहते हैं। खुशी बांटिए और इस गीत को प्यार से सुनिए।

जिंदगी में कभी खुशी है कभी गम है, हर कदम पर जिंदगी हमें क्या दिखाती है ये पहले से कोई नहीं जानता। जानते तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। पर चलिए, यहाँ खुशियाँ बांटने के लिए हम आए हैं, आपका साथ देने के लिए। और इस वक्त 2:46 हो चुके हैं। चलिए, समय की गति बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ले चलते हैं आपको पुराने दिनों में, 50s के ज़माने में। आदा फिल्म से लिया हुआ ये गाना जाएगा। शीला जी जो हमें साथ दे रही हैं दीपिने की ओर से, उनके नाम करेंगे ये प्यारा सा गीत।

कहीं सांवरे की मन सूरत अच्छी लग रही है तो कहीं गोरी सांवरिया को बुला रही है। और ये प्यारा सा गाना है फिल्म ताज से लिया हुआ। श्यामा रघुनंदन जी ने इस गीत की फरमाइश की है घोंघुप से। उनके प्यारे भैया है जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, साथ है केशव और युधीश, दो प्यारी सखियां विश्वानी और वीना राम, हेमंत कुमार की प्यारी सी आवाज।

आपकी पसंद, आपकी पसंद का कार्यक्रम है और यहाँ पर बिल्कुल आप ही के पसंदीदा गीतों को हम चलाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ पर चलिए एक और प्यारा सा मजेदार सा पुराना सा गीत है जो मांगा है किसी ने अपने प्यारे से दोस्त के लिए। शिवरानी जी इस वक्त हमारा साथ दे रही है घोंबुआ से और उनके एक खास दोस्त के लिए उन्होंने मांगा है फिल्म आह का ये गीत। आवाजें हैं लता जी और मुकेश साहब की। चलिए इस गीत को प्यारे से दोस्त के नाम करते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो ये गाना बिल्कुल आपके नाम।

0: अंदाज यही है कि जिंदगी सफर है सुहाना, बस इसे अपनों के साथ बिताना। किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज और ये गाना जाएगा सुनीता जी के नाम, जो है घोंघोप की रहने वाली और उनकी तीनों प्यारी बहनें उनके यहाँ आई हैं, विमला, अमृत और वीना जी, और बस मजे कर रही हैं चारों की चारों बहनें। जैसे कहते हैं ना, बचपन वापस आ गया हो,
1: क्या हो किसने जाना।
0: इसी मस्ती के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ, 3 बजे के समाचारों के साथ, और ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा समाचारों के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, गुनगुनाते हुए इस गीत को एंजॉय करते रहे।

0: सभी को मेरा नमस्कार। टीचर्स डे के मौके पर शिक्षण से जुड़े पेशेवरों ने एक बार फिर उन चुनौतियों को गौर किया जिनका सामना उन्हें रोजाना करना पड़ता है। अनुशासन, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन और काम करने की परिस्थितियों जैसे मुख्य पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षक डे के संदर्भ में गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने आज कैचबोन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। मौके के मुख्य मेहमान शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिए। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025-2026 की अवधि के लिए सरकार ने शिक्षा प्रणाली के लिए 25.7 मिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। ये जीडीपी में 8.9% की बढ़ोतरी दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या ने हल्की मतलब छात्रों की संख्या में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ल्ड नीट टेक्सटाइल और यूनिवर्सल फैब्रिक के लगभग 600 कर्मचारी अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं। वहीं श्रमिक संघों के फेडरेशन ने इस बात की आलोचना की है कि जब से इन कंपनियों को वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाया गया है तब से कोई नई त्रिपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। विदेश में फ्रांस में हाल के दिनों में दंगा रोधी पुलिस और छात्र प्रदर्शन कार्यों को लेकर वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने के कारण लगभग 400 से 500 हाई स्कूलों में कक्षाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित की गई हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रेम्यूनियर लागुलेट में 63 साल के 63 years old श्री बाबाजी जिन्हें लोग लातेत नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी मानती बाबाजी के मकान रेम्यूनियर लागुलेट से उठाकर बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्त्रियोली में 68 साल के 68 years old श्री मधुरलाल जीवन श्री मदनलाल जीवन जिन्हें लोग सुनील नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान शिवाला रोड बाल्मिक लेन त्यामिनिस्त्रियोली से उठाकर त्यामिनिस्त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM रायरुद शुमेला फोर्ज पुस डी फ्लाक में 69 साल की 69 years old सुमति देवी सोनाराम जिन्हें लोग अनीता कुचिया नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान रायरुद शुमेला फोर्ज पुस डी फ्लाक से उठाकर लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM और बुलांजे रोड पिजों लेन मुंताई ब्लांश में 78 साल की 78 years old श्रीमती विद्यामती सुगंध पैदाशी नाम बुद्राम और जिन्हें लोग विद्यामती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान बुलांशे रोड पिजों लेन मुंताई ब्लांश से उठाकर मुंताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल 3:05 होने जा रहे हैं। मैं हूँ रत्ना, पुनः उपस्थित हो चुकी हूँ रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आपकी पसंद कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम बिल्कुल 4 बजे तक चलेगा। सोमवार का दिन है, 5 अक्टूबर आज की तारीख है और बिल्कुल इस मज़ेदार सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े हैं। बेशक आज 5 अक्टूबर

मॉरिशस भर में हम मना रहे हैं टीचर्स डे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने टीचर्स को आज के दिन बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी गुरुजन हैं, उन सभी को हमारी ओर से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। संध्या जी इस वक्त सैपीए से जुड़ चुकी हैं, और टीचर्स डे के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में वे मांगती है एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जो फिल्म सर से लिया हुआ गीत है।

प्यारी सी जोड़ी और ये गाना। चलिए इस गीत को हम चलाएंगे सभी टीचर्स के लिए और खास कर ये गाना संध्या जी की ओर से। इस फिल्म में नजर आई थी पूजा भट्ट और एक ऐसे हीरो अतुल अग्निहोत्री, साथ ही साथ सर के रोल में नजर आए थे नसीरुद्दीन शाह, शायद आपको याद होगा ये प्यारा सा गीत।

चलिए इसी गीत के साथ शहनाज जी आपका नाम जरूर जोड़ना चाहेंगे वाकवाक की ओर से, आप हमारा साथ दे रही हैं, सभी को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती हैं टू ऑल द टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए।

0: की पसंद।
1: बिल्कुल आपकी पसंद। और इसी के साथ चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा पुराना सा गीत है जो लता जी की आवाज़ में है, चांद मेरे आजा फिल्म से लिया हुआ ये गाना 1960s के भी उस पार का गाना है और लता जी ने गाया है ये गीत। भरत भूषण और नंदा इस फिल्म में नजर आए थे, तो चलिए इस गीत को लेते हैं। और ये गाना है रिहाना जी, आपने हमारी तो बस क्या कहे एग्जाम ले ली। चलिए फिनिक्स से आप साथ दे रही हैं और नहीं आप साथ दे रही हैं नोवेल दिकुवैत से, बिल्कुल। और आपकी प्यारी सखियां हैं सुरेखा और माला जी, माला फाउदा, जो हमारे साथ देती हैं हमेशा। तो आइए इस गीत के साथ उनका नाम भी जोड़ते हैं और इस गीत को साथ मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: बजकर 17 मिनट और यहाँ शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ चुकी है मो थाईलोंग से। आपके प्यारे बेटे आश्ले का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है, उनकी प्यारी बहन यानी आपकी प्यारी बेटी प्रीति जो है कौंजियाब की रहने वाली, फूफू गायत्री और कजिन है अजय नुएल फ्रांस से, और साथ ही साथ जन्मदिन मना रहे हैं रवि बॉशेरी से। ममा राधा उन्हें बहुत सारा प्यार देती हैं और सभी आदीन परिवार की ओर से माफ़ी चाहती हूँ राधा जी, आपकी आपकी पूरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और इसीलिए बस जो वर्ड्स मैं कैप्चर कर पाई हूँ, चलिए इतना समझ में आया कि रवि आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमारी टीम की ओर से उनको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ और हमारी ओर से ये गाना उनके नाम करना चाहेंगे।

जन्मदिन का दिन बहुत खास होता है और अपनों का प्यार अगर इसमें मिल जाए, अपनों का आशीर्वाद, इससे बड़ा तोहफा और कोई हो नहीं सकता। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ शिमला जी जुड़ चुकी है, बिलगुज से साथ दे रही हैं उनकी प्यारी बहनें रूमा, आरती, इंदिरा, भाई है राकेश, धीरज, बेटा है नमलेश, साथ है बेटी कीर्तिना। और सभी सुनने वालों का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल वाकवा से शहनाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, यूनियन पार्क से हमेशा की तरह साथ दे रही है ज्योति जी, प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और नीता के साथ। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर शफीक साहब हमारा साथ दे रहे हैं सैंपिया से, और आपने गीत की फरमाइश की थी फिल्म इकरार से लिया हुआ ये गाना, तो जरूर हम आपके नाम करेंगे ये अगला गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और बहुत ही प्यार से यहाँ पर आफेज भी जुड़ चुकी है। लावण्या सैंप ये से कहती है, हमसे नाराज हैं क्या? क्यों नाराज होंगे भाई, हम तो सभी का दिल खुश करने में लगे हुए हैं। बसंती जी भी बहुत प्यार से बासें से हमारा साथ दे रही हैं और बहुत बहुत प्यार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उदय जी रिवेजी पुस्त की ओर से प्यारी पत्नी संगीता के साथ दो प्यारी बेटियाँ स्मृति और कीर्ति, साथ है दामाद जी नागेश और आज पूरा दिन नानू के साथ यानी कि अंश के साथ अपना दिन बिताया है। और प्यारे समधी जी है, सुनील जी और समधन जी है, ज्योति जी जो रहते हैं बाशेगी, और चलिए इसी के साथ बहुत ही प्यार से साथ देते रहिएगा। यहाँ पर इंद्रानी जी लिस्ट कालिए की ओर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और दीवानगी फिल्म से लिया हुआ ये गीत मांगती हैं अपने प्यारे पति मनोहर के लिए। और साथ है येशना, संजना, अक्षय, उनके तीन प्यारे बच्चों के नाम, नातिन है वर्धिनी, साथ है नाती नीरव और गर्व। लिस्ट कालिए के सभी शिवधारी परिवार के नाम जोड़ेंगे ये प्यारा सा गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और चलिए यहाँ पर रिक्शा वाला फिल्म से लिया हुआ ये गाना जाएगा सुदेवी जी के लिए, जो वाकवा से हमेशा साथ देती हैं, और ये गाना भी मांगते हैं अपनी प्यारी बहन ललिता कुशल के लिए, जो है त्रिवली से, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, संगीता, मलेंगा से हैं राधा, बबीता और राम रतन कुवारो और रघुबा परिवार के लिए, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी के नाम आशा जी और किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज़।

ऐसे लाजवाब गीतों का सिलेक्शन बस आप ही लोग हम तक भेजते हैं और बिल्कुल आपकी पसंद कार्यक्रम में आपकी इस फरमाइश को पूरा करने का जिम्मा हम उठाते हैं। चलिए यहाँ अनीता जी हमारे साथ जुड़ी है त्रियोले से और आपने जिस गाने की फरमाइश की है, जी हाँ ये गाना हम अभी थोड़ी ही देर में चलाएंगे आपके लिए और बिल्कुल ना भूलते हुए हमराही का ये गीत हम चलाने जा रहे हैं। शिवानी जी हमारा साथ दे रही है मोत आईलोंग से, तो आइए लता जी की प्यारी सी आवाज में सुनते हैं ये गीत। और जी हाँ अनीता जी त्रियोले से आप साथ दे रही हैं अभी थोड़ी ही देर में मुकेश साहब की आवाज में जिस गीत की फरमाइश आपने की, आपकी बेटी अंजू, दामाद है वेद, सचिन और पूजा, आपके बेटे और बहू साथ है केयांश और सिया, इनके नाम करेंगे ये थोड़ी ही देर में गीत मुकेश साहब की आवाज में सूरत और सीरत फिल्म से लिया हुआ।

फिल्म है सूरत और सीरत, और मुकेश साहब की प्यारी से आवाज़ ये गाना जाएगा नीता जी के लिए, जो इस वक्त त्रियोले से साथ जुड़ी हुई हैं और आरती जी भी जुड़ चुकी हैं त्रियोले की ओर से। आपके पति हैं सुरेंद्र, बेटी है रीमा, साथ है आनंदी, शिमला बेटा है एश्ले, और कॉटेज से साथ दे

है प्यारी आशा जानू जी, मामा कुमारी, साथ है शुभम और ऋषभ, आपकी प्यारी बहन आरती और जीजा है राज, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहती है। और चलिए यहाँ पर चांदनी जी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं ब्रिटानिया से, थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी विशेस के लिए।

फिल्म है आवारा और प्यारा सा ये गीत जाएगा रेहाना के नाम, जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं फिनिक्स से। पुराने गीतों को सुनना बेहद पसंद करती है, तो चलिए बस आशा करते हैं ये गाना आपको पसंद आएगा।

तो ये गाना था रेहाने जी की पसंद पर। और चलिए इसी के साथ मालिनी जी भी मॉडल बिया से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, प्यारी बेटी छाया और पति इंद्रजीत के साथ। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं काट्रबोन से अनीता जोगागा, जिनके पति नागन जोगागा का जन्मदिन है आज, 87 इयर्स के हो चुके हैं। नारायण जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और बेटा है विक्की, बहू है पूनम, साथ है नातिन खुशी, नाती है खुशल, बेटी अंजू, दामाद है गाविन, बेटी नताशा, साथ है दामाद अविनाश और सभी नाती पोते, साथ है दिव्या, अखी और ओम, आपको बहुत सारा प्यार भेजते हैं। तो चलिए हमारी टीम की ओर से आपके नाम करेंगे ये गाना। और वैसे ये गाना चांदनी जी ने हमारे लिए मांगा था। चलिए बहुत ही बहुत प्यार कहो ना प्यार है फिल्म से कुमार शानू की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना हम आपके नाम भी जोड़ते हैं।

चलिए इसी के साथ जाने का समय हो चला है, पर बिल्कुल आज का ये जो आखिरी गाना है ये जाएगा बंधु परिवार के नाम, जो त्रियोले से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्म करम का ये गीत मुकेश साहब की आवाज में, और बिल्कुल नारायण जुगाहा जिनका आज जन्मदिन है, अगर आपको ये गाना भी पसंद आता है तो ये गाना भी हम आपके नाम करना चाहेंगे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनों का प्यार पाएं और हमेशा आप स्वस्थ रहें। आपको एक बार फिर जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ आपके सभी परिवार, और खासकर आपकी प्यारी पत्नी अनीता की ओर से, आपके बच्चों की ओर से, विकी, पूनम, नातिन है खुशी, नाती है कुशल, बेटी अंजू, दामाद रावीन, बेटी नताशा, दामाद है अविनाश, साथ है दिया, अकी, ओम, थैंक यू सो मच। और चलिए बंधु परिवार के नाम जाएगा ये आखिरी गाना, और यही गाना हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ, यानी 4 बजे आप जुड़ पाएंगे क्षितिज कार्यक्रम के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगी श्रीमती अंजू गर्बरन जी। और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपकी पसंद के कार्यक्रम में अगले सोमवार को, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में, यानी 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में हम दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुनगुनाते रहें, जिंदगी बहुत हसीन है, रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या अभी के लिए।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好 ，Assalamualaikum.
2: Kim to Mauritius.

0: நமஸ்கார்
1: ஸ்ரோதரந்தரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
2: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
3: ரேடியோ மாரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹை ஆப் சபி கா.
4: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
5: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं आज विश्व हिंदी सचिवालय के क्षितिज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है श्रीमती कल्पना लाल जी, जो यहाँ की स्थानीय बहुत जानी मानी कवित्री और लेखिका हैं। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। श्रीमती कल्पना लाल जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के क्षितिज कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद अंजू जी।
5: आज की चर्चा जो है हमारी केंद्रित रहेगी बाल साहित्य पर, क्योंकि बाल साहित्य पहले अगर सोचें तो प्राचीन काल में मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं से शुरू होकर आधुनिक काल में एक स्वतंत्र और बहुत ही समृद्ध विधा के रूप में विकसित हुआ, और बच्चों की आयु, उनका मानसिक स्तर और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला जो साहित्य होता है वे बाल साहित्य होता है। और बहुत से माता पिता जो यूरोपियन संस्कृति को अपनाते हैं, उनके लिए बेड टाइम स्टोरीज जो कहते हैं वो प्रचलित है, बच्चे कहानी सुनना। हमारे समय पर भी दादी नानी की कहानियाँ हुआ करती थी,
6: बिल्कुल,
5: जिनको हम बड़े शौक से सुनते थे। कल्पना जी, आपका क्या कहना है?
6: देखिए, हर परिवार में छोटे बच्चे होते हैं
5: जी,
6: खास तौर से जब वो बच्चे 2-3 साल के ऐसे होते हैं कि जो समझने तो लगते हैं, हालांकि उनकी भाषा थोड़ी सी कम होती है,
5: तोतली होती है,
6: लेकिन वो जो है उसी समय से जो है अपनी दादी नानी से जो है कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। और कहानियाँ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको बहुत कुछ सिखाती हैं।
5: इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले जो था वो मौखिक परंपरा थी, लोक कथाएं थी बहुत सी, कोई रामायण से कुछ अंश उठा रहा था तो कोई बाल हनुमान की कथाएं सुना रहा था, कोई बाल गणेश की कथाएं जोड़ते थे। पर जब बाल साहित्य की बात करें तो जैसे पंचतंत्र, परियों की लोक कथाएं और इन्हीं के लयबद्ध और छोटे बच्चों को आसानी से याद होने वाली बाल रचनाएं जैसे चंदा मामा दूर के हम भूल नहीं सकते। हमारे समय में चंदा मामा दूर के बहुत ही प्रचलित,
6: समय में नहीं से आज भी जो चंदा मामा दूर के ही चल रहा है,
5: बिल्कुल, रंग बिरंगे चित्रों के साथ 2 पंक्ति में दी जाने वाली शिक्षा या विचार, चाहे वे रामायण से हो, चाहे वे किन्हीं कविताओं या प्रेरणादायक कहानियों से बाल साहित्य को जोड़ा जाता है।
6: बिल्कुल, बाल साहित्य से जो जुड़े हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कविताएं हैं
5: जी,
6: कविताएं हैं, छोटी मोटी कहानियां हैं जो दादी नानी बच्चों को सुनाती हैं।
5: बिल्कुल,
6: क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है अंजू जी।
5: जी,
6: पहले तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आसानी से जो है भाषा सिखाता है।
5: बिल्कुल, जब एक गिनती सिखाना, रंगों से परिचय करवाना,
6: बिल्कुल,
5: बहुत आसान हो जाता
6: और
5: है।
6: और साथ में छोटी मोटी जो कविताएं आती है ना, जैसे आपने भी अपने बचपन की तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपके सामने जो बच्चे हैं वो मछली जल की रानी है बड़े आराम से सीख लेते हैं और ये आसान है।
5: आजकल तितलियां देखने को नहीं मिलती हैं, पर हमने तितलियों को कहानियों में जिया है।
6: बिल्कुल,
5: रंग बिरंगी तितलियां आती हैं, जुगनू जैसा, तितलियां जैसी शब्द जो हैं, अब वो शब्द हैं क्योंकि देखने को नहीं मिलते हैं, पर उनसे बाल कथाएं, बाल साहित्य जुड़ता है बहुत।
6: कहते हैं ना, तितली रानी आती है अपने पंख फैलाती है, 2-2, 3-3 शब्दों की जो होते छोटी छोटी कविताएं जो होती हैं, बच्चों को भले ही उन्होंने तितली देखी ना हो,
5: बिल्कुल,
6: लेकिन इस नाम से अगर जो है उनको एक फोटो बनाकर, एक चित्र बनाकर दे दे तो वो तितली जो है वो जिंदगी भर उनके साथ
5: साथ चलती है। बाल साहित्य और बाल मनोविज्ञान का आपस में चोली दामन का साथ है।
6: बिल्कुल,
5: जहाँ बाल साहित्य की रचना का आधार ही बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है,

0: बच्चों की रोचक उनकी जिज्ञासाओं और भावनाओं के अनुरूप इस साहित्य की रचना की जाती है।
1: जी
0: आप मुझसे सहमत होंगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाल साहित्य जो है वो केवल मनोरंजन नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: केवल मनोरंजन नहीं है, वो एक विकास की पहली सीढ़ी है जहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आसानी से जो है वो छोटी मोटी कहानियों के द्वारा या

0: चलती
1: साथ चलती हैं। इस साहित्य लेखन में बच्चों को केंद्र में रखकर उनके कोमल मन को ध्यान में रखते हुए उसकी भाषा शैली सदैव सरल और सहज बालगम्य होनी आवश्यक हो जाती है।
0: बिल्कुल, याद करने की शक्ति बढ़ती है, इससे सबसे बड़ी बात यह है।
1: बिल्कुल।
0: और भावनात्मक विकास होता है बच्चों का
1: जी,
0: और साथ ही साथ बातचीत के द्वारा जो है भाषा जो है वो उनके पकड़ में आती है।
1: बिल्कुल, सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कहानियाँ का चुनाव बच्चों को संवेदनशील और नैतिक मूल्यों का बच्चों में, क्योंकि बच्चे जो गीली मिट्टी होते हैं उनके अनुरूप हो जाता है, उनको सही दिशा और संस्कारों में ढाला जा सकता है, जो एक दो दिन का कार्य नहीं अपितु रोज एक कहानी, एक विचार, एक सोच का उन तक पहुंचना या पहुंचाना होता है।
0: केवल यही नहीं, इससे उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे में छोटी छोटी चीजें होती हैं तो बच्चे मिलजुल कर कुछ करना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं।
1: और आज जब हम देखते हैं एकल परिवार अधिक हो गए हैं, दादी नानी के यहाँ वीकेंड पे जाया जाता है, सप्ताहांत में या महीने में एक बार जुड़ते हैं, तो माता पिता या जो भी उनकी देखरेख कर रहा है उसका ये दायित्व हो जाता है कि वे बच्चों को छोटी कविताओं और कहानियों से जोड़े।
0: केवल कविताएं कहानियां नहीं, साथ में गीत संगीत भी आता है, भले ये कहानियां गीत रूप में आती
1: हैं। इसीलिए मैंने कहा वो गायकी के साथ हो
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनको याद करने में बहुत आसानी हो
0: उनका
1: जाती है,
0: उनका ज्ञान बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: छोटी छोटी सी चीजें लेकर के जो उनको कभी देखी भी नहीं होती है वो हमेशा के लिए याद हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इस साहित्य में शब्द चयन आसान होता है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इसमें बच्चों की कल्पनाशीलता जैसा कि आपने कहा और जिज्ञासा नटखटपन का भी पूरा सम्मान किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: बाल साहित्य मनोरंजक और केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि हंसते खेलते नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी इस उर्वरा मिट्टी में रोपा जाता है,
0: शिक्षा देते हैं, उनकी आदतें जो हैं वो अच्छी आदतें उनको मिलती हैं इन कहानियों से और कविताओं से।
1: हमने अपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी, कौवे की कहानी आज तक हम भूलते नहीं हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बाल कहानियों में जानवरों की कहानियों के जरिए बुद्धि और जीवन का पाठ भी बड़ी आसानी से पढ़ाया जाता है।
0: यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी
1: जी,
0: वो जैसे समय बदल रहा है, आजकल मोबाइल है
1: जी,
0: यूट्यूब है, तो इनके जरिए भी बहुत सी कहानियां, बहुत सी चीजें जो हैं बच्चों तक पहुंचती हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन
1: आज पूरा विश्व उनके साथ जुड़ा हुआ
0: है। अगर हम देखें तो जहां कुछ अच्छाई भी होती है वहां बुराइयां भी होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उनको तो जो है सही मार्ग पे लाना जाना चाहिए।
1: बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने हेतु परियों और जादू की कहानियां भी जोड़ी जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: किन्हीं विशेष जगहों की भी, वहाँ के परिवेश की जानकारी जुड़ी और प्रेरणादायक कहानियाँ भी बाल साहित्य का ही हिस्सा होती हैं। अब हम बात करें तो कल्पना जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगी?
0: मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि जो बच्चे जब वो बोलते हैं
1: जी,
0: इस भाषा से जो है एक बात ये भी उभर कर आती है कि जब वो हिंदी बोलते हैं, छोटी छोटी शब्द बोलते हैं, तो उससे उनको साफ बोलना सिखाते हैं। कई नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हकलाते हैं
1: जी,
0: वो डर के मारे भी होता है कई बार छोटे बच्चों में, तो वो जो है वो डर जो है जब वो छोटी छोटी कविताएं पढ़ते हैं तो वो डर जो है वो उनका निकल जाता है
1: और उच्चारण शुद्ध हो जाता है।
0: उच्चारण शुद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद उनको अगली कहानी सुनने का जो है वो भी मन होता है,
1: जिज्ञासा
0: बढ़ती है और उनकी रुचि जो है इस ओर बढ़ने लगती है।
1: पहले बच्चों के लिए अलग किताबें नहीं थी, बहन जी आप सहमत होंगी मुझसे, बल्कि वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत की कथाएं मौखिक रूप से बच्चों को पहुंचाई जाती थी या सुनाई जाती थी। शुरुआत में ही मैंने कहा कि पहले ये साहित्य लिखित रूप नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: पर अब हमारे पास पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं और सिंहासन बत्तीसी जैसे ग्रंथों ने मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों, बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत सा साहित्य निर्मित हो रहा है और हो चुका भी है,
0: होता ही रहेगा। ये तो ऐसी श्रृंखला है कि जो कब से चली आ रही है और

0: निरंतर चलती रहेगी,
1: चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की कहानियों से जो है बच्चों की रुचि बढ़ती है। जब रुचि बढ़ती है तो वो कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा जब आगे आती है तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उनकी कल्पना शक्ति जो है वो भी तेज होती है और उनके जीवन में रचनात्मकता बढ़ती है, उनकी याददाश्त भी बढ़ती है जब वो इन कहानियों को सुनते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, अपने बचपन में सुनी कहानी होगी आज तक आपको याद होगी।
0: बिल्कुल, अभी मैंने कहा खरगोश और कछुए की कहानी है, कौवा प्यासा है, वो कहानी हमें आज तक याद है, हम भूल नहीं पाते हैं। और मछली जल की रानी है, ये हमारे समय की कविता है जो आज तक हमें याद है
1: और हमेशा रहेगी मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, पर जब बाल साहित्य की बात करते हैं तो इसे तीन भागों में हम बांटते हैं। शिशु साहित्य जो होता है वो 2.5 वर्ष की उम्र से 5 वर्ष तक की उम्र तक चलता है। सामान्य बाल साहित्य जो है 5 से 11 वर्ष तक या 12 वर्ष तक भी कह लें चलता है। और किशोर साहित्य जो है 13 वर्ष की उम्र से बच्चों को लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था तक ये चलता है।
1: बिल्कुल,
0: आपका क्या कहना है?
1: नहीं देखिए, हम उनको जो है समय में नहीं बांध सकते क्योंकि ये कई बार जो है
0: निरंतर चलता भी रहता है
1: और कई बच्चों पे अलग अलग भी इसका प्रयास होता है ना। कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से सीखते हैं, कुछ को समय लगता है, कुछ को पकड़ के बैठना पड़ता है, सब तरीके के बच्चे होते हैं।
0: पर
1: लेकिन
0: जो
1: शिक्षा जो है
0: बाल साहित्य की बात करें तो वो 3 भागों में बढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: केवल मनोरंजन और सरल रूप परोक्ष रूप से नैतिक शिक्षा दे जाता है। 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक तो मनोरंजन होता है।
1: बिल्कुल,
0: पर उसके बाद जब हम 5 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष तक की ओर कदम बढ़ाते हैं तो परोक्ष रूप से नैतिक शिक्षा दी जाती है ताकि वे समाज में, स्कूलों में, परिवारों में अच्छे से अपना किरदार निभा सके और अच्छी सीख दूसरों तक
1: उनको बिल्कुल
0: जा पहुंचे।
1: बिल्कुल, सीख उनको मिलनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और ये सीख इसी समय पर मिलती है
0: और
1: ये हमेशा जीवन भर रहती है।
0: और जो भी कहानी सुनाए तो उसका विशेष जो उसका समरी है वो बतानी आवश्यक हो जाती है बच्चों को
1: उसकी,
0: ताकि
1: उसमें एक शिक्षा भी होनी चाहिए। हर कहानी के पीछे एक शिक्षा होती है जो बच्चों को क्यों सुनाई जाती है, जिससे उस कहानी के माध्यम से वो इस शिक्षा को जाने, समझे और उसे अपने जीवन में उतारे।
0: और जो किशोर साहित्य है वह जीवन की छोटी छोटी समस्याओं, क्योंकि अब वे बड़े हो रहे हैं तो जीवन में समस्याएं भी आनी हैं, तो उन समस्याओं को थोड़ी गहराई से विषय में शामिल करते हुए कहानी उन तक पहुंचे ताकि वे समाज के लिए आगे आने वाली समस्याओं के साथ जूझ सकें, ना कि उलझ के रह जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सीख जो है इस समय जो सीख मिलती है वो जीवन भर रहती है
0: जी।
1: सही समय पर सही चीजें अगर बच्चों के पास पहुंच जाएं तो वो उनको अपने जीवन के लिए उतार लेते हैं। कुछ ऐसा होता है इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, लेकिन जो बच्चे सही रूप से उन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं उनका जीवन बहुत ऊँचा उठ जाता है।
0: तो बचपन का साहित्य कहना बड़ा आसान है कि बच्चों के लिए साहित्य लिखना बहुत ही सरल है, पर विशेष मनोवैज्ञानिक लोग इस पर आज की तिथि में बहुत काम कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा केंद्रित रही बाल साहित्य पर, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को पसंद आया होगा। शिव जी ने यहाँ पर हमारा साथ दिया आप तक ये कार्यक्रम पहुँचाने में, और श्रीमती कल्पना लाल जी को धन्यवाद देंगे कि वे एक देश की जानी मानी कवित्री होते हुए बाल साहित्य पे भी अपनी कलम चला चुकी हैं, आज उन्होंने यहाँ पर बाल साहित्य में चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ेंगे। आप सबका आभार और श्रीमती कल्पना लाल जी को विशेष आभार। धन्यवाद, शुभ संध्या।
2: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
2: नमस्ते दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बचपन ऐसा कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हो चुकी हूँ, रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। हर सप्ताह की तरह आज भी हम कुछ ऐसी प्यारी प्यारी बातें जो हमारे बचपन को बिल्कुल स्पेशल बनाती हैं, कुछ ऐसी ही बातों के साथ आज हम जुड़े हैं। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद और कुछ मज़ेदार बातें आपके लिए।

दोस्तों, पहले के जमाने का जो बचपन हुआ करता था और आज के समय का जो बचपन है, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही हटकर अपने अपने समय की बात है। भाई, पुराने समय में बच्चों का जो रसोई पर एक बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारा सा अनुभव, बिल्कुल आपको याद होगा, खेल खेल में कितनी सारी चीजें हम सीखते थे। सही कहा ना, जबकि आज का बचपन ज्यादातर डिजिटल स्क्रीन और आधुनिकता में सिमट कर रह चुका है। और बिल्कुल जब हम खेल खेल की बात करते हैं तो लड़के लड़कियां साथ मिलकर खेला करते थे। पहले के ज़माने में लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलते थे। इसमें मिट्टी या प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन से खाना बनाना और ऐसे अभिनय किए जाते थे। साथ ही साथ बच्चे रसोई में बड़े लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। सब्जियां छीलना, घर की सफाई करना, लड़कियां जो थी वो हमेशा कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। और साथ ही साथ रोटियां पकाना, बिल्कुल शायद आपको याद होगा, आपके घर में भी छोटे छोटे चौकी बेलन हुआ करते होंगे, जहां पर मम्मी जब रोटी पकाती थी तो साथ में बेटियां भी या कई बार बेटे भी, घर के जो छोटे बच्चे होते थे, वो साथ मिलकर रोटियां पकाने का आनंद उठाया करते थे। और खेल के दौरान लड़का और लड़की दोनों मिलकर खाना पकाते थे, खाना बांटते थे, उसका आनंद लेते थे। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बचपन बताया जाता था। चलिए, आज का बचपन थोड़ा हटकर है, इस पर भी बात करेंगे अभी थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, पहले के जमाने में जहां पर हम स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो फिजिकली हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे और बिल्कुल मम्मी पापा की मदद करना ये हमारे घर में एक रूटीन सा बन गया था। पर आज का समय भाई स्क्रीन का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आजकल के बच्चे स्क्रीन पर रसोइयाँ बनाते हैं, बिल्कुल रसोई के बजाय कहते ना कि कुकिंग गेम्स खेला करते हैं। यानी आपने देखा होगा कई सारी ऐसी गेम्स हैं जहां पर आपको रेस्टोरेंट में खाना बनाना है और ग्राहकों को परोसना है। ऐसी गेमों के साथ आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही साथ पढ़ाई का दबाव जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। सुरक्षा की चिंता के कारण माता पिता बच्चों को असल रसोई से दूर ही रखते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है ज़माना, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता बच्चों को। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि बच्चे उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। सही कहा ना हमने?

0: दोस्तों, पहले के समय में जहाँ लड़के लड़कियाँ खेलों के साथ साथ बहुत कुछ सीखते थे, वहीं आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं सीमित हो चुका है पढ़ाई में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। इसीलिए कहीं ना कहीं वे उनको इन सारी चीज़ों से दूर रखते हैं, क्योंकि एक तरह का माइंडसेट बन चुका है कि इन सारी चीज़ों में समय व्यर्थ होता है। आज यदि बच्चे कुछ बनाते भी हैं तो वे माइक्रोवेव या रेडी टू ईट फूड जो है, जिसमें पारंपरिक मेहनत नहीं होती, ऐसा समय आ चुका है जिसमें कम समय में कुछ स्वादिष्ट भोजन बस फटाफट रेडी हो जाए, ऐसे ही समय में हम मानने लगे हैं हमारा जीवन व्यतीत होने लगा है। बस पुराना जमाना जो था वो हटकर था, आज का जमाना है वो समय के साथ परिवर्तित हुआ है, पर कुछ ऐसा परिवर्तित हुआ है कि हम उन पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर यादें तो हैं, बहुत ताज़ा करने के लिए और गीतों के साथ साथ बातें हम आपके लिए हमेशा लाते हैं बचपन ऐसा कार्यक्रम के बीच।
1: बटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी
2: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।

तो दोस्तों, बचपन ऐसा कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जमाना चाहे कोई भी हो, बातें हमेशा उन यादों को सजाए रखती है। तो बस कोशिश यही रहे कि अच्छी यादों के साथ, अच्छी बातों के साथ, अच्छी आदतों के साथ अपने बच्चों को एक प्यारा सा बचपन दे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे है। नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। दुनिया के कई देशों के मंत्री, निगोशिएटर्स और वरिष्ठ अधिकारी इस गुरुवार 8 अक्टूबर से फिजी के नादी शहर में प्री कॉप सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये सम्मेलन अगले महीने तुर्की में लगने वाले कॉप 31 शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज 5 अक्टूबर को शिक्षकों को सम्मान देने और उन्हें नमन

0: करने का मौका है। ये वही लोग हैं जो हमारे भविष्य के आकार देते हैं, मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और हम में संस्कार डालते हैं। चाहे कैसी भी चुनौतियां हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक वे अपने छात्रों के सफर में अहम भूमिका निभाते हैं। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और नासा के बीच एक समझौता तय। मकसद है एक दूसरे सैटेलाइट का निर्माण तथा एक अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना करना। भले ही अंतरिक्ष में कदम रखना अभी दूर है, लेकिन इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। नई महत्वाकांक्षाएं आकार ले रही है। फ्लाई दुबई की उड़ान पर पिछले हफ्ते की गई आतंकी हमले की कोशिश के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने विमानन यातायात को लेकर सुरक्षा नियम सख्त किए जाने का ऐलान किया। दुनिया के कई देशों के मंत्री, निगोशिएटर्स और वरिष्ठ अधिकारी इस गुरुवार 8 अक्टूबर से फिजी के नादी शहर में प्रीकॉप सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये सम्मेलन अगले महीने तुर्की में लगने वाले कॉप 31 शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिजी की तरफ से दुनिया भर के देशों से मांग की जा रही है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जलवायु पर होने वाली बातचीत ठोस कदमों का रूप ले। अगले 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में कॉप 31 शिखर सम्मेलन लगेगा। इस सिलसिले में हिंद महासागर के टापू देश एक साथ मिलकर जलवायु से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में पिछले हफ्ते कुदा आर्ट्स सेंटर में एक इलाकाई डायलॉग सत्र लगा। विषय रहा सामूहिक वकालत को बढ़ावा देना और अन्य टापू क्षेत्रों के साथ सहयोग मजबूत करना। सरकारी प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटियों और युवा संगठनों के करीब 60 प्रतिनिधियों ने इस 2 दिवसीय चर्चा में भाग लिया। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावेल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए लेक्सप्रेस, जिमोश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी जाती है तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। मेगान पुना पनायकन, गीता सुनाराइन।
1: लंदन की निजी यात्रा पर गए प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने शुक्रवार दोपहर बाद को ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मुलाकात की। बैठक के दौरान शागस द्वीप समूह का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया गया। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद हुई, जिसमें उन्होंने मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को बहुत ही खराब समझौता करार दिया था। लेक्सप्रेस जिमोश के अनुसार ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली। साप्ताहिक अखबार के अनुसार डॉ. नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया कि मॉरिशस इस बात को समझता है कि लंदन के लिए इस मुद्दे पर वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, लेकिन शागस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते की पुष्टि में हो रही देरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उचित समय के भीतर संधि की पुष्टि नहीं की जाती है तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा, मैंने ये स्पष्ट किया है कि अगर संधि की उचित समय सीमा के भीतर पुष्टि नहीं की जाती तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्रिटिश अच्छी तरह जानते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये मुद्दा वीकेंड को दिए गए बयान में भी उठाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तय समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा, मैंने जोनाथन पावेल को ये समझाया कि मॉरिशस अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि इस मुद्दे को लेकर लंदन को अमेरिकियों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन शागस समझौते की पुष्टि करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वे इस दायित्व के लिए बाध्य है। साप्ताहिक अखबार के अनुसार प्रधानमंत्री ने मॉरिशस, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा, मैंने ये स्पष्ट संदेश भी दिया है कि शागस द्वीपों पर मॉरिशस की संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, भले ही हम जानते हैं कि अमेरिका ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर संधि की पुष्टि के लिए कोई समाधान नहीं निकलता है तो मॉरिशस के पास कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

कानूनी कार्रवाई के मुद्दे पर लेक्स पोस्टिमोस के अनुसार मॉरिशस, लंदन और वाशिंगटन के बीच जारी बातचीत के दौरान कुछ समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मॉरिशस अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करेगा, अगर जरूरी हुआ तो स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दोनों अखबारों के अनुसार डॉक्टर नवीन राम गुलाम

0: और बुलेटिन की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। दुनिया के कई देशों के मंत्री, निगोसिएटर्स और वरिष्ठ अधिकारी इस गुरुवार 8 अक्टूबर से फिजी के नादी शहर में प्रीकॉप सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहे हैं। ये सम्मेलन अगले महीने तुर्की में लगने वाले COP31 शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिजी की तरह से दुनिया भर के देशों से मांग की जा रही है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जलवायु पर होने वाली बातचीत ठोस कदमों का पुले। कुणाल गुजी, अशिता रघु।
1: नादी शहर में आज पूर्ण बैठक की शुरुआत वाले दी वानुआ ज्ञान का आदान प्रदान विषय के साथ हुई। फिजी की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा फिजी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख लिंडा टाबुया ने कहा कि फिजी चार प्राथमिकताओं को लेकर अपना प्रयास जारी रखेगा। इनमें वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को बनाए रखना, जलवायु के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को जरूरतमंद समुदायों तक पहुंचाना, वैश्विक जलवायु कार्रवाई में महासागर को केंद्र में रखना और प्रशांत क्षेत्र की आवास तथा नेतृत्व को और मजबूत करना शामिल है। दुनिया के प्रमुख निर्णय लेने वालों को अपने तटों तक लाकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुर्की के अंताल्या में होने वाले COP31 तक पहुंचने का रास्ता प्रशांत क्षेत्र की वास्तविकताओं, उसकी मजबूती और उसके नेतृत्व को ध्यान में रखकर तय किया जाए। COP31 के लिए वार्ता के अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवन ने फिजी में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख परियोजनाओं के तहत $5.7 मिलियन की सहायता देने का वादा किया है। मेरा मानना है कि प्रशांत क्षेत्र दुनिया के छोटे द्वीपीय विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है और जिन देशों को जलवायु के लिए आर्थिक सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ही इसे हासिल करने में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम इस दिशा में आगे और प्रगति करेंगे। आने वाले दिनों में मैं इस बारे में और जानकारी दूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयासों के लिए 3 वर्षों में $147 मिलियन का बजट भी तय किया है। यहाँ मौजूद नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे देशों के लिए जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व के लिए सचमुच एक खतरा है। मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल भी इन चर्चाओं में हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य अगले महीने तुर्की में होने वाले जलवायु सम्मेलन से पहले छोटे द्वीपीय देशों की स्थिति को एकजुट करना है। गुरुवार तक कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी, जलवायु परिवर्तन के बीच दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के अधिकार, पानी, आवास और खाद्य सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
0: अगले 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में COP31 शिखर सम्मेलन लगेगा। इस सिलसिले में हिंद महासागर के टापू देश एक साथ मिलकर जलवायु से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की तैयारी में हैं। इस संदर्भ में पिछले हफ्ते कुदाउत सेंटर में एक इलाकाई डायलॉग सत्र लगा। गीता सुनारायण कुसुनते हैं।
2: बाढ़, तटीय इलाकों में रेत का बहाव, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों का सबसे ज्यादा असर टापुओं पर पड़ रहा है। मॉरिशस में हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश अपनी नीतियों और रुख में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि COP31 में वे साझा प्राथमिकताओं के साथ पहुँच सके। हिंद महासागर आयोग के महासचिव कहते हैं, सदस्य देशों के लिए समान स्थिति निर्धारित करना, साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना, प्रशांत और करीबियाई टापुओं के साथ साझेदारी कायम करना चाहते हैं। अलग अलग पक्षों के साथ विचार विमर्श के जरिए ये काम पहले ही शुरू हो चुका है। जुनियो पर्यावरण मंत्री कागन फुकुन भाषा कहती हैं, सभी लोगों ने कहा कि वे प्रभावों का सामना कर रहे हैं। एक ज्यादा शक्तिशाली और सद्भावनापूर्ण ताकत की बात करनी चाहिए ताकि फाइनेंस तक ज्यादा पहुंच हो। इन चिंताओं को जलवायु वार्ताओं में मजबूती से रखने के लिए टापू देशों को अपनी क्षमता भी बढ़ानी होगी और जरूरी साधन उपलब्ध कराने होंगे। मॉरिशस और सेशेल्स के लिए राष्ट्रसंघ रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर लिजा सिमोइक सिंह कहती हैं, राष्ट्रसंघ जलवायु को लेकर समझौताकारों की ट्रेनिंग पर दिलचस्पी रखता है। पिछले साल मॉरिशस, सेशेल्स, कुमुरो, कप वेर्डे के साझेदारों के साथ
3: क्लाइमेट,
2: ऑस्ट्रेलिया जो COP31 की सह अध्यक्षता कर रहा है वो भी चाहता है कि

0: हिंद महासागर के टापू देशों की आवाज को बातचीत में ज्यादा मजबूती से सुनी जाए। मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरो और मडागास्कर के लिए ऑस्ट्रेलिया के उपउच्चायुक्त केट वारियन कहती हैं, ऑस्ट्रेलिया कप को लेकर समझौता बातचीत कर रहा है, महासागर के महत्व को बढ़ावा दे रहा है और पेरिस समझौते को लागू कर रहा है। उद्देश्य है कि टापू देश एक साझा रुख और ठोस प्रस्तावों के साथ कप 31 की बातचीत में शामिल हो।
1: टीचर्स डे के मौके पर शिक्षण से जुड़े पेशेवरों ने एक बार फिर उन चुनौतियों को गौर किया जिनका सामना उन्हें रोजाना करना पड़ता है। अनुशासन, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन और काम करने की परिस्थितियों जैसे मुख्य पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। शिक्षक दिवस के संदर्भ में गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन ने आज कैटबोन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। अवसर के मुख्य मेहमान शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिए। अनाबेल वुल्बेया, गीता सुना राइन।
0: आज पढ़ना पहले जैसा नहीं रहा। कुछ स्कूलों में छात्रों का व्यवहार शिक्षकों के लिए उनकी जिम्मेदारियों को और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। ऐसे में अनुशासन का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन का ये जायजा है जिसने आज कैटबोन में अपने सदस्यों को एकत्र किया। इसके अध्यक्ष विशाल बोजित कहते हैं, समाज बदल गया है, बच्चों का विकास हुआ है, अभिभावकों को भी अध्यापकों के प्रति सम्मान होना चाहिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। चुनौती है बच्चों का समर्थन करना और उम्मीद है कि जो सहयोग हम देते हैं, चाहे वो शैक्षिक हो या सामाजिक, उनमें समाज के प्रति एक जिम्मेदारी हो। ये मांगे शिक्षा मंत्री की चिंताओं से भी जुड़ी हैं। उनका कहना है कि ऐसे छात्रों की मदद के लिए एक नए ढांचे पर काम किया जा रहा है जिनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद कहते हैं, कुछ स्कूलों में ऐसे छात्र हैं जो स्कूल को अनुशासनहीनता और अपने व्यवहार से कब्जे में कर लेते हैं। उनसे बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक सहयोग देते हैं, फिर भी वे अन्य बच्चों को मारते हैं, अध्यापकों को धमकी देते हैं। इन बच्चों से निपटने के लिए एक ढांचा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल दफ्तर और अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है ताकि एक कानूनी ढांचा भी हो। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों और अध्यापकों तथा नॉन टीचिंग स्टाफ की सुरक्षा को खतरा न हो।
2: La sécurité de l'ensemble des enfants et du personnel enseignant non enseignant jamais être affecté.
0: विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर एक और घोषणा की गई, अगले साल 5 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। ये शिक्षकों के प्रति सम्मान का एक प्रतीकात्मक कदम है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को की शिक्षकों की स्थिति से संबंधित सिफारिश को 60 साल पूरे हो रहे हैं। ये दिन उन सभी शिक्षकों को सम्मान देने का अवसर है जो हर दिन देश के भावी नागरिकों को तैयार करने में अपना योगदान देते हैं।
1: चाहे सड़क पर पैदल चलने वाले लोग हो या गाड़ी में सफर करने वाले, असुरक्षा सबको हो सकती है। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी यूनिट की मिली जुली पहल पर बहुत जल्द एक एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की जाएगी जो विशेष रूप से कम उम्र से ही सड़क सुरक्षा की अच्छी आदतें सिखाने के लिए तैयार किया गया है। इस बीच देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को हर हफ्ते 50 मिनट तक सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। कुतुहाफे में दसियों परिवार अभी भी स्वच्छ पानी और निचली आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कईयों के पास अपनी जमीन के लिए सालों से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। भूमि और आवास मंत्री शाकिल मोहम्मद ने CWA और CEB के प्रतिनिधियों के साथ आज स्थल का दौरा किया। मकसद रहा स्थिति का जायजा लेना जो कुछ निवासियों के लिए लगभग 15 सालों से खींचती चली आ रही है। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल और नासा के बीच एक समझौता तय हुआ है। मकसद है एक दूसरे सैटेलाइट का निर्माण करना तथा एक अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना भी। भले ही अंतरिक्ष में कदम रखना अभी दूर है, लेकिन इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। नई महत्वाकांक्षाएं आकार ले रही हैं। अंजुराम गुलाम, अर्शिता रघु।
3: 5, 4,

0: 3, 2, 1, टेक ऑफ, या यूं कहें स्पेस मॉरिशस की शुरुआत, जो मॉरिशस की अंतरिक्ष यात्रा को समर्पित नई वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर उपग्रह से मिलने वाले आंकड़ों, आने वाली परियोजनाओं और विभिन्न साझेदारियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। जुलाई में मॉरिशस नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 70वां देश बन गया है। उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़ों और एयरबस तथा यूमेटसैट जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी के जरिए इन तकनीकों से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा रही है। इनका इस्तेमाल वाक्वा मौसम केंद्र में भी किया जाता है। भूमि और आवास मंत्रालय के कार्टोग्राफ इन आंकड़ों की मदद से शहरी विस्तार को मापते हैं। करीब 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये क्षेत्र फ्रांस के क्षेत्रफल से 3 गुना से भी अधिक है। इन आंकड़ों से हमारे समुद्र तटों पर कटाव की स्थिति पर नजर रखने, सड़कों पर चलने वाले वाहनों की पहचान करने और घरों की छतों पर लगाए गए सौर पैनलों की संख्या दर्ज करने में भी मदद मिलती है। कुल मिलाकर 73 संस्थाएं इन उपग्रह आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रोफेसर तिशान बहुगन कहते हैं, यदि हम एक स्पेस एजेंसी बनती हैं, चाहे कम संसाधनों के साथ ही, हम सहायता मांग सकती हैं जिससे हम विकास कर पाएंगे, और इस विकास के लिए इन सैटेलाइट जानकारियों का होना अनिवार्य है, तभी हम विभिन्न सेक्टरों तक इसका वितरण कर पाएंगे। खास बात यह है कि 2021 में हमारे नानो उपग्रह MIA-SAT-1 के प्रक्षेपण के बाद, जो अंतरिक्ष के पैमाने पर एक छोटी माचिस की डिब्बी जितना है, मॉरिशस अब इस साल के अंत तक एक और उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। मंत्री कविराज सुकों कहते हैं कि इसमें हमारा 0 निवेश है, क्योंकि भारतीय सरकार द्वारा हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। न केवल एक दूसरा सैटेलाइट, बल्कि हमें मुफ्त में सैटेलाइट जानकारियां भी प्राप्त हो रही
1: हैं।
0: मॉरिशस की अंतरिक्ष यात्रा अब धीरे धीरे आकार ले रही है और संभावनाओं की खोज तो अभी शुरू ही हुई है। इस बीच सपने देखने में कोई बुराई नहीं, अनंत अंतरिक्ष की ओर और उससे भी आगे।
2: मॉरिशस में मधुमेह यानी डायबिटीज की रोकथाम और इसके कारण होने वाली जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की गई है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नामक गैर सरकारी संगठन का लक्ष्य मॉरिशस की जनता के साथ मिलकर काम करना है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। मकसद है वर्ष 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए समुदाय आधारित गतिविधियां, शोध और सर्वेक्षणों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को समझने और उसके आधार पर प्रभावी कदम उठाने की योजना है। मधुमेह आज दुनिया के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मॉरिशस में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ की ओर से समुदाय आधारित एक पहल की शुरुआत की गई है। इसी दिशा में मॉरिशस स्थित लिस्पेरेंस ट्रेबिशे इलाके में एक सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने घर घर जाकर स्थानीय निवासियों से जानकारी एकत्र की और उनके स्वास्थ्य से संबंधी आंकड़े जुटाए।
3: एक डॉक्टर है, हमें लगे एक घंटा ले हमें से बात कर लग, जावेद पर ढेर बच गई लग, हमें के चाहना स्वीप हो के, हमें के मिला था ऐसा नहीं कोई चीज़ चाहना स्वीप हो के, बस हमियों के लाश जाता इतना पर हो गल है सर, चाहे हमें के स्वीप करे के जे मैं अच्छा रह सर ना लड़का लोग के आगे रह सर ढेर दिन ले जी अब सर
4: मोबा में थो मीन पूजा बेच ला मैं सामो पपरे को शोम pour manger là ben légumes ça nous mange plus salade ça là c'est avec les obéis là bien beau après c'est la recherche tout ça là comme ça nous calent tout ben conseil qu'ils ont donné en cours nous casser plus oui.
2: इस पहल का मुख्य उद्देश्य मधुमेह की रोकथाम करना, अनियंत्रित मधुमेह को कम करना और इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकना है। संगठन का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल अस्पतालों तक सीमित रखने के बजाय समुदाय को इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए।
5: हम लोग डायबिटीज को जो बीमार है और प्री डायबिटिक जो डायबिटिक के आगे का स्टेज है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एक ठुला अनुसंधान हो रहा है। हम लोग पार्टिसिपेंट्स को डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को प्री डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करेंगे,

0: दे आर कंसर्न्ड यू नो इन डिफरेंट एरियाज ऑफ मॉरिशियस. वहाँ पर हम रिक्रूट करेंगे, उन लोग को ट्रेन करेंगे हाउ एंड डाइट के बारे में सिखाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सिखाएंगे, अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बोलेंगे, सिमिलरली स्मोकिंग के इफेक्ट के बारे में बोलेंगे.
1: ये पहल केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं है, नेपाल, अमरीका और पाकिस्तान जैसे देशों में भी संगठन की ओर से इसी तरह की सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं. इन गतिविधियों के दौरान लोगों से सीधे मुलाकात की गई, उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समझने का प्रयास किया गया और मधुमेह की रोकथाम एवं स्वस्थ जीवन शैली को लेकर जागरूकता अभियान चलाए गए. घर घर जाकर लोगों से संवाद करना, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करना और लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. वर्ल्ड नीट के लाइन टेक्सटाइल और यूनिवर्सल फैब्रिक के लगभग 600 कर्मचारी अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं. वहीं श्रमिक संघों के फेडरेशन ने इस बात की आलोचना की है कि जब से इन कंपनियों को वॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाया गया है तब से कोई नई त्रिपक्षीय बातचीत नहीं हुई है. पोर्टलिस में प्रेस को संबोधित करते हुए एफटीयू के अधिकारियों ने नई त्रिपक्षीय बातचीत न होने पर खेद जताया और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर के समक्ष ले जाने की अपनी योजना का ऐलान किया. गीता सुनारायण को सुनते हैं.
2: कई महीनों से वर्ल्ड नीड्स क्लाइंट टेक्सटाइल्स और यूनिवर्सल फैब्रिक्स के कर्मचारी आर्थिक कठिनाइयों और तकनीकी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं. तीनों कंपनियां फिलहाल वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन पर हैं, जिससे करीब 600 कर्मचारी अनिश्चितता में हैं. फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने आज वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन लागू किए जाने के बाद से नई त्रिपक्षीय बैठक नहीं बुलाए जाने पर चिंता जताई. एफटीयू ने हाल ही में प्रधानमंत्री को एक याचिका भेजी थी, लेकिन 30 सितंबर की तारीख वाले जवाब में प्रधानमंत्री दफ्तर ने बताया कि इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए श्रम मंत्रालय को भेज दिया गया है.
3: De la réunion ou quelques réunions qui fut fixée et au ministère du travail et pour nous nous peut toujours réclame qui la transparence bizarre et l'enquête qui fait le financement et aussi l'argent qu'il recevoir par la compagnie depuis MIC.
2: श्रमिक संघ का कहना है कि ये कदम कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा नहीं करता. एफटीयू ने अब इस मामले की ओर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया है. साथ ही श्रमिक संघ सरकार से हस्तक्षेप करने और प्रभावित कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है.
1: और बीते शनिवार गोविंदन पूजा का तीसरा शनिवार रहा. भक्तों ने देश के कोविलों में भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष पूजा में भाग लिया. On NBC Play and NBC.MU. विदेश में फ्लाई दुबई की उड़ान पर पिछले हफ्ते की गई आतंकी हमले की कोशिश के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विमानन यातायात को लेकर सुरक्षा नियम सख्त किए जाने का ऐलान किया है.

0: अब आखिर में चलिए जानते हैं मौसम का हाल अर्शिता रघु के साथ।
1: आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के समय आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। कल सुबह ऊंचाइयों पर थोड़ी वर्षा होगी और अन्य इलाकों में दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सरिट प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:08 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:47 पर।

6:27 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक याच को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रुद्र कोस्टाल पॉइंट कानूनी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री अनिरुद्ध भगवान जिन्हें लोग रवि नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान रुद्र कोस्टाल पॉइंट कानूनी से उठाकर दाहुची कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1 PM। शोभालेन लाफ्लोरा में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुमारी देवनारायण पैदाशी नाम लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे उत्तम रघु के मकान शोभा लेन लाफ्लोगा से उठाकर गांव बुआकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। नंबर 19 सनासी गार्डन कॉफिरिंगा पैतुसाबल में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मानी देवी बंधन पैदाशी नाम बांटुआ और जिन्हें लोग उषा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह नौ बजे इनके मकान नंबर 19 सनासी गार्डन कॉफिरिंगा पैतुसाबल से उठाकर शिबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9 AM। विजय लक्ष्मी रोड पुधोदो हामलेट में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री अनिरुद्ध अहोतर जिन्हें लोग श्याम नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 1 बजे इनकी पत्नी सत्यभामा अहोतर के मकान विजय लक्ष्मी रोड पुतोतो हामलेट से उठाकर कागो मौत्या पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। नंबर 138 मोसेलमा SIT रोजबेल में नंबर 138 मोसेलमा SIT रोजबेल में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वेदवंती ऋतु पैदाशी नाम कन्हाई और जिन्हें लोग माला नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे अविनाश ऋतु के मकान नंबर 138 मोसेलमा SIT रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 12:30 PM। रेम्योनिये लागुलेट में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री बाबाजी जिन्हें लोग लातेत नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी मानती बाबाजी के मकान रेम्योने लागुलेट से उठाकर बाबू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। शिवाला रोड बाल्मीक लेन त्यामिनी स्त्रियोले में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री मदनलाल जीवन जिन्हें लोग सुनील नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान शिवाला रोड बाल्मीक लेन त्यामिनी स्त्रियोले से उठाकर त्यामिनी स्त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। रॉयल रोड श्रीमेला फोर्ज पुज डिफ्लाक में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुमती देवी सुनाराम जिन्हें लोग अनीता कुचुआ नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे कल दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड श्रीमेला फोर्ज पुज डिफ्लाक से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। बुलांजे रोड पिजों लेन मोताई ब्लांश में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती विद्यामती सुगंध पैदाशी नाम बुधराम और जिन्हें लोग विद्यामती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे कल सुबह 10 बजे

बजे कल सुबह 10 बजे इनके मकान बुलांशे रोड द पिजों लेन मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: News on NBC Play and NBC.mu.
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: एनबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
3: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 7 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक ग्लेन पार्क और आसपास के इलाकों में लामारी रोड, बक्सू लेन, एडू लेन, दीन मोहम्मद लेन और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
4: रेडियो मॉरिशस
5: 820 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
4: रेडियो मॉरिशस
5: रेडियो मॉरिशस।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: चलिए श्रोताओं, हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। वैसे भक्ति में शब्द कम और भाव अधिक होते हैं, तो आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। भजले प्रभु का नाम आपकी सेवा में आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। शुरुआती दौर में आइए भगवान गणेश जी को हम याद करेंगे।

श्रोताओं, भजली प्रभु का नाम जारी है। वैसे आज का दिन समर्पित है भगवान शिव जी को। आपको पता है, शिव का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि सादगी में भी महानता होती है और मौन में भी गहरी शक्ति छिपी होती है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए रात्रि के हम सफर आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो चलिए श्रद्धा भाव के साथ चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। महादेव का जीवन हमें त्याग, धैर्य और करुणा का संदेश देता है। श्रोताओ, वे बताते हैं कि परिस्थितियां कैसे भी हो, अपने भीतर का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।

श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के बारे में। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है, सच्चे भाव की आवश्यकता मानी जाती है। शिव भक्ति हमें सरल बनाती है और अहंकार से दूर ले जाती है। तो आइए, ये अगला भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के नाम।

श्रोताओं, शिव का स्मरण केवल होठों पर नहीं, जीवन के आचरण में भी होना चाहिए, सत्य में, शांति में और करुणा में भी। तो आइए कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जाने से पहले हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।

मौज़े सामीन, इशा की नमाज अब्बा जमात पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शब की क़यामगाह पर जाकर सो जाते। इशा के बाद बातचीत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद ना फरमाते। आप हमेशा दाहिनी करवट सोते, अक्सर दाहिना हाथ रुखसार मुबारक के नीचे रख लेते। चेहरा अनवर क़िबले की तरफ करके मिसवाक अपने सिरहाने ज़रूर रख लेते थे। फिर जब बेदार होते, मिसवाक से दांत मांजते, वुज़ू करते, फिर तहज्जुद की नफलें पढ़ते, कभी नफिल नमाज के सजदे में देर तक दुआ मांगते और फिर आराम फरमाते। जब फज्र की अजान होती तो उठते, हुजरे शरीफ ही में दो रकत सुन्नत पढ़कर वहीं दाहिनी करवट ज़रा लेटे रहते, फिर मस्जिद में तशरीफ़ लाते और बाजमात नमाज फज्र अदा करते। ये थे आपके मामूलात।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। पाक परवरदिगार हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: continuous music. RM3.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का।
3: सब संगतियारों के और जय प्रताप सिंह सितारू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो के मनपसंद रेडियो चैनल MBC रेडियो मॉरिशस और MBC रेडियो मनोरंजन। गर्मी ना रहा, रात के 9:04 हुआ था और अभी से लेकर रात के 11 बजे प्रस्तुत बात तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। मन कराता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमैया का जगो दे जगो उत्साह। ये प्रोग्राम में ढेर कुछ रही, खाना खजाना, फिर बॉलीवुड न्यूज, फिर दुनिया भर की खबरें, ढेर कुछ आनंद से कार्यक्रम में साथ में तुलों के फोन कॉल्स भी आए, एक छोटा सन कहानी जो भी रही सेगमेंट में और ढेर कुछ है प्रोग्राम में मिली सीखे के नाचब से गाँव से कमरा डुलाव से पर ढेर कुछ सीखा सभी प्रोग्राम में जिसका नाम है भोजपुरी तड़का। प्रोग्राम चलता लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर, हमने की सकबा जाए देखे टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस पर, साथ में सकबा सुने हमने के रेडियो MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। आज है लेंदी की रात, लेंदी 5 अक्टूबर साल 2026, सबको की स्वागत बा। चला शुरू करे रहे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के एगो धमाकेदार गीत के साथ और गीत गैले हवन रत्ना पदारत और बंधु मोहम्मद खालिद आंख मारेरा।

आज छुट्टी के दिन रहल सब अध्यापक लोग खातिर स्टूडेंट्स लोग खातिर भी कहे कि आज लेंदी 5 अक्टूबर के हमने मनावते इसे मॉरिशस में शिक्षक दिवस यानी कि दूसरे शब्दों में मनावते इसे टीचर्स डे। तो सब अध्यापक लोग के हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस बहुत बहुत अभिनंदन हो। और आज के दिन हमने अपन गुरुजी के प्रति, हमने अपन गुरु के प्रति अपन आभार प्रकट करिया सा हो कि नहीं। और आज के दिन खास है कहे कि हमने अपन कृतज्ञता, अपन मान सम्मान दिखावे जैसे अपन गुरुजन लोग के, हमने के अध्यापक लोग के और हमने के समाज में अध्यापक लोग के एगो महत्वपूर्ण स्थान बा। बड़ी लासा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और बड़ी राजा आचार्य देवो भव। यानी कि माँ भी भगवान के रूप है, पिता भी भगवान के रूप है, अतिथि भी भगवान के रूप, आचार्य जो है जो हमने गुरु है वो भगवान स्वरूप है। तो हमने के पहले गुरु है हमने के माँ बाप और दूसर का गुरु है हमने के अध्यापक लोग। जब जाहिर सा ले कोई मैटरनल, ले कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो वहाँ पर भी हमने के गुरु रहेला। आज समाज में अगर बड़ा बड़ा पद पर डॉक्टर हवन जा, वकील हवन जा, प्रोफेसर हवन सा, डीजे औजे हवन सा, तो ये सब हमने के अध्यापक के बदौलत है। और अंग्रेजी में एगो कहावत बा, वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। यानी कि एगो जब अध्यापक रहेला तो जीवन भर वो अध्यापक रहेला। एगो टीचर लड़का लोग के ज्ञान देवेला, शिक्षा देवेला और एक अध्यापक अपन विद्यार्थी के मार्गदर्शन करेला। ये खातिर अध्यापक भगवान के दूसरा रूप है। और कोई के बोलेला उस्ताद, कोई बोलेला प्रोफेसर, कोई बोलेला गुरुजी या बहन जी, जो भी नाम से बोलबा, एक अध्यापक हमने के एक अध्यापक जो है ओकर स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो लड़का लोग के कल्याण करेला। एक अध्यापक खाली शिक्षा नहीं देवेला, एक अध्यापक लड़का लोग के गिदे करेला निमन रास्ता में जाएंगे। तो संगतिया लोग अपन अध्यापक लोग के नहीं भूलिया जा। आज के दिन जो है चिंतन मनन करे के दिन है कि जो अध्यापक है उकर कितना महत्व है। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाएगा पर अपन अध्यापक खातिर तू हमेशा एगो जिली हुई रह। तो जितना अध्यापक लोग सुनता हैप्पी टीचर्स डे, आशा करते ये टीचर्स डे अच्छा से मनेला। और जो है तू जो काम करता है बहुत ही नोबल काम है, अच्छा काम है। लड़का लोग के पढ़ते हुए खाली लड़का लोग नहीं पढ़ावत हो अध्यापक लोग, तू एगो जेनेराशों से दूसर जेनेराशों के पढ़ावत हो। तो सब अध्यापक जो सुनता हमने की चाहे प्रीमियर हो, सेकेंडरी, टर्शियरी हो, जितना भी अध्यापक प्रोफेसर लेक्चर हमने की सुनता, सब कोई के अध्यापक दिवस अभिनंदन हो। हैप्पी टीचर्स डे। तो लोग के ढेर माना प्यार और ढेर माना आशीर्वाद।

गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुरु न माने तो गुण कैसे आवे। हाँ, तमने के गुरु जो है वो बहुत जरूरी है सबके जीवन में। वो गुरु के होना वो कोनो भी करत हुआ, वो सीजे पढ़त हुआ, कहाते सीखत हुआ, योगा सीखत हुआ, मेडिटेशन सीखत हुआ, कोनो भी सीखत हुआ, तब चाहे वो गुरु को प्रोफेसर चेहरा हो, प्रोफेसर थोड़ा स्पीके करी तब तू सकबत जाने। बिना प्रोफेसर के थोड़ा जिपसी बा सीखे की कोनो चीज। और अपन प्रोफेसर के अपन अध्यापक लोग कब ना भूलिए, रात के 9:18 रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तरह का प्रोग्राम चलता। संगत्या लोग पिछले बरिस से बोले जाते इस तो लोग कि हमने के देश में पानी नहीं बढ़ सकता जितना पानी चाहे ना बढ़ सके, और सब जलाशय जल्दी जल्दी सूखले जाता। और हमने के जो मेन जलाशय है मौ वाकुआ, ये सबसे बड़ा जलाशय है, और वहाँ पर स्थिति चिंताजनक बा, क्या कि पानी के स्तर

जल्दी जल्दी घर ले जाता। ये खातिर सी डब्ल्यू ए सब लोगों से मांग करता था कि पानी ज़ाया नहीं करे के, पानी गास्पी नहीं करे के, हिसाब से पानी के इस्तेमाल करे के। अगर आने वाला दिन और आने वाला महीना में पानी नहीं बरसे तो मुश्किल और हो जाए। काहे कि हमने के देश में पानी मिल रहा जलाशय से, अब जलाशय में पानी नहीं तो कौन चीज से कौन पानी पी अब सा, कौन पानी से लुगा धो अब सा, कौन पानी से बर्तन मन जाए। पानी चहला, पानी जीवन है, जीवन ही पानी है। तो पानी के गास्पिए नहीं करे के मांग करा जाता। कहे कि पानी बरसे के नाम नहीं, हाँ बरसता पानी दो जगह पर, जहाँ बरसे के वहाँ नहीं बरसता। तो इंद्र भगवान वरुण भगवान से प्रार्थना करब सा, गंगा मैया से प्रार्थना करब सा कि हे गंगा मैया पनिया बरसा द, ताकि इनके सब जलाशय भर जाए और बरिस भर सबको के पानी मिली। तो जैसे बोले तो ऐसा भी स्थिति चिंताजनक बा, पानी नहीं मिलता। तो प्रार्थना चाहना करे के, पूजा पाठ करे के, ताकि पानी बरसे। और अगला गीत है ने पानी नहीं बा, बहुत ही प्यारा सन गाना। आशा जानू को तेज सेवन गीत तोहर खाती तोहर माता जी कुमारी फिर दीदी आरती जीजाजी चीजाफो शुभम शुभम के फैन से और सब जानू परिवार खातिर। और रही गीत चलावते इस चित्रा और ज्ञान विश्राम के नाम रैलन मोदल बे अनिता लाल जी हवन मोदल बे से सब लाल जी और इतु परिवार गोगुआ परिवार के नाम भी। और रही गीत चली फेनिक्स के रेहाना हसनानी की ओर से, गीत चली रीता जी के नाम और रेणुका जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और रही गीत चलाते सर सब श्रोतालों के नाम जो नबी हम की सुनता है एम बी सी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। पानी नहीं बा

जंगन मंगन पानी भरे पानी नहीं पा हाँ त हमेशा तूफान आवेला तो पानी बरसे पर हो बड़ी डेमी वेंसेंक में कैंथ में तूफान नहीं आ रहा डेमी वेंसिस के शुरुआत हो में जनवरी से मार्च रे एक को तूफान नहीं आ रही खातिर हमने की पानी नहीं मिल तो पानी की बड़ी जरूरत बा। हमने के जिंदगी में हमने के कॉलेज के दिन हमने के जिंदगी के सबसे सुनहरा दिन रहेला क्या कि कॉलेज के दिन में हंसी मजाक हंसना रोना दोस्त के साथ झगड़ना फिर प्यार से मिलना तब बेशक सबको अपन कॉलेज के दिन याद करें न सर। और हम अपन कॉलेज के दिन याद करते हैं हम जाते रही MGI कॉलेज मोका और आज हम अपन अध्यापक लोग याद करते हैं तगला गीत चली MGI कॉलेज के एक्स अध्यापक लोग के नाम मिसेज विभा बंधन हन की हिंदी अध्यापिका रलन मिसेज ओकल हिंदुइज्म पढ़ावत मिसेज रघुनंदन हिंदुइज्म पढ़ावे मिसेज ओकल हिंदी और संस्कृत पढ़ावत और मिसेज झमन हिंदी पढ़ावत और गुरुजी जगन्नाथ भी रहल गुरुजी किदार गुरुजी रामफल कोरसालेस तो ये सब हमने अध्यापक के हमें याद करते हैं सर और लोग खातिर एगो जोड़ी गीत खासकर हमने के प्रिय बहन जी रहल विभा बंधन जी और विभा बंधन जी ओ माँ स्वरूपा भी हवन हमने खातिर एगो बहन जी भी हवन और माँ के रूप में भी हवन चाहता है गीत खास हम खास लोग खातिर चले गीत बात सुने मुस्कुरा के रेखा नक्षदी की आवाज़ में और है गीत सब अध्यापक सब अध्यापिका और सब स्टूडेंट्स दोस्तों के नाम भी जो रात के भी उनके सुनता है विजय बेनी पहचान भी उनके साथ हो तो है ना तो चले एक साथ सुने है गीत MGI कॉलेज मुका के एक्स अध्यापक लोग के नाम मिसेज विभा बंधन मिसेज ओकर मिसेज रघुनंदन मिसेज जमन और मिस्टर जगन्नाथ जी के नाम

ऐसे ही मुस्कुराते गईते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। रात के 9:32 होता और भोजपुर का प्रोग्राम चलता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। आजकल पितृपक्ष चलता और 11 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर ले दुर्गा नवमी मनाओ से, यानी कि दुर्गा माँ के पूजा पाठ करब से। और अब हमने देता जिला से कैसे रहे हर एक दिन, और दुर्गा नवमी के दौरान 9 दिन 9 रात ले हमने दुर्गा माँ के अनेक रूप के गुणगान करब से। रविवार 11 अक्टूबर के माँ दुर्गा के शैलपुत्र के रूप में पूजा करब से, और उस दिन के रंग रही ऑरेंज यानी कि गेरुआ। फिर सोमवार 12 अक्टूबर के माँ दुर्गा के माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा हो, और उस दिन जो कपड़ा पहनब से ओकर रंग है सफ़ेद। और मंगलवार 13 अक्टूबर के माँ दुर्गा के चंद्र घंटा के रूप में पूजा करब से, और उस दिन कपड़ा पहने के जो कलर है वह लाल। बुधवार 14 अक्टूबर के माँ दुर्गा के माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा करब से, और उस दिन हमने के वस्त्र के कलर रही रॉयल ब्लू। गुरुवार 15 अक्टूबर के माँ दुर्गा की पूजा हुई माँ स्कंद माता के रूप में, और हमने के कपड़ा पहने के कलर रही येलो पीला। फिर शुक्रवार 16 अक्टूबर के माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप में पूजा करब से, और हमने के कपड़ा पहने के रंग रही हरा। शनिवार 17 अक्टूबर के माँ दुर्गा के काल रात्रि के रूप में पूजा करब से, और हमने के कलर रही ग्रे। और रविवार

14 अक्टूबर की माँ दुर्गा के महागौरी के रूप में पूजा करब सा और हमने के रंग रही पर्पल। सोमवार 19 अक्टूबर के माँ दुर्गा के अपनी माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजा करब सा और हमने के कलर रही पीकॉक ग्रीन। और 9 दिन के 9 रंग यानी कि नवरात्रि। तो आशा करते हैं पितृपक्ष के बाद सब कोई दुर्गा माँ के ध्यान करब जा और दुर्गा माँ जो है कर्पूर धारण करब सर 9 दिन नवरात्रि दुर्गा माँ की पूजा करब सर ताकि हमने के जीवन में सुख शांति हो या जीवन में आगे रूप सर माँ दुर्गा जो है शक्ति दे लो होला देवी है त माँ शक्ति से प्रार्थना करब सर हे शक्ति माता हे अम्बे मैया सबको शक्ति दिया ताकि जीवन में हमने हमेशा आगे बढ़ जाते जितना कोई पितृपक्ष के बाद दुर्गा माँ के अभी कायम रहें सर व्रत धारण करें सर हाई दुर्गा माँ के भक्तों का दिल को प्यारा सन भजन आना थे दुर्गा माँ सुख देवेला।

0: जयकारा जयकारा मैया तेरी जयकारा, हे अंबे मैया सब पर कृपा दृष्टि डाली रखिया, सबके रक्षा करिया, सबके सुरक्षा करिया और सबके अच्छी बुद्धि और ज्ञान दिया ताकि मनुष्य अच्छा मार्ग पर चली, हे अंबे मैया। और आजकल पूजा पाठ के वातावरण बचारो और कहूँ कहूँ पर गोविंदन की पूजा हुआ था, अभी वेंकटेश्वरा की पूजा हो, फिर पितृपक्ष के जो हुआ था और साथ में भी नवदुर्गा नवमी शुरू हुई, तो इस सब जब पूजा पाठ हो रहा था सब कोई जो शाकाहारी भोजन वेजिटेरियन भोजन करे रहन सर। और आज खाना खजाना सेक्शन में देखा सर की संगति हमने की कौन रेसिपी दिया जा। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते आशा जी, कैसे हो जा?
1: हम तो अच्छा है प्रताप जी, आप अपन सुनिए।
0: जय माता दी। हम तो बोलब जय माता दी।
1: जय माता दी।
0: हाँ अली बोला तो आशा भी पूजा पाठ चलाता भी नौ दिन नवरात्रि दुर्गा माँ के भजन करब सब कर अर्चना वंदना करब सब, तो आज हम के कौन कसा देब?
1: हाँ तो अम्बे माता के नाम लेते हुए सब श्रोता लोगन के सबके नमस्ते और बराजन लोग के सादर प्रणाम। तो अभी गोविंदन चलाता वेंकटेश्वर चलाता भी नवरात्रि शुरू हुए, तो सोचा चलिए आज तो लोग के एगो रेसिपी देवा पर आलू बैगन सिपुआ मसाला में।
0: हाँ हाँ हाँ, ये गर्मा गर्म पूरी से खाप सर की फगाता से?
1: ये तो फगाता से धोगी।
0: आले शुरू करे आशा बोला।
1: हाँ
0: तो छोटा से खाएला जब हमारे दादी नानी रह तब पकवा से खाएला सर, पर एगो मौसी बिया लेजी है अच्छा है लासौते खातिर भी अच्छा और जब पूजा पाठ कर जा सर अच्छा है ये खाए के।
1: में दो तीन गो टिप बाद में तो भोजन और स्वादिष्ट रही, तो अभी यही खातिर आपसे है रेसिपी वाइज शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले सामग्री के ओर आवर जा, सामग्री में लीजिए आलू बैगन प्याज टमाटर लाकेजवाया लहसुन अदरक जीते प्यासी और नमक स्वाद अनुसार और मसाला।
0: चिपा भुला गई रहा।
1: हाँ, तो सबसे पहला काम ये करियो, अपन आलू बैगन के काट के निमन से धो के उसमें तनी पानी डाल के रख दियो
0: एक अलग से बर्तन में।
1: हाँ ओके, एक अलग से बर्तन में तने पानी डाल के ओके थोपे छोड़ दे ना, तब बैगना में जितना तने ओकर एगो जन ओके खजी हो सब आमेवा जन है वो निकल जाए, तब तने पानी में डाल के थोपे कर बस तब दस्ती स्वादिष्ट हो गया। तब गैस में अपन कढ़ाई चढ़ाइए, तब सबसे पहला काम तो तेल डल बना। तो हमारा पहला टिप है ये है, जब तिलवा डाल देला तिलवा से गर्म होकर तो अपन प्याज के छोंक लगाए से आगे वो मैं थोड़ा सा जीरा डाल दिया और काहे पुले के पत्ता डाल दिया, इससे तोहर जो तरकारी बा वो मैं खुशबू तो बढ़ जाए,
0: उसका स्वाद जो है बढ़ जाए,
1: स्वाद जितनी बढ़ जाए, चटनी से जीरा और काहे पुले के पत्ता डाल दिया, तब अपन प्याज के छोंक लगेगा, तो प्याज डलबा लाके ज्वाइयों डलबा और है कि चटनी से अदरक और लहसुन पीस के उसमें डाल दिया।
0: अब जो अदरक और लहसुन के पेस्ट बिचारा को पो में हो सकता है डाली ना?
1: हाँ हो सकता डाल दी, तो हर मर्जी पर है,
0: पसंद पर है,
1: तब घर में पेंसिल पीस के डाल दे या तो उसका पेस्ट तो मिला था जो बाजार में सुपर मौसम

0: पड़ेला और सरपत डाल दी मैं कोई फर्क नहीं पड़ेला सरपत डाल दी तब लाके जाओ है सब डाल के खूब तनिसुन ओके भूंजे जाओ तब अपन टमाटर डाल दिया टमाटर वा सब डाल के तनिसुन भूसी लिया कर देबा तब तनिसुन पानी एक कप पानी डाल के अपन मसाला डाल दे मसाला डाल देबा तो तनी भुंजा दिया थोड़ा घड़ी मसाला और जो फुरनवा सब डाल दिया संगे तनी चलते रहिए चलते रहिए निमन से भुंजा देबा तनी सुन भुंजा गल न मसाला और तोहर फुरन सब तब जो आलू और आलूवा खोपे कर ले हवा ओके हाँ हचा में डाल दो जहाँ जहाँ भुंजा था सब डाल दो तोहर कढ़ाई में तब और डाल के अब सब निमन से चलाओ अपन करके से निमन से चलाओ ताकि जो तोहर जो पीस बा और मसाला बा आलू बैगन बा वो निमन से भून जाए तब निमन से भून जा अगर जब निमन से भून जाता तब स्वाद अनुसार अपन नमक डाल दिया और फिर दूध का पानी जैसे डाल दिया तब ओके निमन से दबके दिया तब खूब जब दबके तो खुशबू जितना आए तो क्या बोलबू में पानी भर जाए तब तब खूब दबक जाए तो हम तकारी
1: सुंधा हो गल तकारी तो सुंधा हो गल
0: सुंधा हो गल तब तनी तब जब टुपले हवा ना अभी अब उघर बा तब है तो चिपवा ढोके डाल दो
1: चिपवा तारी के नहीं तारी के नहीं चेहरा
0: नहीं नहीं नहीं चिपवा तरिया नहीं
1: धो के खाली डाल दे के हो ग्रेवी वा में
0: हाँ अब बस दबकर ताना तो हर तरकारी तो चिपवा धो के डाल दिया अब चिपवा तो हर चिपवा आलू बैगन तो हर सब थोड़न सब संगे जोड़ी से दबकर था जब खूब देखभाल लिमन से तकरिया से लफगर लियन भुजा था खुशबू सब बढ़िया आवत आ लफगर लियन भुजा था तो जाना तो हस्तकारी सब तैयार हो गए एकदम पक गए लिमन से तब तो हस्तकारी तैयार हो गए अपन गैस बंद करके तकारी उतार द अब तो मन करी पहाता पका के तो हाइयो मैं तो एक टिप देवत है सब श्रोता लोग के
1: तो हम फगाता फगाइला तो हम फगाता बात हमें फगाता माप मोगी सिखा हुए ला उका है
0: आप बेले जाने के ना
1: जो दिसे
0: आज जाने ना जा तहर रोटी खूब नरम होए तो जाने ना क्या कर बजा
1: गरम पानी
0: तो सब सबसे पहले तो आटा में तो तेल जाके निमन से सान दे बना तब गरम पानी से सन बना गरम पानी से तहर आटा सान दे बा तो खूब वो किसान के एक उद्यो पारे कर दे बना तो के एक घंटा पोजे छोड़ दो जैसे अपन लोया में बने जाए ओके एक घंटा पोजे छोड़ दो जब पोजे हो जाए एक घंटा के बाद अब ओके लोया बना के अपन रोटी बेल के तवा में रोटी पके बटन निमन से तेल डाल
1: अल्फा का तवा ओके ओके कारे कारे का इरासा कर में तेल डाल के स्क्वायर लिखा बन कर दे इरासा ना
0: हाँ नहीं अजाने ना ना जब बेल बट तो जैसे एक बार तनी सुन तेरा लियन होता तनी आटा छिड़क दे बा आटा वाला छिड़क के जैसे अपन बेलना उम्मीद से ले बा तो कहे कहे हो
1: और नहीं तो माफ मोगी से माफ रोड्रिक हो जाए
0: ना नहीं तो माफ मोगी से माफ रोड्रिक हो जाए वो सेकंड नहीं हुई
1: हाँ और इस कब से बड़े आराम से लेकर लोग खुशी रहा खाए के इसे गरम गरम जमी मुँह नहीं खजवाई बैगनवा में कौन चीज डाले जमी मुँह नहीं खजवाई कौन चीज डाले हुआ पोलनामुन पोलनामुन
0: हाँ तो जब कोनो कोनो बैगन हर जमी मुँह खजवा देना तो जब बोले रहने ना शुरुआत में प्याज लाके जायो और काहे फूल है सबके छोंक
1: जब देखो तमाके हूँ डाले रहा देख रहे तमाके इमली
0: हाँ तो पंडामुआ से जा तो पंडामुआ से ही दस्ते डाल दे बा लेकिन साहबा तो सच्चे किसे में सुन तमाके डाल दे बा तो नहीं खजवाए इन्हें कोनो फर्क नहीं
1: अरे जुन तकारी बोला इसे कब से भातों से खाए रोटियों से नानों से कब से खाए
0: हाँ पूरी वो छान दे सक बजा और फाता वो सक बजा पका दा एक तहर इच्छा अनुसार है जिसे तहर मन करी अभी तक जैसे अभी पूजा शुरू हुई तो घर घर अभी तक पूरी छनाई
1: हाँ गर्म गर्म पूरी
0: चाहे पकाता संगे खेबा या गरम गरम भाते
1: और हम तेरे को बात नहीं आशा जी जो नहीं देते

0: तवैया के जन तकरियन है कैसे मसाला के तकरी चाहे गरम गरम खाए के और गरम गरम पूरी या फगाता से जैसे अच्छा लगेगा। अब जब फगाता हुआ ठंडा हो जाला पूरी और ठंडा हो जाला हाँ अच्छा बा खाएगी, पर गरम गरम जो खेला में मजा बहु मजा कुछ और है हाँ कि नहीं।
1: मजा कुछ और है, जैसे मसाजी पका दिलन गरम गरम तरकारी गरमा गरम पूरी लेता फाता, अब उनमें सब परिवार मिल के मेज पर बैठ के भगवान के नाम लेके भोजन करवा देता, उनमें स्वास्थ्य मिलेगा खा के उससे प्यारो बढ़ेगा।
0: हाँ जी आशा जी रेसिपी खातिर व्यंजन खातिर आज बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद तौर पर बने रही, और सब श्रोता लोग है ये जो रेसिपी है ट्राई करिए सर बोलिए सर कि आशा के रेसिपी कैसी रहा हाँ कि नहीं।
1: हाँ हम फिर हमारा ध्यान से सुन रहे थे एक खातिर हम आप सब श्रोता लोग के और आगे बता दीजिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देवत है।
0: ओके जी
1: और आप सब के आई होला नवरात्रि के दुर्गा माँ के यही प्रार्थना करते हैं।
0: 11 अक्टूबर से शुरू होता है, 11 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू होता है,
1: 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर ले जाए दशमी ले जाए, तो आप सभी के घर में माता आदि शक्ति के असीम कृपा दृष्टि सदा बना रहे, सुख स्वास्थ्य सुख शांति समृद्धि प्रेम परिवार में सुख शांति के साथ माता के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही हमारे परिवार जाने परिवार की ओर से आप सबके शुभकामना दे रहे।
0: जय माता दी,
1: जय माता दी।
0: ये रहा आशा जानू हमने के सुंदर रेसिपी देलन आलू बैगन मसाला, आलू बैगन मसाला चिपुआ में और फावाता सो जी हाँ जरूर ट्राई करिए और बोलिए हमने के रेसिपी कैसी रहा।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
3: रात के 10 बजे था और तू सुन तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन भोजपुरी दर का कार्यक्रम एगो संगतिया वाला इन पे कॉल से मिला जा। हेलो भाई जी।
4: नमस्ते
3: कैसे समाचार?
4: अब ठीक बा। हम संजय बोल रहे को कुला से।
3: हां संजय जी बोला।
4: हैप्पी टीचर्स डे।
3: हैप्पी टीचर्स डे। बहुत-बहुत धन्यवाद।
4: हम ही बोला कि हम के जितना लेखा लोग बाते अपन पाहों लोग के अपन गुरु के अपन पूछते के रिश्ते करेगी।
3: हम के सबसे पहला गुरु है हमने के मां-बाप ना।
4: मां-बाप
3: अभी के लड़का लोग गदाने ना माँ बाप के भैया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु
4: ब्रह्मा।
3: और तू अपन गुरु लोग याद करता हो आज?
4: बहुत
3: कोनो कोनो नाम याद बात हो रहा जब तू जिले में रहता?
4: हाँ हमारे गुरु हमारे भोला
3: हाँ
4: गुरु दुर्गा
3: संगीतों में गुरु रहे जो
4: सिखा गुरु
3: भी काम कर बता है गुरु एगो गुरु के निरकर संरक्षण में गुरु जब कोनो भी चाहे नाजी सिखते सिके चलाए के ड्राइवर सिखे के सब में गुरु रहे। अब गुरु नहीं रही तो दुनिया अंधार। भोजपुरी बोलिया हो हाँ
4: भोजपुरी के तुम्हारा शुभकामना जो है आगे बढ़िया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबके जितना टीचर
3: बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय जी। और तू भी गुरु हुआ गो पुलिस अफसर हुआ और तू भी तो हर जिनियों लोग के हमेशा सिखावेला कैसे को दिला हो तो और हमेशा निमा निमन बात बोली रह सर पुलिस विभाग के स्पेशल हाई ग्रांड सैल्यूट बोलते हैं। तोहरों भी तू इतना बरिस से काम कर ले हुआ एगो सीनियर हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।
4: 40 बरिस
3: के एक्सपीरियंस बा है। और कौन उम्र में तू शुरू कर रहा है पुलिस के काम? कौन उम्र में शुरू कर ले रहा? देखा कितना एक्सपीरियंस बार आजकल सिखावत हुआ। और ओके जी तो बहुत बहुत बधाई की बात हुआ भाई संजय हरिचंद। ऐसे ही सबको की निमन निमन बात सिखाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि भैया। बहुत धन्यवाद। और एक गुस्सा लाइन पे। हेलो
5: हेलो
3: हेलो हाँ प्रेमिला जी नमस्ते। कैसे हुआ?
5: अच्छा
3: सब ठीक ठाक चला था?
5: ठीक ठाक
3: चला। बोला
5: बैगन नहीं
3: खा। अब सबको क्या बन पर मान्यता बा ढेर कोई पकावेला ढेर कोई आशा आशा जानू
5: आशा जानू।
3: हाँ
5: अच्छा बोलन
3: नहीं तो आलू चिपवा मसालावा सगबा पकाई ना। नव रूप बोली कौन कौन रूप रहेला और कौन कौन कलर उस दिन के सब वस्त्र धारण करे। 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर ले रही और नव दुर्गा नव रूप होकर पूजा हो और मंदिर में घर में भी कलश उलश डले व घर में तू भी
5: कलश नहीं डले माता बाटे
3: मूर्ति बा दुर्गा माँ के
5: दुर्गा माँ हो तो नहीं तो हर हाँ भी बा ना
3: हम नहीं लगे बा। हाँ

0: अच्छा बा, बहुत बढ़िया बा, माँ के कृपा से सब कोई सुख शांति में जिए। होते बाटे ढेर घर घर में मृत्यु हो गए बाटे, कोई नहीं शायद नहीं है सके अंजा बहुते घर में।
1: हाँ तो पूजवाने से कम से कम चिराग सके से बांट दी ना।
0: हाँ बाद में सके अंजा।
1: हाँ
0: का इसे बुलाए कुछ भी हो जाए तो मावे लोग हमने के रक्षा करेगा।
1: हाँ और अगला गीत के कर खातिर।
0: हाँ अगला गीत हो गीत नहीं दे रहा उदिन मंगली तो
1: कौन गीत मांग ले रहा
0: पानी किसे
1: शिव जी
0: पर
1: बोले
0: नहीं मिले
1: नहीं संतवा नहीं रह सकेला सकेला कब पुलिस में।
0: ये खाली जस्ती मांगा थे पानी की सुनो ये रोज सुने थे दुख
1: हुई देखा तो है ना मौको बाकवा किसे सुखा था पानी बरसा था पर वो जगह नहीं जहाँ बरसे के चैला। अरे जिसी जिसी पानी तो कहाँ के जब मैं तो मटिये पी ले पन्या चिंगन मिंगन गीत चल गल पानी नहीं बा। एगो शिवजी के गीत सुने चाहत हो भक्ति गीत।
0: हाँ भक्ति
1: आलिपा फिर एगो शिवजी के भजन चला दे अवसर भोजपुरी में।
0: बेस्ट फ्रेंड मन अभी सुतल नहीं हो जब बातचीत कर ली थी
1: ए ता ढेर मना प्यार लोके हमने की ओर से। ओके अले फिका नहीं करिए तो हर भजन शिव जी के चला दियो अब से थोड़ी समय में। शुभ रात्रि। और एगो संगत बा लाइन पे। हेलो
2: हेलो
1: श्रीमती जी
2: नमस्ते।
1: जय माता दी जय माता दी।
2: माता जी आपको भी
1: कैसे समाचार।
2: समाचार सब ठीक है।
1: नवमी की तैयारी करा था वह।
2: नवमी की तैयारी तो जोर जोर से हुआ था।
1: चला अच्छी बात है।
2: जोर जोर से नवमी की तैयारी भी हुआ।
1: अभी गोविंदन बा वेंकटेश्वरा बा
2: पानी बरसे के पूजा पाठ भी हुआ था।
1: कहा जी नहीं मामा पानी बरसे के नाम नहीं कराता है ने। फुफ तो बगल पानी बरसा था तो और बगल
2: पूजा पाठ भी हुआ था पानी के बरसे के।
1: हाँ।
2: और दुर्गा माँ के भी चाहेला सहिता दे के हमनी के जमे हमनी के पानी के सहिता हो सब काम सब अच्छा से हो
1: अच्छा तरह से।
2: हाँ। और पानी नहीं रही तो कुछ नहीं बा।
1: हाँ और अगला गीत के कर खातिर।
2: हाँ एगो गीत डाल दिया हमारे सब परिवार लोग खातिर।
1: माता जी तो राजू के बोली माँ ढेर जोर बा कमती कर द प्लीज
2: डाल दिया हवे गीतवा।
1: कौन गीत
2: जिसी जिसी पानी बरसेला बरसेला
1: ए बरसे लगल पनिया।
2: हाँ डाल दिया है ये गीतवा।
1: आले चला दो अब सर
2: जमे पानी बरसी ना।
1: हाँ
2: हाँ।
1: अली पानी जे बरसी गजबा भर जाए तू हमने कहते लड्डू पका के आनिया का बोला तू। अली माता जी शुभ रात्रि।
2: शुभ रात्रि आपको।
1: जय माता दी। हाँ तो बेशक बरसी लगल पन्या हम तो खुशी रहते भैया पन्या बरसी था पर पानी बरसे के तो नाम नहीं करता। और सिद्धिव्या बोला था कि चहला पानी बरसे के अब मृत्यु का बोली आगे दिन सब भगवान के हाथ में बा पर चेहरा पानी बरसे कि पानी नहीं बची तो एकदम सिचुएशन क्रिटिकल सकेला हो जाए तो का करब चेहरा पानी बरसे कि भगवान से प्रार्थना कर से पानी बरसी ताकि चारों ओर हरियाली छा रही और उनके जलाशय में जब पानी रही तो उनकी खाए पिए की सब चीज़ मिली लेकिन सब प्लेंटी प्लेंटी मिली हाँ कि नहीं। 10:08 तो चल भोजपुरी बोलिया हो जोलिसन गीत चला होते सब हमने के श्रोता लोग के नाम जो नबी उनकी सुना तो अंधेर कोई नाचिफ करा था बंकुआश तेर कोई नाचिफ करके वापस घर आवा था तो जस्ट चिल एंड रिलैक्स। और ढेर कोई अभी कहूँ से आवता या कहूँ जाता हुआ गाड़ी में हुआ अपन परिवार सहित तो गीत के मजा ला। संजय हरिचंद के गावल गीत है भोजपुरी बोलिया हो।

0: नाच गावा झूमा हमने के संगे संगे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलता रात के 11 बजे दे संग जरा तू जो अगर चाहते हो कि हर बीमारी से दूर रह तामर लगे को बागत मासिक पे को जादू के छरी बा तोरा बताओ अब तू खोजत हो सौ साल लीजिए कि तोरा चहला जस्ती से जस्ती सब्जी और फल खाए के ये हमने जादू के छरी और सब्जी और फल खैला से सब मनादी सब दूर होई अंग्रेजी कहावत बोले ना एन एप्पल डे कीप्स अ डॉक्टर अवे तो तू भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और फल खाइया जा और सब्जी और फल खाइबा और तोहर जाबे तोहर टेंशन तोहर कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल रही और तेल नमक और चीनी कमती प्रयोग करिया और बेशक खान पान पर ध्यान दिया और फिर आधा घंटा रोज के कसरत करिया एक्सरसाइज करिया व्यायाम करिया और बेशक भूले नहीं कि जोन भी खा के तू खेबा वो कर कैलोरी छाना जरा के एक्सरसाइज के जरिए तो सब कोई खुशी रह रहा सौ बरी से जिए के सब कोई बोला हमको अपन लड़का के शादी देखा हमारे लड़का के लड़का हुई तो वो लोग के देखा तो ये सब देखे कहते तोहरा छाना पर नासौती के ध्यान देगी अगर तू तोहर लासौते चाह रही तो सब अपन लड़का के शादी देख के अपन लड़का के यूनिवर्सिटी विद्या करे अपन लड़का के लेकर नाती बोता लोग के मुँह देखे पर तोहरे लासौती नहीं चाह रही तो कौन से जी के तैसन में अगला गीत सुनब जो स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा के एकदम ही बढ़िया गाना है गीत भाई आबू खातिर आप हिलन वाकवा विशाल बेहोंस एक गीत हो नाम स्टीव माना लोंग चिबुग नानो राजा श्याम मंगल राजमन्ना प्रवीण भैरव जिमी दुखिया ये सब संगतिया लोग के नाम चलाओ अब अगला गीत और देखा जैसे कौन संगत वाला लाइन पे हेलो हेलो जी नमस्ते हेलो हाँ ते फोना करके ते फोना काट दे बोले जब वाह भाई वाह शाबाश वेरी गुड ऐसे ही करिया हेलो
1: नमस्ते प्रताप जी
0: का हो ते फोना काट देला
1: कब
0: अभी सुनने कर रहते तो काट देला सर नहीं
1: नहीं नहीं सुनने की फ्वा
0: एक दूसर कोई हुई हाँ
1: क्षमा कर दिया
0: नहीं जय माता दी
1: कैसे नहीं, हम नहीं काट ला कब
0: नहीं नहीं देखो सुनने कर रहे जिस टेलीफोन पे तो काट दे बोले
1: सर नहीं हम नहीं
0: आली फिकर नहीं बा बोला नहीं जा कैसे समाचार
1: हम ठीक है मंदिर गरानी से अभिषेक हो
0: हाँ लिंदी के

0: जी बाबी से खोला।
1: सौभाग्य अभी शुरू हो या अभी दुर्गा पूजा?
0: हाँ अभी ले ऑन से शुरू होता है, ऑन अक्टूबर से ले
1: बैले तो हम लोग जिसके जाप सा अभी मामा के तैयार कर अब सा सब कलश के तैयारी हो
0: माँ के सिंगार सब करेला कर चुनरी कर चोरी कर टीका कर काजल बिचारा कर पैकेज बिचारा ना सब संगे
1: नहीं हम लोग का पैकेज नहीं बेच नहीं करनी ना सा सारी सिंगार सब अलग अलग से
0: नहीं तो हम पैकेज हमें कंप्लीट है ला कर टीका ओकर चूड़ी ओकर चुनरी
1: ओ खोंचा में रहेला
0: खोंचा में
1: ओकर चाहे ना ओकर मुकुट ओकर हार ओकर साड़ी ओकर सिंगार सब तब माँ के सजा के तब ओकर हाथ में ओ कौन सी बोले जाएगा
0: हाथ में ओकर शंख बा चक्र बा हाथ में चूड़ी ओकर चूड़ी कंगन
1: ओकर चूड़ी ओकर हार सुंदर
0: काजल वो दराला दिखी जा
1: हाँ
0: कितना दिन ले पूजा कर बा 9 दिन ले पर खीर पूरी चढ़ाई बा घर में मंदिर में कहाँ पर
1: हम आगे घर में चढ़ावत नहीं बाकी हमार माँ के सजा के रखी ला लोग रोज एगो प्रसादी चढ़ाई ला
0: अच्छा
1: सब कुछ करी ला मंदिर में बस के हमली को लेता हूँ घरो में रही ला नहीं मामा के रखब जा घर में तब प्रसादी सब चढ़ाव सब बाकी मंदिर रोज रोज शाम जी से शुरू हो सब हमने ठाकुर नहीं रखी ला सर हमने एक ठाकुर है
0: तो लोग भी करी ला सर
1: हम लोग हाथ बता के करी ला सर 3 गो संस्था बा 2 गो महिला के 1 गो पुरुष के बा तो हमने काम करी ला सर बाकी हमने के हाथ में सब हमने के हाथ में
0: है जो 9 दिन है बहुत स्पेशल रह रहा है 9 दिन दे माँ के रूप दिखी ला सर वर्णन और हाँ, पूजा पाठ भजन और शिवाल सब शिवाला में पूजा हुई अभी
1: हाँ हाँ हम घड़ियों में रही रखी ला सा बाकी एगो मम है सर ना शिवाला में
0: तो तू कैसे कागे में रहला मीठा के खा के की सब्जी
1: मीठा आगे खाथनी अभी नमक खाब लेकिन प्याज और लहसुन नहीं खाइला
0: हाँ
1: प्याज और लहसुन नहीं खाई ये सब साधारण लौची जैसे बैगन जैसे कालबास कोहरा
0: सैंप खाना शाकाहारी खाना
1: हाँ
0: तू भोग लगावे ला दुर्गा माँ के जब पकावे ला तक कौन चीज
1: हाँ कही ना रोज रोज चराई ला सा चराब सा ना ओकर नियम आना रोज के कुछ कुछ ना कुछ
0: हाँ कौन चीज भी चराई बे भगवान के नाम से गो बैराम के पत्ता में तो महाप्रसाद बन जा रहा उछाए गो बुद्धि बुद्ध लड्डू बने ला रोज
1: बने हम जानी ना वो नहीं जानी ना
0: नहीं भगवान बोले तू जैसे जोन भी नाम से को बोले बा जैसे तो हर समझ बा जैसे तू माँ के नाम जाना कहते हैं क्रियोली में फ्रांसे में हिंदी में संस्कृत में कोनो भी मंत्र जय अम्बे माँ दुर्गा वो प्रसन्न हो जा रहा माँ तो हर भक्ति से प्रसन्न हो रहा माँ के तो सब चीज बाको लगे नहीं चाहो भी जब अपन घर में
1: तोहरे में बा मंदिर
0: हाँ हमने के मन मंदिर में तो
1: हाँ, हमने के मन मंदिर में बा आगे हमने के घर
0: हाँ
1: हमने के घर हमने के परिवार तब मंदिर
0: देखेला भारत में जब भाई माँ के पूजा हो रहा था एक महीना से हो महाराष्ट्र में बरका माँ के मूर्ति वहाँ दशमी से बोला देख बा जो कि नृत्य हो वेला एक साथ सुपर सुपर और बोला तो अंत्या जी पर हम ये अपन भक्ति करी रहा सब अपन पासों में अब बोला तो अगला गीत के कर खाते अंत्या जी
1: हम सभी परिवार और फ्रेंड खातिर आपके लिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की सभी टीम के लिए एक जोली से सब गाना तो जोली हुए बा
0: जोली हुए
1: नहीं सब बा बोले कि हमार जोली हो
0: नहीं नहीं सब जोली जोली गीत तो लोग के पसंद के गीत है अनिला सर
1: बहुत खुशी है कि आपसे बात कर
0: बहुत धन्यवाद अनिता जी जय माता दी ओके जी नमस्ते शुभ रात्रि हरि अनिता जी तो चल एक साथ सुनाम जब जैसे बोलते रही हमने स्वास्थ्य अगर अच्छा बात सब कुछ अच्छा बा अब ढेर कोई बोलेला का स्वास्थ्य नहीं अच्छा बा साखा लगेला पर का कहबा जब उम्र बढ़ ले जाला कैसे सैकड़ों श्वासों संजीजों ले हो जाला तो अब सब कहते दुलिया उठेला शरीर में पर का करब परेला जिए के जब ले सांस बा तो जियते सर जब अंतिम सांस चलाई तो परी भगवान अगर जाए के हाँ कि नहीं तो हम प्रार्थना करब कि सब कोई अच्छा स्वास्थ्य में रही और जब अच्छा स्वास्थ्य में रह जीवन के जश्न सकब जा मनावे चल एक साथ सुनब जा साहिर जगारू के आवाज़ में गीत

स्वास्थ्य जिकर अच्छा बाहेगी चलाते से अजय और पूनम चिंताराम के नाम आप हवन ऑस्ट्रेलिया में फिर चंदन अजय और पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया में चंदन और प्रिया चिंताराम मॉरिशस में माता जी इंदिरा चिंताराम हवन है गीत और खाते तो और बेटी सलोनी दामाद और सब चिंताराम परिवार के नाम और है गीत हमने चावत उस सब संग तैयारों के नाम जो बीमार हवन अस्पताल में क्लिनिक में तय प्रार्थना कर सकी तो लोग के स्वास्थ्य ठीक हो जाए। शास्त्री बन माली हमने के साथ देवत हवन शास्त्री बन माली जी कैसे बात समाचार है गीत तोहर खातिर और तोहर संगतिया तोहर बेस्ट फ्रेंड विजय बेनी पासान खातिर भी चली स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.
2: एमबीसी रेडियो मंच सात सौ उन्नीस क्रेज पर एएम मोड पर और एमबीसी रेडियो मनोरंजन और एम प्री 94.6 98.2 MHz पर एफएम मोड पर आईएम और एफएम दोनों पर चलता कार्यक्रम भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे ले ढेर कोई बोलेला कि भूत प्रेत से चेहरा डरे के हम तो बोलेला भैया भूत प्रेत से नहीं चेहरा डरे के चेहरा डरे के जिंदा इंसान से आजकल जो इंसान है ऊपर ये छोटा छोटा बात में इतना गुस्सा करे रहन सा कि बहुत हिंसा से भर जालन सा और व्यूलेंस करे लगे रहन सा काजिन का ही आज के इंसान इतना भड़क जाला कोनो भी छोटा सा बात बोल पर दिखवा लोग भड़के लगे रहन सा और हाथ हाथा पाई पर उतर आवे रहन सा तो बेशक यही कहते ढेर कोई सब कोई संग दोषी नहीं कर रहा कहे कि किकन मन में कौन सी बात कोई नहीं सकेला जाने पर कहा कर बा परेला जिए के दिन ब दिन इंसान मूवे हो ले जाता समय के साथ साथ और प्रार्थना कर सके जितना हम के मन में जो हिंसा जो व्यूलेंस और सब दूर हो सब कोई प्यार से जी और एक दूसरे के हम सब समझे के चेहरा कोशिश करे के समझे के एक दूसरे के नहीं कि छोटा छोटा बात में गुस्सा हो जाए और मार पिटैया पर उतर आवे लन सत ये बहुत खराब चीज़ है मार पिटैया करे के रात के 10:32 प्रेमिला कुछ समय पहले टेलीफोन करे मंगल रंग शिव भजन तावत ऐसे शिव भजन तौर खातिर प्रेमिला शिव जी के गो शिव भजन कुनाल ही लाल के आवाज़ में और ये भजन चली सब श्रोतालों के नाम जो बहुत प्यार से उनकी सुना था वही बखत ढेर कोई अभी सिलाई कर रहा था ढेर कोई कपड़ा सी कर रहा था ढेर कोई ब्लाउजे में काम करता उन सर ताकि फजी के थोड़ा गर्मा गर्म पैमेजों और जी पै बागत में खाई के और अभी ढेर क्या लोग रात के हिफ्जे कर रहा था और एग्ज़ाम होता आजकल ग्रेड 9 फॉर्म साइंस एच एस सी का एग्ज़ाम होता था रिविजन के साथ साथ उनके साथ देवता बुकवाज ऑल द बेस्ट गुड लक है शिव भजन तुलों के नाम

हमने की माटी के मोल है बहुत अनमोल। ये कहती अगर एक छोटा सा टुकड़ा माटी किन्ने हुआ तो मटिया 10 बरिस में सकबा और गुजर दामे के बेचे और माटी जो न बड़िए मांगा बा। आज की दुनिया में माटी किन के घर बनाए के आसान बात नहीं बा है। हाँ तो माटी के मोल बड़िए बा। जगह लगे माटी बा तो धनवान व्यक्ति है, जगह लगे कितना अपा बा कितना एक टाव के माटी बा तो लोग तो धनी व्यक्ति हो माटी में ढेर पैसा बा दोस्तों लोग। और माटी के अगर मोल जनब तो तू ही जनब कि मतिया के अगर मोल कितना है। माटी बड़ा अनमोल है। रात के 10:40 हुआ था और बेशक हम के साथ देखा थी बहुत बहुत धन्यवाद। का जगह देवी जगह विद सैंक पर सकबा जा टेलीफोन करे और अपन पसंदीदा भोजपुर गीत मांगे। अगला गीत चली भुलक्कर एल्बम से ये अगला गीत टाइटल ट्रैक शीर्षक गीत भुलक्कर और गीत चौधरी से नंदा के ओसे नंदा हवन पाई में। हेलो नंदा जी आफिज लविनिया साइ पी एस एम के साथ दिवत थैंक यू उनके साथ देखा तेरे फिर है गी चली रोज देखी नाम रोजी दाईलैंड से हो जा बहुत बहुत प्यार से सुन थवन देवी नाम के साथ दिवत थैंक यू देवी ना और फातमा जी ने ग्रोव से वन उदय दय राम की ब्रजपोष से बहुत प्यार के साथ सुन थवन संजय बिहारी है गीतों का पत्नी सुरेखा बेटा कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम। चलो एक साथ सुनेगी तो भुलक्कर।

नाकों के फुलिया ते बरिए जोरीवा ललिता पुनीत के गावल हर गीत के संगे भोजपुरी तरका प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। हमने के सुन ला बहुत प्यार से SMS कर ला और फोन कर ला जा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग के फोन कॉल्स SMS खाते रात के 9 बजे से अभी हम के साथ दिला बहुत धन्यवाद। हमने के बाद 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल प्रोग्राम रात के 11 से 12 बजे के बीच न्यू मनी के साथ और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के चलो के मुलाकात हुई अब बुधवार के रात के 9 से 11 बजे तक रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुरी तरका। तो बुधवार ले हमने की इजाजत द और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: नमस्ते आप सभी को। रात के ठीक 11 बज चुके हैं और अब वक्त है थोड़ा सुकून पाने के लिए, थोड़ा पुरानी यादों में खो जाने के लिए। आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और इट्स नर्मनी जो साथ दे रही है। अभी आज की रात हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे नगमे जो सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि यादें हैं। 60s की एवरग्रीन मेलोडीज, 70s का रोमांस और 80s के वो खास अंदाज। तो वॉल्यूम को अपने हिसाब से आप ठीक करें, एडजस्ट कीजिए और बढ़ते हैं आपके ये सुनहरे लम्हों को एंजॉय करने के लिए, उनके साथ गुनगुनाने के लिए।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ

कितना खूबसूरत गीत था ना। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो कितने भी साल पुराने हो जाए उनकी मिठास कभी भी कम नहीं होती है, और 60s के गाने तो जैसे वक्त को रोक कर रख देते हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ ही और एक यादगार नगमे के साथ। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।

0: दोस्तों राज जवां है और यादें भी। अब वक्त है 70s के उस दौर में लौटने का, जब मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ एक गीत ही काफ़ी हुआ करता था, कुछ अल्फाज, एक धुन और दिल की बात सीधा दिल तक। तो चलिए एक और एवरग्रीन मेलोडी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

और अब चलते हैं 80s की तरफ, वो दौर जब म्यूजिक में एक अलग ही रंग था, एक अलग ही अंदाज था। कुछ गाने आपको वाइब करने पर मजबूर करते हैं और कुछ बिना कहे पुरानी कहानियां याद दिला देते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अगला गीत लेकर आ रहा है एक खूबसूरत याद, एक खूबसूरत एहसास।

वैसे देखते ही देखते हमारी आज की महफिल अपनी आखिरी मुकाम तक आ पहुंच ही गया। 60s से लेकर 70s और फिर 80s तक आज हमने साथ में कुछ हसीन यादें दोबारा जी लिए। उम्मीद है कि इन पुराने नगमों ने आपकी रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाया होगा। मैं हूँ नलमनी और आप सुन रहे थे सुनहरे पल। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और इन खूबसूरत गीतों को अपने दिल में संभाल कर रखिए। इसी विश के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: MBC Radio, your music companion.
1: That's right. Pump it up.

0: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है बहार, मस्त नजर की कतार, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है बहार, हो मस्त।

इत्यादि अदा जिस पे पिता हम तो हुए सवा। ओ मस्त नजर की कटार, मस्त नजर की कटार, दिल के उतर

भर के ख्यालों में, हाय दिल भर के ख्यालों में, हम तो मगन गाते चले प्यार के नगमे हजार। मस्त नजर की कटार, मस्त नजर की कटार, अरे दिल के उतर गई पार।

0: गई बात, हाय हाय हाय। प्यार की राहों में हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है महार। हम मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है महार। हम मस्त नजर की कतार, हा हा हा।
1: NBC Radio 24 hours a day.

करता हूँ काबू। जाग जा तू।

0: तुम नहीं समझोगे कौल साहब, कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में, हमारी सूखी प्यासी धरती में, दो बूंद पानी के कारण एक आदमी दूसरे की जान लेवे है, दो बूंद पानी के कारण एक छोरी की इज्जत का खून हो जावे, जैसे हमारी सोनकी का हुआ।
1: सोनकी कौन? तुम्हारी बहन?
2: तुमने ही तो कहा था, पहले जान पहचान,
1: फिर दोस्ती और फिर प्यार।
2: तुम अपनी जान पहचान करो, तुम अपने मुल्क के बारे में बताओ।
1: किसी कवि ने कहा है कि कश्मीर स्वर्ग है, चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली हरियाली,
3: चंचल नदियां इटलाती हैं, शोर मचाती हैं, मगर झील में गिरकर शांत हो जाती हैं। प्रेमी जोड़े शिकार में बैठकर चांदनी रात की सैर करते हैं।
1: जी चाहता है इस वक्त हम भी एक शिकार में होते और तुम मेरी बाहों में टोलते।
4: क्या हो सके है कि नहर जल्दी हमारे गांव पहुंच जाए, हमें और कोई इंतजार करना नहीं पड़े।
1: दूसरी सूरत यह है कि एक बहुत बड़ा धमाका हो, जो न सिर्फ रेत में दबी हुई चट्टानों को तोड़ दे, बल्कि इन सब सरकारी दिमागों में हलचल मचा दे।
4: तो ये काम मैं करूंगा साहेब।
1: गंगा तुम अकेले क्या कर सकते हो?
4: मैं वही करूंगा जो फरहाद ने किया था।
5: आज राजस्थान नहर के अंतिम भाग का उद्घाटन जमुना सिंह, बस गंगा सिंह, बस हरी सिंह के हाथों होगा।